तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, ये कर्मों की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य का पता करना। अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाए। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है, उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति की बताई हुई बातों पर चलता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

अभी सुना आपने जीवन सौरभ। अब आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रम। सबसे ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि सूक्त 108 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। मेजर जनरल शाहनवाज खान पर आधारित होगा आज का एक कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का।

सुबह 8:30 पर सुनिए सुनो कहानी पोषक आज का, और कार्यक्रम में स्वर होगा संदीप शर्मा का। कला कल्लोलिनी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:00। कार्यक्रम में स्वर होगा संदीप शर्मा और वर्षा सिंह का। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर, विषय विशेषज्ञ एस के प्रसाद से भगवती सक्सेना का साक्षात्कार इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे।

सुबह 10 बजे सुनिए परिक्रमा मेरे यानी रत्नेश के साथ। याद करो कुर्बानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। शब्दों के शिल्पकार सुनिए सुबह 11 बजे। आज का ये कार्यक्रम आधारित होगा सादत हसन मंटो की पुण्यतिथि पर। युग प्रवर्तक विवेकानंद ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 108 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्राग्नि, छंद है त्रिष्टुप।
1: य इंद्राग्नि चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे तेनायातम सरथम तस्थि वासाथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आपका जो अद्भुत रथ सभी लोकों को देखता है, उस रथ में दोनों एक साथ बैठकर हमारे यहाँ पधारे और अभिषुत सोमरस का पान करें। यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरं तावाम अयं पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नि मनसे युवभ्याम। यह संपूर्ण विश्व जितना विशाल, श्रेष्ठ और गांभीर्य युक्त है, हे इंद्राग्नि, आपके सेवन के लिए निष्पादित सोमरस उतना ही प्रभावशाली होकर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। चक्राथे ही सद्रयं नाम भद्रम सद्रीचीना वृतहणा उतस्थः ताविंद्राग्नि सद्रयंचा निषद्या वृषणः सोमस्य वृषणा वृषेथाम। हे इंद्राग्नि, आपकी संयुक्त शक्ति विशेष कल्याणकारी है। हे वृत्रहंताओं, आप संयुक्त रूप में ही वास करते हैं। हे शक्ति संपन्न वीरों, आप दोनों एक साथ बैठकर सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाएं। समिद्धेष्वग्निश्वान जाना यतस्रुचा बरिहिरु तिस्तिराणा तीव्रैः सोमैः परिशक्ते भिरर वागेन्द्राग्नि सौमनसाय यातम। यज्ञ में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने पर जिनके निमित्त आहुतियां प्रदान करने के लिए घृत युक्त चमसों पात्रों को भरकर रखा गया है तथा कुशाओं के आसन बिछाए गए हैं, ऐसे इंद्राग्नि जो तीक्ष्ण सोमरस जल मिलाकर तैयार है, उसके सेवन हेतु आप हमारे यज्ञ में पधारे। यानीन्द्राग्नि चक्रथुर वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृषणयानि यावाम प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, शक्ति के परिचायक जिन कर्मों को आपने संपादित किया, जिन रूपों को शक्ति के प्रदर्शन के समय आपने प्रकट किया तथा आपके जो प्राचीन समय से प्रचलित कल्याणकारी मित्र भावना के प्रेरक कर्म हैं, उनका ध्यान रखते हुए सोमरस पान के लिए यहां पधारें। यदब्रवम प्रथमं वाम व्रणानोयम सोमो असुरैर्नो विहव्यः ताम सत्याम श्रद्धामभ्याहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। सर्वप्रथम आप दोनों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही हमने कहा था कि याज्ञिकों ने ये हमारा सोमरस आपके निमित्त ही निष्पन्न किया है, इसलिए हमारी हार्दिक श्रद्धा अनुसार आप दोनों हमारे यज्ञ में आए तथा निष्पन्न सोमरस का सेवन करें। यदिंद्राग्नि मदथः स्वे दुरोणे यद् ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्रदेव और यज्ञाग्ने, यजमान के गृह ज्ञान संपन्न साधक की वाणी अथवा राजगृह में जहां भी आप आनंद युक्त रहते हो, उन स्थानों से आप हमारे यज्ञ में आए, इस अभिषुत सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद् द्रुह्यश्वनुषु पुरुषुस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आप दोनों यदुओं, तुर्वशों, द्रुह्यों, अनुओं और पुरुओं के यज्ञों में विद्यमान हो तो वहां से भी हे सामर्थ्यवान देवो हमारे यज्ञ में आए और निष्पादित सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि अवमस्याम पृथिव्याम मध्यमस्याम परमस्यामुतस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों ऊपर नीचे या मध्य में जहां भी पृथ्वी के जिस किसी भाग में भी स्थित हो, इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान अवश्य करें। यदिंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम मध्य मस्यामवमस्यामुतस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव और अग्निदेव, आप ऊपरी स्वर्गलोक, अंतरिक्षलोक, मध्यलोक तथा नीचे के भूभाग में जहां भी हो, हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि दिविष्ठो यत् पृथिव्याम यत् पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे बलशाली इंद्राग्नि, आप दोनों द्युलोक, पृथ्वी, पर्वतों, औषधियों अथवा जलों में भी जहां विद्यमान हो, वहां से हमारे यज्ञ में निष्पादित सोमपान के लिए आगमन करें। यदिंद्राग्नि उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्य संपन्न इंद्राग्नि, आप दोनों स्वर्गलोक के बीच में सूर्योदय की वेला में हो अथवा अन्न सेवन के बाद विश्राम का आनंद ले रहे हो, ऐसे में भी आप दोनों हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। एवेन्द्राग्नि पपिवासा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों सोमरस के पान से हर्षित होकर सभी प्रकार की संपदाओं को जीत कर हमें प्रदान करें। हमारी अभीष्ट कामना पूर्ति में मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी और दिव्य लोक के सभी देव सहायक हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 108 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन शाहनवाज। नवंबर 1945 से 1946 तक चले एक ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान देश भर में गूंज उठा था ये नारा। दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला और उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को इसने एकता के सूत्र में बांध दिया। इन्हीं तीन सैन्य अधिकारियों में से एक मेजर जनरल शाहनवाज खान की चर्चा आज इस कार्यक्रम में। मेजर जनरल शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वो एक महान देशभक्त, बहादुर सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबियों में से एक थे। इसके साथ ही वो एक समर्पित राजनेता और सच्चे समाज सेवी भी थे। शाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी सन 1914 को रावलपिंडी के पास स्थित गांव मटौर में हुआ था। उनके पिता का नाम टीका खान था, जो स्वयं एक फौजी थे। पारिवारिक वातावरण से ही उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक सैनिक बने और राष्ट्र की सुरक्षा का काम करें। उन्होंने देहरादून के इंडियन मिलिट्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और सन 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। इस तरह उनके बचपन का एक सपना पूरा हुआ। वो एक अत्यंत पराक्रमी और जाबाज सिपाही थे, जो मिट तो सकता था लेकिन टूट नहीं सकता था। यही कारण है कि सेना में उनकी विशेष पहचान रही और पदोन्नत होते हुए वो कैप्टन के पद तक पहुंचे। भारत भूमि की सेवा ही उनका अटल संकल्प था।

शाहनवाज खान ब्रिटिश भारतीय फौज में शामिल हो चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। शाहनवाज खान को दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती मिली थी। इसी बीच जापानियों ने सिंगापुर पर हमला कर दिया। सिंगापुर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के साथ भारत से लगभग 60,000 भारतीय सैनिकों को सिंगापुर भेजा। इसमें कैप्टन के तौर पर शाहनवाज खान भी शामिल थे। भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना की हार हुई। शाहनवाज खान को हजारों सैनिकों के साथ युद्धबंदी बना लिया गया। सिंगापुर जेल में शाहनवाज खान की भेंट अनेक क्रांतिकारी सैनिकों से हुई और भारत की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों के समर्पण से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये उनकी जिंदगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद से इन बंदी सैनिकों को रिहा करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंदी सैनिकों के सामने ओजस्वी भाषण दिया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की वाणी का प्रभाव बहुत गहरा था। सैनिक अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित करने को तत्पर हो गए। इस तरह शाहनवाज खान सहित सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत माता की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। ये शाहनवाज खान के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। नेताजी के विचारों से जैसे उनके भीतर एक उजाला हो गया। नेताजी ने उन्हें भारत को एक भारतीय की दृष्टि से देखने का बहुमूल्य दृष्टिकोण दिया। फौजी तो वो अब भी थे, लेकिन अब उनका समर्पण आजाद हिंद फौज के लिए था। अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों का लाभ लेकर भारतीय स्वाधीनता के लिए युद्ध का इरादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में भी शामिल किया था। सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का कमांडर नियुक्त किया। नेताजी का सपना था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की बहादुरी और उनके समर्पण से अत्यधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें मेजर जनरल की उपाधि प्रदान की थी। नेताजी की योजना के अनुसार शाहनवाज खान ने अपने सैनिकों के साथ पूर्वोत्तर भारत के कोहिमा और इम्फाल पर धावा बोला। इस लड़ाई में प्रमुख कमांडर के रूप में शाहनवाज खान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना का नेतृत्व तो किया ही, अस्थायी रूप से इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा भी किया, जो भारत की आजादी के लिए नेताजी का एक निर्णायक अभियान था। बर्मा से भारत की ओर बढ़ते हुए जापानी सेना के समर्थन से उन्होंने आजाद हिंद फौज का अद्भुत नेतृत्व किया तथा भारत में प्रवेश करने के लिए मंच तैयार किया। दिल्ली चलो का नारा सैनिकों को उत्साह से भरता रहा। हालांकि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा स्थायी नहीं हो सका और मेजर जनरल शाहनवाज खान और उनके दल को अंग्रेजी सेना ने सन 1945 में बंदी बना लिया। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग नारा लगा रहे थे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। अंग्रेजों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन जनता के विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया। उनकी सजा को बर्खास्तगी में तब्दील कर दिया गया तथा आजाद हिंद फौज के इन अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। ये मुकदमा आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई ऊर्जा से भर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना से सीधे युद्ध कर मेजर जनरल शाहनवाज खान ने स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा मेरठ से सांसद चुने गए। वो सन 1952 से 1971 तक लगातार 4 बार निर्वाचित हुए तथा उन्होंने रेलवे, कृषि, श्रम तथा इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। सन 1956 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कमेटी बनाई गई तो शाहनवाज खान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 9 दिसंबर सन 1983 को अंतिम सांस ली। वो एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश को ही अपना मजहब माना और अपनी हर सांस उसे समर्पित कर दी। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक सर ओ हेनरी की कहानी पोशाक।

0: बड़े नगरों में रहस्य एक के बाद एक इतनी शीघ्रता से घटित होते हैं कि पाठक गण और जॉनी बेल चैम्बर्स के मित्रों ने बिना उसके स्पष्टीकरण दिए अचानक गायब हो जाने पर लगभग एक वर्ष पूर्व ही आश्चर्य करना छोड़ दिया है। हालांकि यह रहस्य अब स्पष्ट हो गया है, किंतु इसका हल एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क के लिहाज से इतना विचित्र और अविश्वसनीय है कि कुछ चुनिंदा लोग ही जो बेल चैम्बर्स के अत्यधिक समीप थे इस पर पूर्ण विश्वास करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि जॉनी बेल चैम्बर्स समाज के सर्वोत्कृष्ट वर्ग के निजी अंतरंग समुदाय से संबंधित था। सलीकेदार लोगों की दिखावेबाजी के बिना जो अपने धन और वैभव के प्रदर्शन द्वारा ध्यान आकर्षण के लिए संघर्ष करते हैं, वो अब भी प्रत्येक बात में इतना अनुशासित था कि समाज के उच्च वर्ग में उसे वांछित योग्यता का उच्च स्थान प्राप्त था। विशेषता उसने परिधानों के विषय में जानकारी के लिए नाम कमाया। इसमें नकल करने वालों को निराशा हाथ लगती थी। उसके पास सदैव उचित, अद्वितीय और असीमित वस्त्र होते थे। वो न्यूयॉर्क और संपूर्ण अमरीका में सबसे बढ़िया परिधान पहनने वालों में गिना जाता था। गोथेम में एक भी दर्जी ऐसा नहीं था जो जॉनी बेल चैम्बर्स के लिए वस्त्र सिलने के विशेषाधिकार को बिना एक भी पैसा लिए एक अमूल्य वरदान की भांति न समझता हो। जब वो उनके सिले हुए कपड़े पहनता तो ये उसके लिए एक अमूल्य विज्ञापन की तरह होता था। उसे पतलूनों का बहुत शौक था। इसमें वो किसी और चीज से नहीं, मात्र त्रुटिहीनता से संतुष्ट होता था। उसके घर में सदैव एक व्यक्ति उसके वस्त्रों के ढेर इस्त्री करने में लगा रहता था। उसके मित्र कहते थे वो बिना वस्त्र बदले अधिक से अधिक मात्र 3 घंटों तक ही रह सकता था। बेल चैम्बर्स एकाएक गायब हो गया। 3 दिनों तक उसके मित्रों को इसमें कोई विशेष खतरा प्रतीत नहीं हुआ और फिर उन्होंने साधारण से पूछताछ प्रारंभ कर दी, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ गया था। फिर उसके मित्रों ने इसके पीछे छिपे किसी उद्देश्य की खोज की, लेकिन वहां भी असफलता ही हाथ लगी। उसका कोई शत्रु नहीं था, उसने किसी से कोई ऋण नहीं लिया था और ना ही किसी औरत के साथ उसके ऐसे संबंध थे। उसके खाते में $1,000 थे। उसमें मानसिक असंतुलन की प्रवृत्ति भी कभी भी दिखाई नहीं दी। वास्तव में वो शांत और संतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति था। गुमशुदा व्यक्ति को खोजने के प्रत्येक साधन का उपयोग कर लिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार से इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। गत वर्षों में इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटी थी जब कोई व्यक्ति एक मोमबत्ती की बुझी हुई लौ के समान गायब हो गया और अपने पीछे एक धुएं की लकीर जितना प्रमाण भी नहीं छोड़ गया। मई के महीने में टॉम ऑयर्स और लैंसनोट गिलियम, जो बेल चैम्बर्स के 2 पुराने मित्र थे, पर्यटन के लिए यूरोप गए थे। जब वो इटली और स्विट्जरलैंड में भ्रमण कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत पर स्थित एक मठ के विषय में सुना जो पर्यटकों के अन्य आकर्षणों से भिन्न था। मठ एक औसत पर्यटक की पहुंच से बाहर था। ये एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ चट्टानी पर्वतों पर स्थित था। इसके मुख्य आकर्षण, जिनके बारे में प्रचार नहीं किया जाता था, पहला, भिक्षुओं द्वारा अद्वितीय और दैवीय ढंग से स्वागत किया जाना था। तत्पश्चात पीतल के विशाल घंटे को इतनी शुद्धता और उचित ढंग से बजाया जाता कैसा प्रतीत होता जैसे 300 वर्ष पूर्व जब यह पहली बार बजा था तब से मानो ऐसा ही बज रहा हो। तीसरी और अंतिम बात यह कि वो ये दावा करते थे कि इसकी 4 दीवारी में आज तक किसी अंग्रेज के पांव नहीं पड़े थे। आयर्स और गिलियम ने यह निश्चय किया कि वे इन 3 सूचनाओं की खोज करेंगे। उन्हें 2 गाइडों की सहायता से संत गांड्रो के मठ तक पहुंचने में 2 दिन लगे। यह बर्फ से जमी हुई पथरीली चट्टान पर स्थित था जिसके चारों ओर जगह जगह बर्फ के समूह एकत्रित थे। उनकी बड़े ही सत्कार के साथ उन भंतों द्वारा अगवानी की गई जिनका कर्तव्य था कि वो यदा कदा आने वाले अतिथियों की देखभाल करें। उन्होंने बहुमूल्य सत्कार का पेय ग्रहण किया जिसे पीकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दुर्लभ रूप से शक्तिशाली और पुनर्जीवित करने वाला पेय था। उन्होंने सदैव बजते रहने वाले महान घंटे की आवाज सुनी और यह अनुभव किया कि धूसर पत्थर की उन दीवारों में वो एक अंग्रेज के स्थान पर, जिसके व्याकुल पांव पृथ्वी के प्रत्येक कोने को रौंद चुके थे, एक पथ प्रदर्शक यात्री थे। वो दोपहर के 3 बजे वहां पहुंचे। दो युवा गोथामी बंधु क्रिस्टोफर के साथ मठ के विशाल आधे मार्ग में भिक्षुओं की कदम ताल देखने के लिए खड़े थे। बंधु क्रिस्टोफर उन दोनों के साथ निशब्द चल रहे थे। जैसे ही जुलूस धीरे से आगे बढ़ा, आयर्स ने अचानक गिलियम की बांह पकड़ ली। देखो वो जो अब ठीक तुम्हारे सामने, वो इस ओर जो कमर पर हाथ धरे खड़ा है, यदि वो जॉनी बेल चैम्बर्स नहीं है तो उसका यह मतलब है कि मैं उसे जानता ही नहीं। गिलियम ने उस ओर देखा और फैशन के उस अचानक गायब हो गए दर्पण को तुरंत पहचान लिया। ओ ये हमारा पुराना मित्र बेल यहां क्या कर रहा है? उसने विस्मय से कहा, टॉमी ये बेल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बेल कभी धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि वो गिरजाघर में उचित प्रकार से न खड़े होने पर मिलने वाले दंड के विषय में भी अनाप शनाप बकता रहता था। यह निस्संदेह बैल ही है, आर्यस ने दृढ़ता से कहा, या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। परंतु तनिक जॉनी बेल चैम्बर्स के विषय में सोचो, जो फैशन जगत का राजसी उच्चाधिकारी था और उच्च वर्ग की प्रायः दी जाने वाली पार्टियों की शान था, और अब यहां शीत गृह में राख जैसे कपड़े पहने पूजा कर रहा है। मेरा मस्तिष्क ये स्वीकार नहीं करता। हमें उस हसमुख लड़के से पूछना चाहिए जो ये क्रियाकलाप कर रहा है। बंधु क्रिस्टोफर से ये जानकारी देने की प्रार्थना की गई। तब तक भिक्षु को मठ में प्रवेश कर चुके थे। वो नहीं बता सका कि वो किसकी बात कर रहे थे। बेल चैम्बर्स? ओह, संत गांड्रो के बंधुओं ने जब प्रतिज्ञा ली थी तो अपने सांसारिक नाम त्याग दिए थे। क्या आप सज्जन लोग किसी बंधु से बात करना चाहते हैं? यदि आप मठ में आए और जिससे मिलना चाहते हैं उसके विषय में बताएं तो सम्माननीय अधिकारी निसंदेह आपको इसकी अनुमति दे देंगे। अब आयस और गिलियम भोजन कक्ष में पहुंचे और जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था उसके लिए बंधु क्रिस्टोफर को संकेत कर दिया। हाँ, ये जॉनी चैम्बर्स ही था। उन्होंने देखा कि अब उसका चेहरा सादा था और वो अपने बंधुओं के साथ बैठा था और कभी ऊपर नहीं देख रहा था। वो एक भद्दे भूरे कटोरे से शोरबा पी रहा था। दोनों यात्रियों को उस बंधु से बात करने की अनुमति मिल गई थी और वो एक स्वागत कक्ष में उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब वो अपनी खड़ाऊं पहने धीरे धीरे चलता हुआ आया तो आयर्स और गिलियम दोनों ने उसे उलझन और आश्चर्य के साथ देखा। ये जॉनी बेल चैम्बर्स ही था, परंतु उसका रूप बदल गया था। उसके चिकने चेहरे पर एक असीम शांति और पूर्ण प्रसन्नता के आनंद की उपलब्धि के भाव थे। वो गर्व से सीधा खड़ा था। उसकी आंखें शांति और दयालुता के प्रकाश से चमक रही थी। वो उतना ही साफ सुथरा था जितना न्यूयॉर्क के दिनों में रहा करता था, लेकिन वो कितने भिन्न वस्त्र पहने था। अब उसने मात्र एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था, खुरदुरे भूरे रंग का एक लंबा चोगा जो एक डोरी से कमर पर बंधा था और पांव तक सीधी ढीली चुन्नटों के रूप में लटक रहा था। उसने अपने पुराने शिष्ट ढंग से अपने आगंतुकों से हाथ मिलाए। यदि इस भेंट में उसे कुछ उलझन हो भी रही थी तो वह जॉनी बेल चैम्बर्स के भावों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो रही थी। कमरे में कुर्सियां नहीं थी, इसलिए वो खड़े खड़े ही बातें कर रहे थे। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई प्रिय मित्र, आर्यस ने थोड़ी फूहड़ता से कहा।
1: हम यहां तुम्हारे आने की आशा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वाह, क्या बात है! ये समाज का एक प्रभावशाली पाखंड है, ये घूम घूम कर चक्कर खाना और वो हाँ ध्यान में लीन हो जाना, और हाँ प्रार्थना और भजन, इन सब में बड़ी शांति मिलती होगी।
0: ये सब छोड़ो जॉमी, बेल चैम्बर्स ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। डरो मत, मैं ये इन सब के साथ इसलिए करता हूं कि ऐसा नियम है। मैं यहां बंधु एम्ब्रोज हूं, क्या तुम जानते हो? मुझे तुम लोगों से बात करने के लिए 10 मिनट दिए गए हैं। तुमने ये जो कोट पहना है कुछ नई शैली का लगता है, नहीं गिलियम? क्या ब्रॉडवे में अब इस प्रकार के वस्त्र पहने जा रहे हैं? अरे ये तो हमारा वही पुराना जॉनी है, गिलियम ने आनंद पूर्वक कहा। तुम शैतान! मेरा तात्पर्य है कि क्यों, ओह तुमने ये सब क्यों किया प्रिय मित्र?
1: अपने ये वस्त्र उतार फेंको,
0: आर्यस ने लगभग क्रंदन करते हुए प्रार्थना की,
1: और हमारे साथ वापस चलो। तुम्हारे अपने पुराने मित्र तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। तुम इसके लिए नहीं बने हो बेल। अपना त्याग पत्र दे दो, रिहाई ले लो, या जो कुछ तुम्हें इस बर्फ खाने से मुक्त होने के लिए करना है करो। जॉनी तुम्हें यहां सर्दी लग जाएगी और हे ईश्वर, तुमने तो जुराबें तक नहीं पहनी है।
0: बेल चैंबर्स ने अपनी खड़ाओं की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम लोग नहीं समझ सकते, उसने सांत्वना देते हुए कहा। तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो, परंतु अपने पुराने जीवन में मैं पुनः नहीं लौट सकूंगा। मैं यहां अपनी संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्य पर पहुंच गया हूं। मैं यहां पूर्ण रूपेण आनंदित और संतुष्ट हूं। अब मैं अपना शेष जीवन यहीं बसर करूंगा। मैंने जो पोशाक धारण कर रखी है, इसे देख रहे हो? बेल चैंबर्स ने ध्यान से सीधे लटकते वस्त्र को स्पर्श करते हुए कहा। अंततः मुझे कुछ ऐसा मिल ही गया जो घुटनों पर उभरा हुआ नहीं होता। मुझे प्राप्ति हो गई है। उसी क्षण विशाल पीतल के घंटे की गहरी ध्वनि मठ में गूंज उठी। ये तत्क्षण भक्ति के लिए बुलावा रहा होगा, क्योंकि बंधु एम्ब्रोज ने सिर झुकाया, मुड़ा और बिना एक भी शब्द कहे वो कक्ष से चला गया। वो जैसे ही पत्थर के द्वार से गुजरा, धीमे से लहराते उसके हाथ ने जैसे उसके पुराने मित्रों से अलविदा कहा। उन दोनों ने भी उससे पुनः मिले बिना ही मठ छोड़ दिया। और ये वो कहानी है जो टॉमी आयर्स और लैंसलोट गिलियम यूरोप की अपनी नवीनतम यात्रा से अपने साथ लेकर वापस आए। सुनो कहानी के अपने अगले अंक में फिर किसी कथाकार, फिर किसी साहित्यकार की एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये कहानी थी सर ओ हेनरी की पोशाक। आवाज दी थी संदीप शर्मा ने। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

0: वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं वर्षा सिंह।
1: श्रोताओं, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकार समय से आगे चलकर भी दिलों में ठहर जाता है, इसी तरह का कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। आज कला कल्लोलिनी में हम बात करेंगे उस संगीत साधक की, जिसके हाथों में समय की धड़कन थिरकती थी, जिसके संतूर से पर्वत बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और आकाश राग में ढल जाता था। आज का विषय है संतूर सम्राट शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोक से उठाकर शास्त्रीय आकाश तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार।
2: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला को नहीं चुनते, कला उन्हें चुनती है। उनका जीवन किसी अभ्यास की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होता है। वे मंच पर नहीं चढ़ते, वे मंच बन जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ऐसे ही कलाकार थे, जिनके लिए संगीत न पेशा था न प्रदर्शन, बल्कि एक आजीवन तपस्या।
1: भारत के मानचित्र में एक भूखंड ऐसा भी है जहां धरती केवल मिट्टी का विस्तार नहीं होती, वहां वो साधना का स्वरूप बन जाती है, जहां पर्वत मौन होकर भी उपदेश देते हैं और नदियां बहते बहते राग रचती हैं, जहां सुबह की हवा सिर्फ शीतल नहीं होती, वो अपने साथ स्वरों की स्मृति लाती है, और जहां संध्या की निस्तब्धता में ताल अदृश्य होकर भी स्पष्ट सुनाई देती है, वो धरती है जम्मू कश्मीर।
2: साथियों, 10 जनवरी 1938 जम्मू शहर, वो नगर जो केवल भौगोलिक बिंदु नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है, जहां मैदान पहाड़ों से संवाद करते हैं। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके लिए समय ने पहले ही अपनी भूमिका तय कर दी थी, एक बालक जो आगे चलकर स्वरों का यात्री बना और जिसकी साधना ने एक लोकवाद्य को शास्त्र का सिंहासन दिलाया। उस बालक का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: वो जन्म से ही किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थे, भले ही उनका जन्म जम्मू की धरती पर हुआ, पर उनकी चेतना कश्मीर की शांत घाटियों में अनविरत विचरण करती रही। उनके भीतर हिमालय का धैर्य था, झेलम की निरंतरता थी, और घाटियों का वो मौन था जो बोलने से पहले अनुभव करता है। यही कारण था कि जब संतूर के 100 तार उनकी उंगलियों में स्पंदित हुए तो वह केवल संगीत नहीं था, कश्मीर की आत्मा थी जो स्वर बनकर विश्व से संवाद कर रही थी।
2: जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही कथा कहने लगे, तब समझिए संगीत बोल रहा है। ये कथा ना किसी राजा की है, ना किसी युद्ध की, ये कथा है एक साधक की जिसने 100 तारों में अपनी आत्मा बांध दी। ये कथा है उस वाद्य की जिसे कभी लोक सीमाओं में बांध दिया गया था और एक मनुष्य ने उसे शास्त्र का आकाश दे दिया। उस साधक का नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, उनके पिता थे पंडित उमा दत्त शर्मा। बनारस की पवित्र संगीत धारा में उन्होंने अपने गुरु पंडित रामदास जी से शिक्षा पाई थी। ध्रुपद और ख्याल उनकी साधना के 2 स्तंभ थे और तबला तथा पखावज उनके हाथों में केवल वाद्य नहीं बल्कि समय को नापने वाले साधन बन जाते थे। उनकी गायकी में बनारस घराने की गंभीरता थी, वो ठहराव, वो गहराई जो स्वर को सजावट नहीं अर्थ देती है। ऐसा कहा जाता है जब वे रियाज में बैठते तो स्वर पहले कमरे में उतरते और फिर धीरे धीरे मन में। उस घर का वातावरण साधारण नहीं था, वहां सुबह सूरज की पहली किरण से पहले रियाज शुरू हो जाता और रात तब समाप्त होती जब स्वर थक कर मौन में विश्राम करते। वो घर सोता नहीं था, वो सुनता था, दीवारें ताल पहचानती थीं और आंगन रागों का साक्षी था। उसी वातावरण में शिव कुमार शर्मा बड़े हुए जहां संगीत सिखाया नहीं जाता था, जिया जाता था।
2: जी हाँ, माता का हृदय भी संगीत से भरा हुआ था, कोमल, संवेदनशील और स्वप्नदर्शी। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं और उनके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ आकांक्षा पलती रहती थी। उनकी आंखों में एक सपना था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई एक दिन संतूर जैसे लोकवाद्य पर भी उसी गरिमा के साथ गूंजे। शायद वही सपना था जो आगे चलकर शिव कुमार शर्मा की साधना में बदल गया। पिता ने अनुशासन दिया, गुरु ने दिशा दी और माँ ने उस यात्रा को अर्थ, और यही तीनों मिलकर एक ऐसे संगीतज्ञ को गढ़ रहे थे जिसकी कथा आगे चलकर संतूर की तरंग में लिखी जानी थी।
1: शिव कुमार शर्मा ने बचपन में कभी संगीत को अलग विषय की तरह नहीं देखा, वो तो उनके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव कुमार सुरों से खेलते। जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनते, वे आलाप सुनते। उनके लिए संगीत सीखा नहीं जाता था, वो देखा, सुना और जिया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया। कोई दबाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उमा दत्त शर्मा जानते थे कि संगीत को थोपने से नहीं, बोने से फल मिलता है।
2: स्कूल की पढ़ाई भी चली, किताबें भी आईं, लेकिन शिवकुमार का मन कक्षा की चार दीवारों में नहीं टिक पाता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें समझ आते थे, पर हवा में तैरते हुए सुर उन्हें ज्यादा सच लगते थे। शिक्षक पढ़ाते और खिड़की से आती हवा किसी अनजाने राग का संकेत दे जाती। पढ़ाई जरूरी थी, पर आत्मा का रास्ता कहीं और था, और आत्मा का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं गुजरता।
1: जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र तक शिव कुमार जम्मू के स्थानीय रेडियो स्टेशन पर गायन और तबला प्रस्तुत करने लगे थे। रेडियो की तरंगों पर उनका स्वर जाना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा छोटी नहीं होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशोर अवस्था में पिता ने उन्हें संतूर से परिचित कराया, वही संतूर जो कश्मीर की सूफी परंपरा में गूंजता तो था, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर अभी तक अजनबी था। लगभग 100 तारों वाला ये वाद्य सुंदर तो था, लेकिन जिद्दी भी था। स्थिर स्वर होने के कारण लोग मानते थे कि ये रागों की बारीकियों के लिए उपयुक्त नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खुद पंडित शिव कुमार शर्मा का कहना है, असल में संतूर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसे संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 100 तार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया।
2: पिता की इच्छा और उनकी कामना शिव कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार ने संतूर को अपनी साधना का केंद्र बना लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उंगलियां दुखती थीं, तार उलझते थे और हर राग एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार निराशा हुई, लेकिन पिता का विश्वास, माँ का सपना और भीतर की पुकार, तीनों मिलकर उन्हें हर बार रियाज की चौकी पर वापस बैठा देते।
1: शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया और अपने चिंतन तथा प्रयोगों से इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की थी, जिससे शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णता सक्षम वाद्य बन गया। शिव कुमार शर्मा जी को ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि की शिक्षा भी मिली थी। श्रोताओं, बचपन की गलियों से निकलकर शिव कुमार अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। माता पिता अब केवल जीवन देने वाले नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे, जिनकी आंखों में आशीर्वाद था और जिनके मौन में प्रार्थना बसती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। स्वरों की उड़ान किसी और बड़े आकाश की मांग करने लगी थी। भीतर कहीं एहसास गहराने लगा था कि अब केवल सीखा हुआ दोहराने का समय नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने का समय आ गया है। इसी परिवर्तन की पुकार में नई राह खोजने की आस लेकर शिव कुमार ने अपने संतूर को साक्षी बनाया और बंबई की ओर कदम बढ़ा दिए। ये केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, ये समय के साथ चलने का साहस था, जहां भविष्य इंतजार में नहीं परीक्षा में मिला करता है और जहां हर कलाकार को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है।
2: 1955 में जब शिव कुमार शर्मा पहली बार मुंबई पहुंचे, तो ये यात्रा उतनी उजली नहीं थी जितनी बाद में इतिहास में दिखाई देती है। उस समय बम्बई केवल अवसरों का शहर नहीं था, वो नए कलाकारों के लिए एक कठोर कसौटी थी, जहां हर दिन कोई ना कोई सपना टूटता था और कोई जिद जन्म लेती थी। शिव कुमार अपने संतूर के साथ इस शहर में आए, लेकिन शहर ने उन्हें तुरंत अपनाया नहीं। कुछ मंच मिले, कुछ लोगों ने सुना, पर स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आशा लेकर वो आए थे। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन पहचान नहीं थी। धीरे धीरे निराशा ने भी दस्तक दी और कुछ समय बाद मन और हालात दोनों थक गए। वे लौट आए जम्मू, खाली हाथ नहीं, लेकिन भारी मन के साथ।
1: घर लौटने पर पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने बेटे के चेहरे पर वो चुप्पी देखी जो हार की नहीं उलझन की होती है। पिता ने व्यावहारिक स्वर में कहा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, रेडियो में नौकरी कर लो, संगीत भी रहेगा और जीवन भी संभल जाएगा। ये सलाह अनुभव से उपजी थी, डर से नहीं, लेकिन शिव कुमार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा, संगीत अगर करूंगा तो अपने दम पर, मैं फिर बंबई जाऊंगा और मेहनत करूंगा। उस क्षण पिता समझ गए कि यह जिद नहीं है, स्वभाव है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, केवल आशीर्वाद दिया जाता है।
2: दूसरी बार बंबई जाना पहले से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन भीतर कहीं अधिक स्पष्टता थी। अब वे कलाकार नहीं थे, साधक थे। इस दूसरी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से, भारतीय सिनेमा के उस स्तंभ से, जिसकी दृष्टि संगीत को केवल सजावट नहीं आत्मा मानती थी। वी शांताराम ने शिव कुमार के संतूर में कुछ अलग सुना। उन्होंने उन्हें अपनी प्रसिद्ध झनक झनक बाजे पायलिया फिल्म से जुड़े संगीतकार वसंत देसाई के पास भेजा। वसंत देसाई ने उनसे कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक छोटा सा संगीत टुकड़ा बना कर दिखाइए।
1: और यही वो छोटा सा अवसर, वही क्षण शिव कुमार शर्मा के बंबई के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बन गया। संतूर, जो अब तक शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह तलाश रहा था, पहली बार सिनेमा की दुनिया में धीरे से प्रवेश कर रहा था। ये शुरुआत थी शोर से नहीं, सौम्यता से। यहीं से वो यात्रा चली जो आगे चलकर शिव हरी जैसी ऐतिहासिक जुगलबंदी तक पहुंची और सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के अमर संगीत में ढल गई।
2: संघर्ष की राग रात्रि बीत चुकी थी। साधना ने जब स्थिर सुर को थामा, तब जीवन के तानपुरे पर मंगल बेला की पहली तान फूटी। 1966 में शिव कुमार शर्मा के जीवन में स्थिरता का एक मधुर अध्याय जुड़ा। उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक कलाकार और उसकी साधना के बीच बनी गहरी समझ का संबंध था। कलाकार का पहला प्रेम उसका संगीत होता है, और मनोरमा जी ने इस सत्य को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाया जहां समय रियाज का होता है और प्रतीक्षा प्रेम की भाषा बोलती है। इस दाम्पत्य में शब्द कम थे, पर भरोसा गहरा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। पुत्र राहुल और रोहित का आगमन हुआ। उनके पुत्रों रोहित और राहुल ने पिता की साधना को बहुत पास से देखा, पर मंच और संतूर की पुकार राहुल शर्मा के भीतर सबसे गहरी उतर गई। पिता ने बेटे पर संगीत थोपा नहीं, बस उसे सुरों के पास बैठने दिया, और वहीं बैठना, वही सुनना एक दिन संतूर बन गया। राहुल में शिव कुमार शर्मा ने उसे संगीत लौ की झलक देखी जो कभी उनके भीतर जली थी।
1: आगे चलकर शिव कुमार शर्मा ने अपने पुत्र राहुल शर्मा को अपना शिष्य बनाया और संतूर वादन में पारंगत किया, और संतूर की साधना पिता से पुत्र तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। जिस दिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने पहली बार राहुल के साथ मंच साझा किया, वो क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक लम्हा था। श्रोताओं को शायद एक जुगलबंदी सुनाई दी, पर पिता के हृदय में वो पल था जब गुरु और पिता दोनों एक साथ खड़े थे, पर आंखें नम थीं।
2: जब समय आगे बढ़ चुका था, संतूर को पहचान मिल चुकी थी, तब जीवन ने पंडित शिव कुमार शर्मा को वो सुख दिया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, अपने ही सुरों को अगली पीढ़ी में जीवित देखना। पिता और पुत्र की ये जोड़ी वर्ष 1996 से साथ साथ संतूर वादन में जुगलबंदी करते आ रहे हैं। रोहित मंच पर नियमित रूप से संतूर वादन में नहीं आए, पर परिवार की नींव सहारा और मौन शक्ति बनकर साथ रहे।
1: श्रोताओं, संगीत की दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर परिवार के लिए समय बहुत कम। यात्राएं, रियाज, मंच, इन सब के बीच परिवार के लिए कुछ पल चुराने पड़ते थे। फिर भी जब वे घर में होते तो पूरी तरह घर के होते। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बातें, पत्नी का मौन सहयोग, यही उनका विश्राम था। उनका परिवार उनके संगीत की वो तान था जो मंच पर नहीं बजती, पर भीतर गूंजती रहती है।
2: दोस्तों, अब हम उनके बंबई यानी कि फिल्मी दुनिया के सफर पर वापस लौटते हैं। आइए चलते हैं वापस बंबई। वी शांताराम जी के साथ काम करने के बाद असल में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत सफर आगे बढ़ता है। शिव और हरि मिलते हैं, इतिहास रचते हैं। मुंबई में जीवन कभी सरल नहीं रहा। ये शहर सपनों को बुलाता भी है और उन्हें कठोरता से परखता भी है। इसी भीड़ में, इसी शोर के बीच एक दिन शिव कुमार शर्मा की भेंट हुई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दो साधकों का मिलन था। शब्द कम थे, मौन अधिक। संतूर और बांसुरी जब पहली बार आमने सामने आए तो किसी ने मंच के किनारे फुसफुसा कर कहा, ये संगीत नहीं संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं सांसें बोलती हैं। यहीं से जन्म हुआ 1967 में उस ऐतिहासिक यात्रा का, जिसे दुनिया ने कॉल ऑफ द वैली के नाम से जाना।
1: शिवहरी की जोड़ी और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की संगत से एल्बम कॉल ऑफ वैली बनाया, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। कश्मीर की घाटियों की स्मृति, पहाड़ों की नीरवता और साधना की सुगंध सब एक ही एल्बम में उतर आए। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मील का पत्थर बन गया।
2: समय के साथ ये आत्मिक जुगलबंदी मंचों से निकलकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंची। जब यश चोपड़ा जैसे संवेदनशील निर्देशक ने शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया के संगीत पर भरोसा किया, तब फिल्म संगीत की भाषा ही बदलने लगी। सिलसिला में देखा एक ख्वाब, ये कहां आ गए हम, चांदनी में, चांदनी ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की लम्हे में मोहे छेड़ो ना, यादें याद आती हैं। इन गीतों में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो स्वयं कथा बन गया। प्रेम, विरह, स्मृति और मौन, सब कुछ सुरों में बहने लगा। 1980 और 1990 का दशक आते आते शिवहरी केवल संगीतकारों की जोड़ी नहीं रहे, वे एक एहसास बन चुके थे जिसे सुना नहीं जिया जाता था।
1: जी हाँ, कॉल ऑफ द वैली और इसके बाद फिल्मी सफर पर तो हमने खूब बातें की, लेकिन शिव कुमार शर्मा की संगीत यात्रा केवल मंचों और सम्मानों तक सीमित नहीं रही। उसका सबसे स्थायी रूप उनके एल्बम्स में दर्ज हुआ, जहां समय थमकर सुरों में खो जाता है। हर एल्बम उनके जीवन की किसी न किसी साधनात्मक अवस्था का दस्तावेज है, उस आत्मविश्वास का प्रमाण जिसमें संतूर अकेले मंच पर खड़ा हो सका।
2: आगे के वर्षों में उनके एल्बम और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। 1982 में जाकिर हुसैन के साथ वैन टाइम स्टूड स्टिल जैसे प्रयोगों ने ताल और सुर के बीच गहरे संवाद को जन्म दिया। 1987 में राग मधुवंती और राग मिश्र तिलंग जाकिर हुसैन जी के साथ तथा 1988 में सम्मोहक सिंतूर तथा 1988 में सम्मोहक संतूर, इन कृतियों में संतूर केवल वाद्य नहीं एक गायक सा प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के और म्यूजिक एल्बम को साझा कर रहे हैं।
1: When Time Stood Still, Live in Bombay, 1982, The Glory of Strings, संतूर, 1991, राग भोपाली वॉल्यूम 1, 1993, राग केदार वॉल्यूम 2, 1993, A Homage to the Rain Gods, 1993, 100 Strings of संतूर, 1994, हिप्नोटिक संतूर 1994, द पायोनियर ऑफ संतूर 1994, राग बिलास खानी तोड़ी 1994, वर्ल्ड नेटवर्क सीरीज वॉल्यूम 1, इंडिया, राग पूरिया कल्याण विद जाकिर हुसैन 1995, संतूर, राग बागेश्री 1998, संप्रदाय 1999, रसधारा विद हरिप्रसाद चौरसिया 1999, द वैली रिकॉर्ड्स वॉल्यूम 2, हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सन 2000, आनंद ब्लिस विद जाकिर हुसैन 2002, वाइब्रेंट म्यूजिक फॉर रेकी 2003, सिंपैटिको राग चारुकेशी 2004, द इनर पाथ कीरवानी 2004, एसेंशियल इवनिंग चैंट्स 2007, अ मॉर्निंग रागा गुजरी तोड़ी 2010, शिव कुमार शर्मा मैस्ट्रोस चॉइस सीरीज 2 2011 और संगीत सरताज 2011।
2: 1993 और 94 के एल्बम उनके संगीत के आध्यात्मिक और प्रकृति संवेदी पक्ष को उजागर करते हैं। उनका संगीत ऋतुओं, भावों और अनुभूतियों से गहराई से जुड़ा था। ध्वनि परिदृश्य, पहाड़ों का संगीत, संतूर की 100 लड़ियां, राग बिलास खानी तोड़ी और एक सुबह का राग गुजरी तोड़ी। इन रचनाओं में पहाड़, प्रातःकाल और मौन स्वयं बोलने लगते हैं।
1: 1996 में हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आया घाटी की यादें और द वैली रिकॉल्स उस जुगलबंदी की परिपक्व स्मृति थे जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। 1999 की मैस्ट्रो की पसंद श्रृंखला 2 संप्रदाय और रसधारा में उनकी साधना और अधिक संतुलित, अधिक गहन दिखाई देती है। 2001 में बॉम्बे में शनिवार की रात जैसे प्रयोगात्मक एल्बम में जॉन मैकगिलन और जाकिर हुसैन, तो 2002 में आनंद ब्लिस और समय का प्रवाह ने संगीत को ध्यान और उपचार से जोड़ दिया।
2: 2003 से 2007 तक के एल्बम रेकी के लिए जीवंत संगीत, सिंपैटिको आंतरिक पथ और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आवश्यक संध्या मंत्र इस बात के साक्ष्य हैं कि शिव कुमार शर्मा के लिए संगीत जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना ही बना रहा। उनके एल्बम किसी कालखंड की सूची नहीं बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर रचना सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वयं शिव कुमार शर्मा का संतूर।
1: श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा को देश विदेश में उनके अद्वितीय संगीत योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता मिलना इस बात का प्रमाण था कि उनका संतूर केवल भारत ही नहीं विश्व की आत्मा को भी छू रहा था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और फिर पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी साधना, नवाचार और परंपरा के प्रति समर्पण की औपचारिक स्वीकृति थे। फिल्म संगीत में भी उनकी जोड़ी शिवहरी ने इतिहास रचा। कॉल ऑफ द वैली और सिलसिला के संगीत को प्लैटिनम डिस्क, फासले को गोल्ड डिस्क, चांदनी को प्लैटिनम डिस्क मिली। लम्हे और डर के लिए उत्कृष्ट संगीत और रिकॉर्ड बिक्री हेतु उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। 1967 में आया मेस्ट्रोस चॉइस सीरीज 1 उनके शास्त्रीय वैभव का सशक्त प्रमाण बना, जहां संतूर, समय और साधना एक ही स्वर में गूंजते हैं।
2: शिव कुमार शर्मा ने संतूर को केवल तकनीकी रूप से नहीं भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नया आयाम दिया। 1960 के दशक से वे संतूर की ध्वनि को ध्यान और अंतर्मुखता से जोड़ने लगे थे। उनकी वादन शैली में एक स्थिरता, एक ठहराव था जिसमें सुनने वाला स्वयं को भूलकर स्वयं के भीतर उतर जाता था। यही कारण था कि उनके संतूर को लोग केवल सुनते नहीं थे, अनुभव करते थे। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि उनका संगीत मन को शांत करता है, भीतर एक अजीब सी उजास भर देता है, जैसे कोई मौन ध्यान साकार हो उठा। उनकी प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुकी थी। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उनके शिष्यों और श्रोताओं का विस्तार था। विश्व के विभिन्न देशों से युवा कलाकार उनके पास संदूर सीखने आते थे, केवल तकनीक के लिए नहीं बल्कि उस दृष्टि के लिए जिससे संगीत साधना बन जाता है। उनके लिए संतूर 100 तारों का वाद्य नहीं, 100 भावनाओं की साधना था।
1: श्रोताओं, कश्मीर की जिन वादियों में कभी संतूर की पहली झनकार गूंजी थी, वहीं से निकली वो आत्मा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे शाम की हवा खुद को अंधेरे में सौंप देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दुनिया कोविड के कठिन समय से गुजर रही थी, पंडित शिव कुमार शर्मा भी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण वे डायलिसिस पर थे, पर मन अब भी संगीत से बंधा हुआ था। शरीर थक रहा था पर साधना नहीं। 10 मई 2022 की सुबह एक हृदयाघात के साथ उनकी जीवन तान शांत हो गई। चौरासी वर्ष की आयु में मुंबई के उसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कभी सपनों की गठरी लेकर वे आए थे। अंतिम दिनों में पत्नी मनोरमा और पुत्र राहुल उनके साथ छाया की तरह रहे। संतूर अब भी परिवार की धड़कन था।
2: उनके जाने की खबर के साथ ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अमजद अली खान ने इसे एक युग का अंत कहा। कलाकारों, श्रोताओं और साधकों को लगा जैसे किसी ने भारतीय संगीत की आत्मा का एक कोना मौन कर दिया। पूर्ण राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। गरिमा, सादगी और कृतज्ञता के बीच।
1: शिव कुमार शर्मा के हाथों में संतूर केवल वाद्य नहीं रहा, वो स्मृति बना, साधना बना और समय की ध्वनि बन गया। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ मिलकर उसने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा का नया दर्पण दिया। वो केवल एक महान कलाकार नहीं थे, वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की वो तान थे जो धीमे धीमे बजती है लेकिन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। सच्चे अर्थों में वे भारत की संगीत आत्मा की एक अनमोल धरोहर थे।
2: पंडित शिव कुमार शर्मा का जीवन सपना संतूर को लोक की सीमाओं से उठाकर शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पूर्ण हुआ। उन्होंने कभी ऊंचाइयों की घोषणा नहीं की, केवल साधना की, और वही साधना आज भी जीवित है। संतूर की हर तार में, हर झनकार में उनका समय, उनका तप और उनका मौन बोलता है।
1: और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ऐसा लगता है कश्मीर की वादियां अब भी बहुत धीमे स्वर में कह रही हैं, ये राग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो अनंत में प्रवेश है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्ला कल्लोलिनी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा,
2: और मैं वर्षा सिंह।
1: मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन था दीपक नेमा का। अपने कार्यक्रम कला कलोलिनी में फिर किसी ऐसे ही कला साधक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
1: सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा शरीर अपने आप को सक्रिय रखने में अनेक गतिविधियां करता रहता है। शैशव अवस्था से बाल अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चा स्वयं से ही अनेक खेलों से जुड़ जाता है, जिसमें खो खो, दौड़ भाग, छुपन छुपाई जैसे खेल हमें शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखते थे। वहीं राजा, मंत्री, चोर, सिपाही या पहेली बूझना, वर्ग पहेली सुलझाना, लूडो जैसे गेम हमारे दिमाग को तेज रखते थे। वास्तव में खेलों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि स्वस्थ और सफल जीवन की नींव है। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को नीरस होने से बचाते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष 7 मई का दिन हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है आज के दिन का, इसी विषय पर गहनता से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री एस के प्रसाद, जो मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं एस के प्रसाद, मुख्य प्रशिक्षक एथलेटिक्स अकादमी भोपाल।
1: सर, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं?
2: विश्व एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को बच्चों और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें खेलों विशेषकर एथलेटिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: सर, एथलीट शब्द होता है एक और एक होता है एथलेटिक्स, तो यहाँ दोनों शब्दों को हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें आप परिभाषित करेंगे।
2: मैं एथलीट और एथलेटिक्स दोनों ही शब्द शारीरिक खेल और क्षमता से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक एक करके सूक्ष्म अंतर है।
1: जी,
2: एथलीट उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक शक्ति, गति, सहन शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों या प्रतियोगिता में भाग लेता है।
1: जी,
2: जैसे एथलीट, बॉक्सर, स्विमर, कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति खेल में हिस्सा ले रहा है वो एक एथलीट है।
1: जी,
2: एथलेटिक्स उन खेलों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना शामिल है।
1: जी, जी।
2: इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड।
1: जी जी,
2: ट्रैक में जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स हैं, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस, और फील्ड में थ्रोज हैं, जंप्स हैं। थ्रोज में भी शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर, जंप्स में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट इत्यादि वगैरह वगैरह ऐसा है।
1: सर, हमारा ध्यान अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों पर तो जाता है, तो इन खेलों से कैसे अलग होता है एथलेटिक्स का खेल, जो जिसमें आपने अभी इतने सारे हमें नाम बताए, तो कैसे इनसे हम अलग समझें इस चीज को?
2: मैम, एथलेटिक्स जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित है।
1: जी जी,
2: जबकि अन्य खेल टीम वर्क या आमने सामने मुकाबले पर। संक्षेप में, एथलेटिक मानव शरीर का मूल शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण है, जबकि अन्य खेल रणनीतिक खेल है।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छे सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को बताया है कि जो अन्य खेल है वो सामूहिक खेल है, समूह में खेले जाते हैं, और एथलेटिक्स जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन का एक तरीका है। सर, अलग अलग खेल है जैसे कुश्ती, स्प्रिंग, हॉकी, क्रिकेट, इन्हें आपस में आप कैसे समझाएंगे कि किस तरह से ये खेल अलग अलग हैं और इनका क्या महत्व है?
2: मैम, ये सभी खेल शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, नियम, आवश्यक शारीरिक क्षमताएं एकदम अलग होती हैं। कुश्ती एक कॉम्बैट या द्वंद खेल है, जिसमें एक दूसरे के शारीरिक संपर्क बनते हैं और एक दूसरे को पटकना चाहते हैं।
1: जी जी,
2: स्प्रिंट यह ट्रैक एंड फील्ड का एक खेल है, जिसमें इंडिविजुअल खुद ज्यादा डिस्टेंस को कम समय में पूरा करने की कोशिश करता है। हॉकी यह आउटडोर या इंडोर खेल है, जो स्टिक और गेंद से खेला जाता है।
1: जी जी,
2: क्रिकेट यह बल्ले और गेंद से खेला जाता है, 11 खिलाड़ियों की दो टीमें पिच पर खेलती हैं। यह रणनीतिक खेल है, जो हॉकी की तुलना में अधिक समय तक चलता है। संक्षेप में कहें तो कुश्ती शरीर की ताकत, स्प्रिंट गति, हॉकी टीम वर्क और गति, क्रिकेट रणनीति और तकनीक का मिश्रण है, जो समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।
1: सर, हम अपने बचपन में जाएं और पीछे मुड़कर अतीत के झरोखों में देखें तो स्कूलों में अक्सर शनिवार के दिन गेम्स पीरियड होता था और उसमें बच्चों को अलग अलग तरह की खेल गतिविधियों से जोड़ा जाता था, जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है, तो ये भविष्य में बच्चे के लिए कैसे काम आ सकते हैं?
2: मैम, ये बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क, अनुशासन जैसे कौशल विकसित करती है जो भविष्य में स्वास्थ्य जीवन शैली, तनाव प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
1: जी।
2: ये गतिविधियों बच्चों को जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।
1: अच्छा, कौन कौन से खेलों को हम एथलेटिक्स में रखेंगे?
2: एथलेटिक्स में मुख्य रूप से दौड़, कूद, फेंकना, पैदल चाल से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं जिन्हें ट्रैक एंड फील्ड के रूप में भी जाना जाता है। स्प्रिंट, इसमें 100, 200, 400 हर्डल्स आते हैं। मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस 5000 मीटर, 10000 मीटर, मैराथन, रिले 4x200, 4x400 और आजकल एक नया इवेंट जुड़ गया मिक्स रिले 4x400, 4x400। फील्ड इवेंट में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वोल्ट। कंबाइंड इवेंट में महिलाओं के लिए हेप्टाथलन और पुरुषों के लिए डेकाथलन होते हैं। थ्रोज इवेंट में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो, इस तरह से इतने इवेंट इसमें कराए जाते हैं।
1: सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत के जो एथलीट्स हैं उनकी क्या भूमिका है इन खेलों में?
2: मैम, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की भूमिका तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अभी आई है।
1: जी जी।
2: जिसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने किया है। 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2023 में विश्व एथलेटिक्स में सफलता के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
1: जी जी।
2: जबकि एशियन गेम्स में भारत का हमेशा से दबदबा रहा है।
1: ये तो बहुत गौरव की बात है हम सभी के लिए। अच्छा सर, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की क्या भूमिका है अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या पूरे भारत में किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं?
2: मध्य प्रदेश अभी देश के टॉप राज्यों में से एक है।
1: जी।
2: और हम आपके माध्यम से अपने सरकार को, अपने संचालनालय डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और जो हमारी टीम है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बनाई है कि हमारे पास आज हमारे जो बच्चे हैं, पहले नेशनल मेडल नहीं आता था।
1: जी जी।
2: अब हम बच्चों में सोच इतना बदला है कि जो अब 5 नेशनल रिकॉर्ड हमारे नाम से है।
1: क्या बात है।
2: हमारे एकेडमी के बच्चों के नाम से 5 नेशनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश अभी स्टैंड कर रहा है।
1: जी जी।
2: पिछले इसी मंथ में पोल वॉल्ट में कुलदीप कुमार ने अपने ही एकेडमी के बच्चे का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। अंडर 16 वायु वर्ग में महिलाओं में बुशरा खान ने 2000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड है।
1: जी।
2: अंडर 20 गर्ल्स में 3000 में स्टिपल चेज में एकता डे नेशनल रिकॉर्ड है। अभी 5000 मीटर रेस वॉक में अभी इसी मंथ में रंजना यादव ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया।
1: जी।
2: इस तरह से हमारे कई नेशनल रिकॉर्ड अपने मध्य प्रदेश के नाम से हैं। और अभी कई खेलों में अभी हॉकी में अभी उपविजेता बनी है।
1: जी।
2: विवेक सागर प्रसाद हॉकी में ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करते मेडल जीत कर आए थे।
1: जी जी।
2: तो अभी हमारा खेलों में बहुत टॉप में चल रहा है।
1: जी जी।
2: और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि हम भारत के शीर्ष राज्यों में से सबसे आगे रहेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल। और हम भी ऐसी कामना करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं हमारे खिलाड़ियों को कि वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं, अपना तिरंगे का मान बढ़ाएं। अच्छा सर, अब बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा है वो एथलीट बनना चाहता है तो उसे किस उम्र से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि वो इन खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है?
2: एथलीट बनने के लिए बच्चों को 7-8 वर्ष की आयु से विभिन्न खेल के माध्यम से बेसिक मोटर क्वालिटी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें उसी टाइम में शुरू करना चाहिए।
1: जी जी।
2: लेकिन उस पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है।
1: जी जी।
2: थोड़ा सा भी अगर हम उनको ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे तो उनको ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा। 8 से 12 वर्ष को मोटर लर्निंग का स्वर्ण युग माना जाता है जहाँ कौशल विकास तेजी से होता है।
1: जी।
2: प्रोफेशनल या विशिष्ट खेल प्रशिक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु उपयुक्त है, लेकिन इसमें मोटर क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और विशेषकर हमें खाने पीने में, ट्रेनिंग में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा भी गलती इनके फ्यूचर को रोक सकता है।
1: जी जी।
2: इन खेलों गतिविधियों में स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब, जिले, स्कूल की टीम जैसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि वे जीतने के बजाय खेल का आनंद लें और शारीरिक शिक्षा के कक्षाओं में भाग लेकर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सहभागिता जरूरी होती है। जीत हार तो बाद की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज का हिस्सा बने।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बहुत सारी चीजें भी आप अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं।
2: जी हाँ
1: बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरे अन्य खेलों में बच्चों को करियर फिर भी समझ में आता है, जैसे हम जनरल बात करें क्रिकेट में समझ में आता है कि भाई लोग विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, लेकिन एक एथलीट का करियर कैसा हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताइए।
2: मैम, एक एथलीट का करियर शारीरिक क्षमता पर आधारित होता है जो आमतौर पर 30-40 वर्ष की आयु तक चलता है। करियर के बाद भी वो पूर्व खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, रेफरी, खेल पत्रकार, स्पोर्ट्स मैनेजर, पोषण विशेषज्ञ या कमेंटेटर के रूप में सुनहरे भविष्य को की संभावना तलाश कर सकते हैं।
1: जी जी।
2: शिक्षा के साथ साथ खेल को जारी रखना सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा सर, भारत में एथलेटिक्स का लेवल पिछले 5-10 सालों में कैसा बदला है, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से नीरज चोपड़ा जी का नाम हमने सुना और उनके खेल के बारे में जाना और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो नीरज चोपड़ा हाईलाइट हुए।
2: इसके बाद नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद ना हमारे खिलाड़ियों में सोच का स्तर बदल गया।
1: जी जी बिल्कुल।
2: पहले जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे तो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये सोच था। नीरज के गोल्ड जीतने के बाद अब हमारे खिलाड़ी जीतने के लिए सोचते हैं कि हम कौन सा मेडल जीतेंगे। और नीरज के बाद देखिए गुलबीर सिंह, पारुल चौधरी, कार्तिक, अविनाश शावले, कई ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत के
1: जी जी
2: नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया है, और अभी आने वाले एशियन गेम्स में हम लगता है कि टॉप 2 में रहेंगे।
1: जी जी, क्या बात है। तो पिछले 5-10 सालों में कैसा बदलाव आप महसूस करते हैं?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है।
1: जी जी।
2: और ये आगे जाएंगे मैम, आगे जाएंगे।
1: सर, स्कूली लेवल पर बच्चों को एथलेटिक्स में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
2: स्कूली स्तर पर बच्चों को एथलेटिक्स, दौड़ कूद फेंक में लाने के लिए खेल को मजेदार, समावेशी और बुनियादी बनाना सबसे जरूरी है। इसके लिए अभी हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किड एथलेटिक्स का एक स्कीम चालू किया है
1: जी।
2: उसके माध्यम से उसके कार्यक्रम में उपयोग करें जो 4-14 वर्ष के बच्चों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं उनके
1: जी।
2: बच्चों के लिए ये टीम आधारित गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा को मनोरंजक बना के उनको सिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और बच्चों के साथ तो एक अलग ही लेवल पर उनको सिखाना होता है क्योंकि हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो काफी कठिन लगती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक मनोरंजक स्तर पर बच्चों को हमें जोड़ना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। अच्छा सर, खिलाड़ी के लिए खान पान बेहद ज़रूरी होता है और एक अच्छा आहार बहुत ज़रूरी होता है, तो डाइट की बात अगर हम करें तो मेंटल हेल्थ एक एथलीट के प्रदर्शन में कितना रोल निभाती है और शरीर को कितना फिट होना चाहिए?
2: डाइट और पोषण का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। एक एथलीट प्रदर्शन में यह 80-90% तक भूमिका निभा सकता है।
1: जी जी।
2: उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक अस्थिरता का होना बहुत जरूरी है जो संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है।
1: जी।
2: शरीर के फिटनेस खेल के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये एक एथलीट को लीन होना चाहिए, मतलब कम चर्बी अधिक मांसपेशी वाला होना चाहिए।
1: जी जी।
2: एक एथलीट के लिए बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत एक दूसरे से जुड़ा है। सही डाइट न केवल मांसपेशियों को ऊर्जा देती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है जिससे मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में उसको मदद मिलती है।
1: सर, खान पान का बड़ा योगदान होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या भोजन शामिल होना ही चाहिए और एक संपूर्ण संतुलित भोजन क्या होना चाहिए?
2: देखिए मैम, खिलाड़ी को जब मेहनत करते हैं तो हमें हमारे डाइट बैलेंस होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: तो हम जानना चाहेंगे बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट में जितने कंटेंट होते हैं वो कंटेंट होना चाहिए। तो अगला प्रश्न आएगा कंटेंट क्या क्या होने चाहिए।
1: जी जी।
2: तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं।
1: जी जी।
2: अब अगला प्रश्न श्रोता जानना चाहेंगे कि कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 1.75 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए।
1: जी जी।
2: फैट 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 6-8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। अब श्रोता अपना खाने में खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा खाना सही है अथवा इसमें कमी है।
1: जी जी।
2: दूसरा, अगर हम इसको नेचुरोपैथी के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: जी जी।
2: जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों को मिलकर बना है।
1: जी।
2: पृथ्वी तत्व, जल तत्व,
1: जी,
2: अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व।
1: जी जी।
2: इसके डाइट भी सब अलग अलग हैं।
1: जी।
2: जैसे पृथ्वी तत्व में अनाज दालें, जल तत्व में सब्जी, अग्नि तत्व में फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फल फूल आगे।
1: जी जी।
2: और वायु तत्व में जितने पत्तियां आती है ना वो आते हैं।
1: जी।
2: और आकाश तत्व है उपवास, खाली स्थान।
1: अच्छा।
2: तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें जनरली जो नेचुरोपैथी में सिखाया गया है कि इंसान को 24 घंटे के अंदर में 14 घंटा उपवास करना चाहिए।
1: जी जी।
2: तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। ये हमें स्पोर्ट्समैन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन जनरल व्यक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। और जब पहला ब्रेकफास्ट करते हैं उसका है फास्ट को ब्रेक करना।
1: जी जी।
2: तो पहला हम पत्तियों का जूस से चालू करें तो ये बहुत शरीर के लिए लाभदायक होगा। उसके बाद आप जल तत्व ले लें, सब्जियों में कच्चा आहार जैसे हम सलाद ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, इसको काट के थोड़ा ले लें, थोड़ा देर के बाद फल लें। ये लेने से नेगेटिव चीज हमारे शरीर में नहीं आएंगे और डिटॉक्स होंगे, जितने भी विजातीय तत्व हैं वो बॉडी से निकलेंगे।
1: जी जी।
2: और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब हम एथलीट को देखते हैं तो मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए मैं बोलता हूँ, उसमें बीटरूट जूस है
1: जी,
2: उसमें नाइट्रेट है, नाइट्रेट लोडिंग है
1: जी,
2: वो हमारे रेड ब्लड सेल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है।
1: जी जी।
2: उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, तो जो सांस लेने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली जब हम यहाँ थक रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके थकेंगे, तो ये हमारा प्रदर्शन में सुधार होगा। इस प्रकार हम अगर ऐसे करें तो हमें प्रदर्शन में और अच्छा सुधार कर सकते हैं।
1: सर, किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए बच्चे की खुद की तैयारी कितनी जरूरी होती है, जैसे एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है या डेली रूटीन, किस तरह से उसे अपनी तैयारी रखना चाहिए या बदलाव करने चाहिए, आप किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं?
2: किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए खुद की तैयारी, शारीरिक एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और मानसिक दोनों बेहद जरूरी है, जिसे 100% महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
1: जी।
2: यह केवल खेलने के बारे में ही नहीं बल्कि प्रदर्शन, सुरक्षा और दीर्घकालिक विकास के बारे में भी है। तैयारी सिर्फ खेल के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज की प्रतिभा है। अच्छी तैयारी आपको एक साधारण खिलाड़ी से उत्कृष्ट खिलाड़ी बना सकती है और लंबे समय तक खेलों में बनाए रखती है।
1: सर, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं बच्चों को?
2: प्लान होता है उसका कि हम इसको किस स्तर का, किस कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। हमारे साथ पूरा टीम है, उसका जब प्लान कर लेते हैं तो इसका कितना रिकवरी चाहिए, हमारे रिकवरी एक्सपर्ट हैं, इस रिकवरी के साथ इसको कैसा डाइट चाहिए, हमारे साथ डाइटिशियन है, वो पूरा प्लान करती हैं, कहाँ पे इसको क्या जरूरत है, प्लान के हिसाब से करते हैं और हमारे लड़के करीब करीब अपने टारगेट को अचीव करते हैं।
1: जी जी। अच्छा सर, जैसे उम्र की बात करें तो किस उम्र से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी में?
2: अकेडमी में मैम 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हम लोग, और जो बच्चे अच्छा करते हैं
1: जी जी।
2: उनको हम लोग डायरेक्ट भी एकेडमी में लेते हैं। बहुत अच्छे व्यवस्था है हमारे यहाँ और पूरा पारदर्शिता है कि किसी कोई नहीं कह सकता है, किसी और गेम में हो सकता है लेकिन एथलेटिक्स में इट्स नॉट पॉसिबल, जो अच्छा है वो अच्छा है।
1: जी जी। यानी उम्र भी महत्व रखती है।
2: बिल्कुल।
1: आपकी यहाँ पर जब बच्चा जुड़ता है खेलों से तो सर, युवाओं को फिटनेस और खेल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, याद रखिए, सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और लगन से हासिल होती है। असफलताएं से घबराएं नहीं बल्कि उससे प्रेरित होकर और दुगने उत्साह से आगे बढ़ें। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। याद रखिए, अवसर नहीं होते, आप उन्हें बनाते हैं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, अवसर होते नहीं, आप उन्हें बनाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री एस के प्रसाद। आप मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को, और विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवा वर्ग को, इतनी अच्छी जानकारी दी आज के दिन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे भोपाल शहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे, खेलों को पूरे विश्व में बहुत आगे लेकर जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। इसी के साथ अब कार्यक्रम के समापन की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे। इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष

0: अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया। ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे, वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था, क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई, 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी, जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंशी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा, जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी, अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था, बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: वो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

आपने अपने रिड्यूसर पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर रविवार को स्टेट म्यूजियम में चिरो नूतून शातो कंठे रविगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिरो नूतून यानी सदैव युवा, ये वही भावना है जिसे बंगाली समाज रविंद्र संगीत में आज भी जीवंत मानता है। कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर और रीवा से आए 100 से अधिक कलाकारों ने एक साथ मंच पर रविंद्र संगीत की सामूहिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 17 चयनित गीतों को प्रस्तुत किया गया। है नूतन देख दिक नव आनंदे जागो जैसे गीतों ने सभागार को भावनात्मक ऊर्जा से भर दिया। इन गीतों में प्रकृति, नवचेतना, मानवता और जीवन दर्शन की झलक देखने को मिली। इस प्रस्तुति के पीछे कलाकारों की 8 महीने की सतत साधना रही। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगातार रिहर्सल का सुर, लय और उच्चारण की बारीकियों पर विशेष मेहनत की गई।

भारत भवन में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की ओर से चल रहे राष्ट्रीय सविमर्श प्रणाम उद्दंत मार्तंड का रविवार को आखिरी दिन रहा। कार्यक्रम में स्वाभिमानी भारत विषय पर प्रख्यात फिल्म निर्माता व अभिनेता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा, जो सोचता है वह मनुष्य है, जो देता है वह देवता है। उपनिषद की कथा द सुनाकर बताया, मनुष्य दान देता है, देवता अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। दानवों से कहा गया है कि प्रणामी पर दया करो, दूसरों का धन सुख चैन छीनो मत, मगर हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे मनुष्य को मांगने वाला बनाती हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हम सभी को बाण भट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र पढ़ना चाहिए, जिसमें लोक सेवक का सटीक वर्णन किया गया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा, रामायण में श्री राम ने भरत से 88 प्रश्न किए हैं, जो सुशासन के प्रश्न हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी है कि भरत, तुम्हारे राज्य में रिश्वत लेकर अपराधी को छोड़ तो नहीं दिया जाता? क्या आपके राज्य में किसान केवल वर्षा के पानी पर निर्भर तो नहीं? महाभारत में भी इस प्रकार के प्रश्न ऋषियों से पूछे गए हैं। देवऋषि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से ऐसे कई प्रश्न पूछे जो सुशासन से जुड़े हैं।

वहीं जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना गतिविधि में रविवार को लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित इस आयोजन में गोंड जनजातीय गेड़ी नृत्य और लांगुरिया नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में संत कुमार यहके एवं साथी सिवनी द्वारा प्रस्तुत गोंड जनजातीय गेड़ी नृत्य ने दर्शकों को रामचरित रोमांचित कर दिया। कलाकारों ने लकड़ी की ऊंची गेड़ी पर संतुलन बनाते हुए तेज गति और तालबद्ध अंदाज में नृत्य प्रस्तुत किया।

शहर के संगीत प्रेमियों के लिए शाम यादगार बन गई जब ख्याल कला प्रेमियों का में आयोजित सुकून म्यूजिकल इवनिंग में मधुर स्वरों की महफिल सजी। गायिका निधि सारुलकर पारखी और श्रेया धानोरकर अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से श्रोताओं को संगीत के खूबसूरत सफर पर ले गईं। शुरुआत गीत नाम गुम जाएगा से हुई, इसके बाद नियते शोक, तू है तो दिल धड़कता है और हम तेरे प्यार में जैसे गीतों ने माहौल को भावपूर्ण बना दिया।

आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा मैनेट भोपाल एवं आईसर भोपाल के सहयोग से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विज्ञान और तकनीकी आधारित नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कॉर्नर स्थापित किया जाएगा।

कला और रचनात्मक शिक्षण की नई संभावनाओं को केंद्र में रखकर आयोजित आवासीय कला कार्यशाला मूविंग फॉर्म्स का शुभारंभ 11 मई को सुबह अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में होगा। आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आए करीब 40 कला शिक्षक और कलाकार सहभागी बनेंगे। गांधी भवन न्यास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले ग्रीष्मकालीन कला शिविर का शुभारंभ इस वर्ष 11 मई से किया जाएगा। शिविर प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक गांधी भवन परिसर में आयोजित होगा। शिविर में योग एवं ध्यान, पारंपरिक खेल, चित्रकला, क्राफ्ट, नृत्य, अभिनय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: वीरजी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी ईआईसी को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। ईआईसी अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और पर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जाति ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।

0: बैत अल फकी का कॉफी एक्सचेंज 18वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व के कॉफी व्यापार के धड़कते केंद्र बैत अल फकी के केसरिया बाजार की उमस भरी गर्मी की कल्पना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से बहुत पहले यह अंतर्देशीय बाजार एक परिष्कृत स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता था, जहां कीमतें अफवाहों और वैश्विक खुफिया जानकारियों द्वारा तय होती थीं। यहां के व्यापारी सट्टेबाजी के उस्ताद थे, जो मोखा बंदरगाह पर एक भी यूरोपीय जहाज के दिखने की खबर मिलते ही अपने विशाल स्टॉक की कीमतों को ऊपर या नीचे कर देते थे। यह उच्च जोखिम वाला खेल सईद महिदी हल्लाबी जैसे शक्तिशाली एकाधिकारवादियों के नियंत्रण में था, जिनके अकेले के फैसले पूरे क्षेत्र के बाजार को हिला सकते थे। लेकिन इन व्यापारी राजकुमारों को भी स्थानीय किसानों की एक अजीब चाल का सामना करना पड़ता था। यदि दिन की बोलियां उनकी पसंद के अनुसार नहीं होती थीं, तो पहाड़ी किसान अपनी फसल रोककर गायब हो जाते थे और तब तक वापस नहीं आते थे जब तक कि बाजार की कीमतें उनकी मांगों के अनुरूप न बढ़ जाएं। यह वास्तव में एक वैश्विक केंद्र था। काहिरा या जेद्दा के मध्यवर्ती बाजारों में कीमतों में होने वाला बदलाव रेगिस्तान के रास्ते हरास और जबल रायमा की पहाड़ियों तक तुरंत पहुंच जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी यूरोपीय दिग्गज कंपनियों के आने के बावजूद, जिन्होंने अपनी चांदी की दम पर बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की, स्थानीय सट्टेबाजों ने सूचना और धैर्य के माध्यम से अपनी बढ़त बनाए रखी। उन्होंने साबित कर दिया कि पूर्व आधुनिक वाणिज्य की दुनिया में सबसे तेज हथियार हमेशा सिक्का नहीं होता था, बल्कि समाचारों की गति और अगले कारवां पर दाव लगाने की इच्छा शक्ति होती थी।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
4: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसी भी देश की संस्कृति उसके निवासियों के रक्त में बहने वाली वो जीवनधारा होती है जिससे विश्व मानचित्र में उस देश की पहचान होती है। प्राचीन काल से चले आ रहे जीवन मूल्य, संस्कार, परंपराएं उस देश के कण कण में समाहित होकर उसका मिजाज तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, उस पर लंबे समय तक राज करना हो, तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति पर चोट करनी चाहिए। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत आए और उसे गुलाम बनाना चाहा, तो भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। भारत पर शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाए। भारत की आजादी की लड़ाई में एक युद्ध अगर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, तो दूसरा युद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी समानांतर चलता रहा। इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा काशी, ज्ञान मंडल वाराणसी जैसे केंद्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के जाने अनजाने पक्षों और ज्ञान की धारा को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के महान उद्देश्य के साथ ही धर्मपाल जी आजीवन शोध करते रहे। शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल की मेधा पुष्पित पल्लवित हुई। भारत की पराधीनता को उन्होंने जितना अधिक महसूस किया उतना ही अधिक भारतीय संस्कृति की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी।

डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। माता पिता लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया पाणिनिकालीन भारतवर्ष, जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद यहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वो जानते थे कि बहुत सा प्राचीन भारतीय साहित्य और लिखित साक्ष्य आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जो कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उनका पढ़ा जाना आवश्यक है, लोगों तक उनकी पहुंच बनाना आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर अग्रवाल ने इन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनके सही अर्थों की विवेचना करते हुए आधुनिक हिंदी में लिखकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। इस तरह अपने ज्ञान और चिंतन से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बनाया और अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की, जिन्हें आज हिंदी साहित्य धरोहर की तरह संजोता है। उनके निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति आदि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु पर पौराणिक निबंध भी लिखे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वाणभट्ट के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत की संजीवनी व्याख्या भी की। इस तरह अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने समझाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी उद्देश्य से वो पूरे जीवन भारत माता के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करते रहे।

अपनी अनमोल कृतियों की बदौलत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य जगत में एक मनीषी, एक प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित हुए। ग्रंथ आधारित विवेचनात्मक अध्ययन की श्रृंखला में उन्होंने मेघदूत एक अध्ययन, कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता, भारत सावित्री, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की। इतिहास दर्शन और भारतीय धर्म मीमांसा जैसे निबंध संग्रहों के साथ ही उन्होंने अनेक किताबों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद एक सरसता है, लेकिन विषय के अनुरूप उनकी शैली गंभीर है। उनके लेखन में विचार, भाव, उद्धरण और व्याख्या का समावेश है। यही कारण है कि उनकी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली की स्थापना में भी डॉक्टर अग्रवाल का प्रमुख योगदान है। साहित्य साधना के साथ साथ उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वो मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय पुरातत्व विभाग तथा राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अग्रवाल जिस भी रूप में सक्रिय रहे, भारतीय संस्कृति और भारत गौरव उनके चिंतन में सदा प्राथमिकता में रहा। यही कारण है कि उनके लेखन में भारत की सनातन संस्कृति का गौरवशाली रूप व्यक्त हुआ है। वो जीवन पर्यंत लिखते रहे तथा कई ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन भी किया। 27 जुलाई सन 1967 को इस साहित्य पुरोधा ने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के एक अन्वेषी साहित्यकार के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। एक ऐसा साहित्य साधक जिसने सदा भारतीय संस्कृति की जय की कामना की, जिसने सदा भारत के विजय सूर्य के उदय की कामना की। नमन ऐसे महान देशभक्त और साहित्य मनीषी को।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की।

0: भारत में कहानियों का शायद ही कोई ऐसा पाठक हो जिसने मंटो का नाम न सुना हो। उर्दू के तो वो सबसे बड़े अफसाना निगार हैं ही, विश्व साहित्य में भी उन्हें चेखव के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कहानीकार माना जाता है। उनका जन्म 11 मई सन 1912 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव संबराला में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई, लेकिन कुछ कारणों से पढ़ाई इंटर के आगे न हो सकी। उसके बाद रोजी रोटी के लिए वे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने सपनों की नगरी बंबई का रुख किया। यहां कई फिल्मों की कहानियां लिखी उन्होंने। देश के बंटवारे के बाद मंटो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। बस यहीं से मानो उनके दुर्दिनों की शुरुआत हो गई। आर्थिक परेशानियों ने उन्हें इस कदर घेरा कि बेतहाशा शराब पीना शुरू किया उन्होंने। पैसे की कमी, घरेलू समस्याएं और जिगर को गलाती शराब, मंटो ऐसे गिरे कि फिर उठ न सके। वो मनहूस तारीख थी 18 जनवरी सन 1955, जब मात्र 43 साल की उम्र में दुनिया से ये महान अफसाना निगार रुखसत हो गया। ये इत्तेफाक ही है कि जब लाहौर में उनका जनाजा उठ रहा था, तब उनकी लिखी हुई फिल्म मिर्जा गालिब दिल्ली में हाउसफुल जा रही थी। श्रोताओं, मंटो ने समाज की गंदगी और घिनौनेपन को बड़े करीब से अनुभव किया था। इनका जहर इस प्रकार चखा था कि वो हलक से उतरकर उनकी आत्मा में बैठ गई थी। उनकी छाप उनकी कहानियों में हमेशा ही देखने को मिलती है। शायद यही कारण था कि उनकी कहानियों पर अश्लीलता के आरोप भी खूब लगे और उन पर मुकदमे भी चले। उनकी जिन कहानियों पर अदालत में मुकदमे चले, उनके नाम हैं काली शलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त और ऊपर नीचे और दरमियान। अदालतों के चक्कर लगाने में उनका भुरकस निकल गया, लेकिन उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। श्रोताओं, रोटी की चिंता सभी को सताती है, कलाकार को भी। कलाकार को ही क्यों, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बादशाह और यहां तक कि संत महात्मा और सन्यासियों को भी रोटी तो चाहिए। इसके बिना न तो ज्ञान टिकेगा और न ही ध्यान लगेगा। अपने प्रसिद्ध निबंध गेहूं बनाम गुलाब में राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि केवल गुलाब से ही काम नहीं चलने वाला, गेहूं भी चाहिए। मंटो जी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं, बिना रोटी के वे लिख नहीं सकते। मंटो ने कहा था,
1: मैं क्यों लिखता हूं, ये एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूं, लेकिन इस नजरे से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर लिखने में मुझे कोई नकदी नहीं खर्च करनी पड़ती। गहराई में जाने पर तो पता चलता है कि रुपए के बलबूते पर ही मैं लिखता हूं। अगर मुझे खाना पीना न मिले तो जाहिर है कि मेरे अंग इस हालत में न रहेंगे कि कलम पकड़ सके। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रतबा देते हैं, इसके झंडे सातवें आसमान में मिला देते हैं, मगर क्या यह हकीकत नहीं, हर श्रेष्ठ और महान चीज एक सूखी रोटी की मोहताज है।

0: मंटो चाहते हैं कि औरतें मर्दों के जुल्म सिर झुकाकर स्वीकार न करें। आदर्श पत्नियों का तमगा उन्हें स्वीकार्य नहीं। वे तो कहते हैं कि औरतों को अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहिए, सारे हथकंडे अपनाने चाहिए। सुनिए उनके ही शब्दों में।
1: मेरे पड़ोस में कोई औरत अगर हर रोज अपने खाविंद से मार खाती है और फिर उसके जूते साफ करती है, तो मेरे दिल में उसके लिए जरा भर भी हमदर्दी नहीं पैदा होती। लेकिन मेरे पड़ोस में कोई औरत अपने खाविन से लड़कर और खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चली जाती है और मैं खाविंद को 2 घंटे सख्त परेशानी की हालत में देखता हूँ, तो मुझे दोनों से एक अजीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है।
0: श्रोताओं, जैसे कि हमने चर्चा की, मंटो का वास्ता सामाजिक सच्चाइयों के सियाह रूप से काफी पड़ा है। उन्होंने उन पात्रों को बेहद करीब से देखा है जो सभ्य समाज की नजरों में निंदनीय हैं, घटिया हैं, तिरस्कृत हैं। उनके दुख दर्द को, उनकी चुनौतियों को, उनकी इच्छाओं और सपनों को और उनकी चिंताओं को, आशंकाओं को उन्होंने बखूबी महसूस किया है। शायद यही कारण है कि ऐसे पात्रों के प्रति उनके मन में एक स्वाभाविक सी सहानुभूति है और उनका चित्रण करने में ही वे अधिक तल्लीनता महसूस करते हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए।
1: चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसाने की हीरोइन हो नहीं सकती। नहीं, मेरी हीरोइन कोई वैश्या हो सकती है जो सोते में ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है।
0: श्रोताओं, तथाकथित नैतिकतावादियों के लिए ये विचार भले ही नाक भौं सिकोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि समाज सबको मिला के बनता है? हमें कोई अधिकार नहीं कि किसी को निंदनीय और घृणित कहकर गाली दें और समाज से उसे बहिष्कृत कर दें। मौर्य और गुप्त काल में ही हमारे समाज में उस वर्ग को मान्यता और सम्मान मिलता रहा है जिसकी वकालत मंटो करते हैं। विश्वास न हो तो चाणक्य का अर्थशास्त्र और शूद्रक का मृच्छकटिकम पढ़ लीजिए। श्रोताओं, मंटो का जीवन परिचय देते वक्त हमने बात की थी कि किस तरह पाकिस्तान जाना उनके लिए मुश्किलों की एक अंतहीन शुरुआत थी। उर्दू साहित्य में इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने के बावजूद वे उस देश में एक अच्छी जिंदगी न पा सके जिस देश को अपना समझकर वे अपनी जन्मभूमि छोड़ गए थे। वहां उन पर क्या गुजरी, ये उन्हीं के मुख से सुनते हैं।
1: मैं जानता हूं कि मेरी शख्सियत बड़ी है और उर्दू अदब में मेरा नाम है। अगर ये खुशफहमी न होती तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए, पर मेरे लिए ये एक तलख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपनी सही जगह ढूंढ नहीं पाया हूं। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है और मैं कभी पागलखाने तो कभी अस्पताल में रहता हूं।

0: सादत हसन मंटो ने अपार साहित्य लिखा है। उनकी पहली कहानी का नाम है तमाशा। इसका हीरो 6-7 साल का एक बच्चा है जिसने जलियांवाला बाग कांड को अपनी आंखों से देखा है। ये बच्चा कोई और नहीं, स्वयं मंटो हैं। आप हिसाब लगाकर देख लीजिए, मंटो का जन्म कब हुआ था? 11 मई सन 1912 को। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 को। यानी मंटो की उम्र उस समय 6 साल को पार करके 7वें साल में चल रही थी। आइए सुनते हैं मंटो की पहली कहानी तमाशा, जिसके रेडियो रूपांतर के लिए हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। लेकिन ऐसा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहानी की आत्मा ज्यों की त्यों रहे। दो तीन रोज से हवाई जहाज सियाह उबाकों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे कि वे किसी शिकार की तलाश में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब भयावह समा पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, आज किसी नामालूम खौफ की वजह से बिल्कुल सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। खालिद घर की खामोश और स्तब्ध फिजा में सहमा हुआ सा अपने वालिद से बातें कर रहा था।
1: अब्बा, अब मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते?
2: अरे बेटा, स्कूल जाके क्या करेगा, आज स्कूल की छुट्टी है।
1: पर मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं।
2: अरे वो बताना भूल गए होंगे बेटा, तू जाके खेल।
1: नहीं अब्बा, आज तो मैं आपसे कहानी सुनूंगा।
0: ये बातें हो ही रही थी कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सर पर से गुजर गए। खालिद बेतहाशा डर गया। वो हैरान था कि ये जहाज धूप में सारा दिन चक्कर क्यों काटते रहते हैं। अपने अब्बा से वो बोला,
1: अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त डर लगता है। आप इनके चलाने वालों से कह दे कि हमारे घर पे से ये ना गुजरा करे।
2: पागल हो गया क्या खालिद तू?
1: अब्बा, आप नहीं जानते, किसी दिन ये जहाज हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, अगर इन्होंने ऐसा किया ना, तो मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर लाके दी थी।
0: खालिद के अब्बा ने अपने लड़के की गैर मामूली हिम्मत पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल है, मैं उससे पूछूंगा कि वो घर पर ऐसी बातें क्यों करता है। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाने का अभ्यास करने लगा, ताकि जब हवाई जहाज वाले गोले फेंकें तो उसका निशाना चूक न जाए। इस दौरान जबकि एक नन्हा बच्चा अपनी बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत दे रहा था कि वो आगे से घर में इस किस्म की बात ना करे कि जिससे खालिद को दहशत हो। मामा और बीवी को इस किस्म की ताकीद करके अभी वो बड़े दरवाजे के बाहर जा ही रहा था कि खालिद एक भयानक खबर लाया। शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के वक्त एक आम जलसा करने वाले हैं। खालिद का अब्बा ये खबर सुनकर बहुत खौफजदा हो गया। खौफनाक हादसों के आसार अब उसे साफ नजर आने लगे। हादसा कैसा होगा, ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन पूरा शहर किसी नामालूम खौफ से लिपटा हुआ था। बाहर जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े बदल भी न पाया था कि जहाजों का शोर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक सी आवाज में दर्द की शिद्दत से कराह रहे हैं। खालिद जहाजों की शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ाया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि जब वे गोला फेंकें तो अपनी हवाई बंदूक से वो उन्हें नीचे गिरा सके। उस वक्त इस 6 साला बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय के ऐसे भाव थे जो वीर सिपाही को भी शर्मिंदा कर रहे थे। ऐसा लगता था जो चीज इसे इतने अरसे से खौफजदा कर रही थी उसे आज वो मिटा ही डालेगा।

0: अब्बा, इसमें ये तो नहीं लिखा है कि वे हमारे घर पर गोले फेंकेंगे।
1: खालिद बेटा, इस वक्त तुम जाओ, अपनी बंदूक से खेलो, जाओ।
0: मगर अब्बा, इसमें लिखा क्या है?
1: बेटा, इसमें लिखा है आज शाम को एक तमाशा होगा।
0: फिर तो हम चलेंगे ना तमाशे में।
1: क्या कहा?
0: इस तमाशे में आप मुझे नहीं ले चलेंगे?
1: अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा। अच्छा, ले चलेंगे, तुम जा करके अपनी बंदूक से खेलो।
0: कहाँ खेलूं? बाजार आप जाने नहीं देते, मामा भी नहीं खेलते मेरे साथ, मेरा दोस्त भी आजकल नहीं आता, हम मैं किससे खेलूं? मगर शाम को तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना।

0: जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। देखता क्या है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि दुकानें बंद क्यों रहती हैं। उसने अपने नन्हे से दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। बहुत सोच विचार के बाद उसे लगा कि लोगों ने तमाशा देखने की खातिर दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसे ख्याल आया कि ये तो निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा, जिसकी खातिर तमाम बाजार बंद हैं। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चले। वक्त गुजरता गया, वो खूनी घड़ी करीब आती गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ सहन में चुप से बैठे हुए एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़तड़ की आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जुबान से मुश्किल से बस इतना ही निकल सका, गोली। खालिद की माँ डर की इंतहा से एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे गोली उसकी छाती में उतर रही है।
1: अब्बा, अब्बा चलो ना, तमाशा शुरू हो गया है।
2: कौन सा तमाशा बेटा?
1: अरे वही अब्बा, जिसका इश्तिहार सुबह से ही बढ़ रहा है। अब तो खेल भी शुरू हो गया होगा, पटाखों की आवाज तभी तो आ रही है।
2: बेटा, अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। अब जाओ, मामा के साथ खेलो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो।
0: ये सुनकर खालिद बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गया, मगर वहां मामा को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर बाजार की ओर देखने लगा। बाजार आमदोरफ्त बंद हो जाने की वजह से साए साए कर रहा था। दूर फासलों से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ क्षणों बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाजें भी शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते हुए सुनकर बहुत हैरान हुआ। तभी चौक में एक लड़का दिखाई दिया जो चीखते चिल्लाते भागा आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा जख्म था जिससे खून का फव्वारा छूट रहा था। ये दृश्य देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ, भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा,
1: अब्बा, अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसके पैर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। अब्बा,
2: क्या कहा?
0: खालिद का बाप ये सुनते ही खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान औंधे मुंह पड़ा हुआ है। बादशाह के खौफ के कारण किसी ने इतनी हिम्मत भी न की कि इस लड़के को सड़क से उठाकर सामने वाली दुकान के पट्टे पर लेटा दे।
1: अब्बा, अब्बा, इस लड़के को किसी ने मारा है?
3: हाँ बेटा, किसी ने तो मारा है इसे।
1: कितना बड़ा जख्म है इसका, कितनी तकलीफ हुई होगी इसे। मुझे तो उस दिन जरा सा चाकू चुभ गया था तो तकलीफ के मारे मैं रात भर सो नहीं पाया था। कितना दर्द हो रहा होगा ना उसे।
4: अरे क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो?
1: देखो ना अम्मी, उसे किसी ने मारा है।
4: तो शरारत की होगी उसने।
1: मगर स्कूल में तो छड़ी से मारते हैं, खून कहाँ निकालते हैं?
5: वो छड़ी जोर से लग गई होगी बेटा।
1: उसकी वालिद स्कूल में जाकर शिकायत क्यों नहीं करते?
5: ओहो बेटा, बात ये है कि इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है।
1: अल्लाह मियाँ से भी बड़ा क्या अम्मी?
5: नहीं, उनसे छोटा है।
1: तो उसे अल्लाह मियाँ से शिकायत करनी चाहिए।
5: ओफो, अब बहुत देर हो गई खालिद, चलो अब सो जाते हैं।
1: अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ तू उस मास्टर को खूब खूब कड़ी सजा दे और उसकी छड़ी भी छीन ले।

श्रोताओं, ये थी मंटो की पहली कहानी तमाशा, जो जलियांवाला बाग कांड की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा ढाए गए जुल्म का एक बच्चे के मन पर पड़े प्रभाव का चित्रण है। हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। याद दिला दें कि मंटो की आरंभिक शिक्षा भी इसी शहर में हुई थी, यानी कहानी की घटनाओं के वे चक्षुदर्शी साक्षी हैं। इसमें जिस बादशाह का जिक्र आया है वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन है, जो सात समंदर पार इंग्लैंड में रहता था, जिसकी हुकूमत उस समय हिंदुस्तान पर चलती थी। लेकिन अल्लाह मियां से बड़ा वो नहीं। यही इस कहानी का मूल स्वर है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: डेट्रॉइट से विदा लेकर स्वामी जी पहले नॉर्दम्प्टन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्दम्प्टन डेली हेरॉल्ड नामक एक अखबार में 13 अप्रैल को संवाद प्रकाशित हुआ।
1: समाज की एक प्रतिष्ठित महिला ने विवेकानंद के लिए घरेलू सभा की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने सभी मेहमानों को सूचित कर रखा था कि दर्शन, विज्ञान अथवा धर्म के अपने सर्वाधिक दुरूह प्रश्न हिंदू सन्यासी के समक्ष रखें। वे आए, पूछा, उत्तर पाया और ये कहते हुए लौटे, इस सत्य का आधा भी पहले कभी नहीं कहा गया था।
2: 14 अप्रैल को स्वामी जी ने नॉर्दम्प्टन नगर की जनता के लिए तथा अगले दिन वहां के स्मिथ कॉलेज में व्याख्यान दिए। स्वामी जी की नॉर्दम्प्टन में उपस्थिति के संबंध में स्मिथ कॉलेज की तत्कालीन छात्रा श्रीमती मार्था ब्राउन फिंके की सन 1936 में लिखित स्मृति कथा में ये विवरण मिलता है।
3: 1875 ईस्वी में सोफिया स्मिथ ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के हेतु स्मिथ कॉलेज की स्थापना की। 1893 में जब मैंने एक 18 वर्ष की अपरिपक्व बालिका के रूप में इस कॉलेज में प्रवेश लिया, उस समय मैं कोई अनुशासन नहीं मानती थी, परंतु मनोजगत तथा आत्मिक जगत में सत्य लाभ के लिए अतीव उत्सुक थी। कॉलेज के छात्रावास में सबके लिए पर्याप्त स्थान न हो पाने के कारण मैं और भी 3 छात्राओं के साथ परिसर के बाहर स्थित एक वर्गाकार बादामी रंग के मकान में निवास करती थी। अप्रैल की बुलेटिन में छपा कि स्वामी विवेकानंद वहां 2 शाम व्याख्यान देंगे। हम लोग केवल इतना ही जानती थी कि वे एक हिंदू सन्यासी हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हाल ही के धर्मसभा में हुई उनकी ख्याति हमारे पास नहीं पहुंची थी। ये भी सुना कि वे हमारे ही मकान में ठहरेंगे, हमारे ही साथ भोजन करेंगे और हम उनसे जो चाहे प्रश्न कर सकेंगे। हमारी गृह स्वामिनी की उदारता का परिचय इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा, छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा, ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली न थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्प्टन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे।
2: मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है,
3: उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए हिंदू के टिक पाने की आशा भला कौन कर सकता था, परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भलीभांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा थॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्त वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बैलूट मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थी। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाचार थे। आखिरकार उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली।
0: मार्था ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा था और उसे अपने संस्मरण में शामिल किया था। स्वामी जी के प्रति वे सचमुच आकर्षित हुई थी। उन्हें और भी बातें याद थी। उन्होंने लिखा था,
3: अगले दिन प्रातःकाल स्नानागार में पानी गिरने की जोर की आवाज के साथ साथ एक अज्ञात भाषा में उच्चरित गंभीर सुर कानों में पड़े। हम सभी दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। जलपान के समय उस मंत्र पाठ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, जल को पहले मैं मस्तक से और फिर सीने में स्पर्श करता हूँ और प्रति बार मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए। परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी।
2: मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था कि जलपान के बाद स्वामी जी ने थोड़ा टहलने की इच्छा व्यक्त की। तब हम उनके दोनों ओर दो दो करके चार छात्राएं उस गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सड़कों पर चलने लगी। चलते चलते हमने संकोच पूर्वक कोई विषय छेड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी धवल दंत पंक्तियों से मुस्कान बिखेरते हुए तुरंत उत्तर दिया। मुझे केवल एक बात याद है, ईसाई मतवाद के प्रसंग में उन्होंने कहा कि सर्वदा ईसा मसीह के रक्त का उल्लेख उन्हें बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। इससे मुझे चिंतन का विषय मिल गया। रक्त से भरा हुआ एक पात्र है जो इमैनुअल की शिराओं से निकाला गया है। इस स्रोत से मैं सदा ही घृणा करती थी, परंतु उनका दुस्साहस देखिए कि वे चर्च द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत की समालोचना कर रहे थे। इस स्वतंत्रता प्रिय आत्मा के द्वारा जागृति आने के बाद निश्चित रूप से मेरे मुक्त चिंतन की शुरुआत हुई।
0: मार्था ने दीर्घकाल तक स्वामी जी को याद रखा था और उन्हीं के आकर्षण से भारत भ्रमण करने भी आई थी। स्वामी जी द्वारा प्रचारित जीव रूपी ब्रह्म तत्व ने उन्हें जीवन के दुखों के बीच भी शांति प्रदान की थी।
2: नॉर्दम्पटन के सिटी हॉल में 14 अप्रैल की शाम को स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उसमें स्वामी जी ने बताया कि भाषा, वर्ण एवं रीति रिवाजों में पार्थक्य के बावजूद जगत की प्रमुख जातियां मूलतः एक है। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड ने दूसरे दिन छापा,
1: जबकि हम अपनी जाति की आयु सैकड़े में गिनते हैं, तब वे अपनी आयु की गणना हजारों वर्षों में करते हैं। उसी भारत के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोत्तम विभूति के आलोक पुंज को देखने की जिसे परवाह हो, उस प्रत्येक बुद्धिमान एवं विचारशील अमेरिकन को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद को देखने और सुनने का अवसर हाथ से न जाने दें। वे प्रत्येक अमेरिकी के लिए अध्ययन के एक सुयोग्य पात्र हैं।

0: नॉर्दम्पटन से स्वामी जी मैसाचुसेट्स प्रांत के लीन नगर में जाकर श्रीमती फ्रांसिस डब्ल्यू ब्रीड के घर पर अतिथि हुए। लीन नगर चमड़े के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था और श्री ब्रीड का अपना निजी कारखाना था। वे बड़े धनी थे। स्वामी जी ने वहां दो व्याख्यान दिए, एक नॉर्थ शोर क्लब में और दूसरा ऑक्सफोर्ड हॉल में हुआ था। बोस्टन में भी श्री ब्रीड का मकान था। स्वामी जी वहां भी कुछ दिन ठहरे। लीन से बोस्टन की दूरी मात्र 10 मील है।
1: कुमारी इजाबेल मैककिंडले को लिखित स्वामी जी के एक पत्र से इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है।
2: बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। प्राध्यापक राइट के साथ भी मुलाकात हुई। मैं पुनः बोस्टन जा रहा हूँ। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान होगा और वहां मैं प्राध्यापक राइट का मेहमान रहूंगा। बोस्टन के समाचार पत्र मेरे स्वागत में काफी कुछ लिख रहे हैं। इन सब वाहियात कामों से मैं थक गया हूं। मई के अंत में शिकागो जाऊंगा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद मैं फिर पूर्व की ओर लौटूंगा। पिछली रात मैंने वॉल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया। श्रीमती स्मिथ ने $2 की दर से टिकट बेचे। यद्यपि हॉल छोटा था पर श्रोताओं से भर गया था। लीन में मुझे $100 प्राप्त हुए, परंतु उन्हें भेज नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नया गाउन तथा अन्य ऊटपटांग चीजें लेनी है। बोस्टन में मुझे धन मिलने की आशा नहीं है, तो भी मुझे अमेरिका के लोगों के माथे को छूने तथा उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो करना ही होगा।
0: स्वामी जी 24 अप्रैल से 6 मई तक न्यूयॉर्क में रहे और वहां अनेक व्याख्यान दिए। इजाबेल को उन्होंने 2 मई को पत्र लिखा। उसमें उनकी गतिविधियों का, कार्य प्रणाली का तथा मानसिक अवस्था के बारे में कुछ बातों का पता चलता है।
2: उस दिन वॉल्डोर्फ के व्याख्यान से मुझे $70 प्राप्त हुए। कल के भाषण से कुछ और भी मिलने की आशा है। 7 से 19 तारीख तक बोस्टन में कार्यक्रम है, पर वहां से काफी कम पैसे मिलने की उम्मीद है। कल मैंने $13 का एक पाइप खरीदा है। कृपया फादर पोप श्री हेल के सामने इसका जिक्र न करना। कोर्ट के लिए $30 लगेंगे। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सिर्फ उस लेक्चरबाजी को छोड़कर। हार्वर्ड में 3-3 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। यहां पर भी वे लोग कुछ कर रहे हैं, अतः शिकागो जाते समय एक बार पुनः न्यूयॉर्क आऊंगा और कुछ कड़ी बातें सुनाकर डॉलर हथियाने के बाद शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ मंगाना हो जो शिकागो में ना मिलता हो तो शीघ्र लिखना। इस समय मेरे पास ढेर सारे डॉलर हैं। तुम जो भी चाहोगी क्षण भर में भेज दूंगा। ऐसा ना सोचना कि इसमें कुछ अशोभनीय होगा। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं यदि भाई हूं तो भाई हूं। मैं दुनिया में यदि किसी चीज से नफरत करता हूं तो पाखंड से।
0: न्यूयॉर्क में उनका दूसरा व्याख्यान हुआ श्रीमती मैरी फिलिप्स के घर पर। वे पहले व्याख्यान में उपस्थित थीं तथा बाद में स्वामी जी की घनिष्ठ भक्त बन गई थीं। स्वामी जी उनके घर भी ठहरे थे। न्यूयॉर्क में अनेक गणमान्य लोगों से उनका परिचय हुआ, जैसे डॉक्टर गर्नसी तथा उनकी पत्नी लियो लैंडर्सवर्ग, जो लेखक और पत्रकार थे और बाद में स्वामी जी से दीक्षा तथा संन्यास लेकर कृपानंद के नाम से परिचित हुए। सुप्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी से भी पहचान हुई। एक अन्य मित्र थे लीमैन एबॉट, जो विख्यात पादरी, ब्रुकलिन चर्च के प्रमुख व सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली आउटलुक पत्रिका के प्रधान संपादक थे। स्वामी जी के न्यूयॉर्क निवास का विवरण श्रीमती कॉन्स्टेंस, जो विवाह के पूर्व मिस गिबन्स थी, की एक स्मृति कथा में प्राप्त होता है। उन्होंने 28 अप्रैल को डॉक्टर गर्नसी के घर पर स्वामी जी को देखा था। उन्होंने लिखा है,
3: मैं जब उनसे मिली उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वे प्राचीन ग्रीक देव मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत हुए, पर हाँ, उनका रंग सांवला था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें मध्यरात्रि के नक्षत्र खचित आकाश की याद दिलाती थी। उनका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से परिपूर्ण था। उस समय वे प्रसिद्ध डॉक्टर गर्नसी के घर पर अतिथि थे। डॉक्टर गर्नसी एक उदार साहित्य सेवी तथा सच्चे अतिथि परायण व्यक्ति थे। उनका विशाल और सुंदर मकान 5वें एवेन्यू के 44 नंबर स्ट्रीट पर था। डॉक्टर गर्नसी ने एक दिन अपराह्न में डिनर का आयोजन किया था। ऐसा निश्चित हुआ था उनमें प्रत्येक अतिथि एक धर्म के प्रवक्ता होंगे और उस समय इंगरसोल के नगर से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर स्वयं ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं कैथोलिक थी, इस कारण मुझे उस स्मरणीय रात्रि भोज में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। डॉक्टर गर्नसी हमारे चिकित्सक थे, इसीलिए कैथोलिक मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस भोज में डॉक्टर पाघस तथा अमेरिका की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिनी मैडन फिस्के भी आई थी। मुझे स्मरण है कि कुल मिलाकर 14 अतिथि वहां उपस्थित थे। आपस में अवश्य एक मौन समझौता हुआ था कि सभी एक दूसरे के तथा स्वामी जी के तथा कथित गैर ईसाई मतवाद के प्रति भद्र आचरण करेंगे। परंतु खेद की बात है कि जो जो भोज अग्रसर हुआ त्यों त्यों सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। स्वामी जी के साथ नहीं बल्कि बाइबिल पर ही आधारित विभिन्न संप्रदायों के बीच मेरी कुर्सी स्वामी जी के बगल में ही थी। हम दोनों मजे के साथ चुपचाप इस हास्यास्पद सांप्रदायिक असहिष्णुता को देखते रहे। स्वामी जी बीच बीच में संक्षिप्त व्याख्यान के सहारे ऊपरी तौर पर अपने देश तथा वहां के लोगों के रीति रिवाज समझाने का प्रयास करते, पर उनका असल उद्देश्य होता दर्शन तथा धर्म के किसी विषय में अपने मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। इस भोज के समय ही हमारी मित्रता का सूत्रपात हुआ। बाद में बैठक खाने में उन्होंने मुझसे कहा, मिस गिबन्स, आपके तथा मेरे दार्शनिक मत एक ही हैं। हमारी धार्मिक आस्था की मूल बातें भी समान हैं। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से स्वामी जी की बातें कही और माँ ने कहा,
4: क्या ही भयंकर सभा थी वो, जिसमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेसबिटेरियन सभी थे, और वो भी था साथ में नारंगी रंग के कपड़े पहने कृष्ण वर्ण विधर्मी।
3: परंतु माँ ने क्रमशः विवेकानंद को पसंद करना तथा उनके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना सीख लिया था। यहाँ तक कि बाद में वे एक वेदांत केंद्र की सदस्य भी बनी थी। स्वामी जी के लिए मेरी माँ थी बड़ी मजेदार, और इतने वर्षों बाद आज भी मेरे नेत्रों के सामने तैरने लगता है वो दृश्य जिसमें अपने बारे में माँ की टिप्पणियां सुनकर वे हंसते हंसते बेहाल हो जाते थे।
1: सन 1894 ईस्वी के वसंत काल का मौसम। एक रात कुमारी गिबन्स ने स्वामी जी को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में फाउस्ट नाटक देखने का आमंत्रण दिया। स्वामी जी ने पहले कभी ओपेरा नाटक नहीं देखा था। गिबन्स की मां ने आपत्ति की,
3: आप तो काले हैं, आपको हमारे साथ देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे?
2: मैं तो अपनी बहन के पास बैठूंगा, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी।
0: माँ चुप हो गई। ओपेरा गृह में उस दिन स्वामी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मिस गिबन्स ने लिखा है,
3: आसपास जितने भी लोग बैठे थे वे मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उस रात शायद उन लोगों ने ओपेरा सुना तक नहीं। मैंने उन्हें फाउस्ट की कहानी समझाना चाही तो माँ कह उठी,
5: हे भगवान, तेरी जैसी युवा लड़की को ऐसी भयानक कहानी एक पुरुष को नहीं सुनानी चाहिए।
2: अगर ये अच्छा नहीं तो आपने इन्हें आने क्यों दिया?
5: वाह, क्यों ना आती? ओपेरा देखने जाना एक सामाजिक प्रथा है। कथा वस्तु खराब है पर उस पर चर्चा करना ठीक नहीं।
3: ओपेरा के वक्त स्वामी जी ने पूछा,
2: अच्छा बहन, वो व्यक्ति जो गाना गाकर उस सुंदर स्त्री के सामने प्रेम जता रहा है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है?
3: हाँ स्वामी जी।
2: परंतु उस व्यक्ति ने तो महिला के प्रति अन्याय किया है और उसे दुखी बना दिया है।
3: हाँ स्वामी जी।
2: ओह, अब समझा, वो उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो तो उस लाल धारी वाले वस्त्र पहने पूंछ वाले शैतान के प्रेम में डूबा है ना?
3: इसी बीच हमारे समाज की एक लोकप्रिय युवती इंटरवल के समय हमारे पास आई और माँ से बोली, ये नारंगी वस्त्र पहने सुंदर व्यक्ति कौन है? वो बोली,
4: हमारे मेहमान हैं।
3: क्यों? मेरी माँ उनसे परिचय कराने के लिए उतावली हो रही है। और स्वामी जी फिर हंस पड़े।
0: स्वामी जी के संबंध में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरण हमें प्राप्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की स्मृति सर्वदा शाश्वत थी, अविस्मरणीय थी। महिला मूर्तिकार मैरलीना हॉफमैन ने अपने हेड्स एंड टेल्स ग्रंथ में लिखा है,
6: भारत मेरी बालिकाल की एक अति स्पष्ट स्मृति को जगा देता है। वो उद्दीपनामय संध्या मैंने अपने पिता के रिश्तेदार के यहाँ व्यतीत की थी। वे 38वीं स्ट्रीट पर स्थित एक साधारण से बोर्डिंग हाउस में निवास करते थे। इन प्राचीन पंथी नगरवासियों के साथ सहसा एक नए व्यक्ति का परिचय कराया गया। वे थे प्राच्य दार्शनिक तथा आचार्य स्वामी विवेकानंद। भोजन कक्ष में उनके प्रवेश करते ही सभी नीरव हो गए। उनका सांवला कांसे कासा रंग और उनकी विशाल तहदार पगड़ी एवं अजीब वेशभूषा सहजी दृष्टिगोचर हो रहा था। उनकी काली आँखें शायद ही कभी आसपास के लोगों को देखने के लिए ऊपर उठती थीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में शांति एवं शक्ति की एक ऐसी छाप थी जिसने मुझ पर अमिट छाप डाली। वे मुझे भी सच्चे ब्रह्मवेत्ताओं की तरह रहस्यमय तथा आध्यात्मिक प्रतीत हुए। परंतु इसके साथ ही झलक रहा था उनका सभी मानव भाइयों के प्रति सहज कोमल सहानुभूति का भाव। काफ़ी दिनों के बाद 1931 ईस्वी में हम लोग कलकत्ते के बेलूर मठ में उनका संगमरमर का स्मृति मंदिर देखने गए थे। जब मैं उनकी वेदी पर चढ़ाने के लिए जूही की एक माला लेकर गई तो मुझे स्मरण हो आया कि जीवन में जब मैंने एक ही बार इन साधु पुरुष का दर्शन किया था, उस समय बिना कुछ बोले ही उन्होंने भारत का सच्चा अर्थ जितना मुझे समझा दिया था, उतनी जानकारी मुझे भारत के बारे में भारतवासियों से सुने हुए अनेक भाषणों से भी प्राप्त नहीं हुई।
1: न्यूयॉर्क के ही समान बोस्टन में भी स्वामी जी के अनेक मित्र बने। उनमें सबसे प्रमुख थी श्रीमती ओली बुल, जिन्होंने इसके बाद से सर्वदा अनेक प्रकार से स्वामी जी की सहायता की। अपने कैम्ब्रिज के मकान में वे पहली बार स्वामी जी से मिली थी। श्रीमती ओली बुल के बारे में अगली कड़ियों में अनेकों जिक्र आएंगे, क्योंकि स्वामी जी के अमेरिका प्रवास के दिनों में उनका अवदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी के सफरनामे में अगला नगर होगा न्यूयॉर्क। 28 जून प्रातः काल वे न्यूयॉर्क पहुंचे।

0: युग प्रवर्तक विवेकानंद, आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जोश

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की बेहतरीन जुगलबंदी।

बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मर्तबा हम लोग ये जुगलबंदी भोपाल में बजाएंगे।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की जुगलबंदी। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: अतुल्य भारत।
0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
2: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
2: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
2: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
2: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
2: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
2: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
2: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
2: कौन सी?
0: शाम में अवध, सुबह काशी। यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
2: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
2: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
2: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
2: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
2: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
2: कौन से श्लोक?
0: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
2: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
2: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
2: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
2: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
2: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
2: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
2: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
2: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
2: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीपदान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हों।
2: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
2: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
2: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
2: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
2: हाँ,
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
2: बिल्कुल,
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
2: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
2: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
2: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
2: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
2: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं। इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
2: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
2: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
2: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
2: बिल्कुल,
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
2: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
2: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी। और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
2: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
2: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
2: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
2: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
2: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
2: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
2: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
2: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
2: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
2: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यही किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
2: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
2: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था, लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
2: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
2: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
2: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
2: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
2: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
2: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन सुनंदा शर्मा का, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सितार वादन की अलीफ लैला द्वारा। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं गायन सुनंदा शर्मा का।
1: थोड़ी सी दो तीन लाइन्स में ये बताना चाहूंगी, बचपन हिमाचल में था, पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा। कुछ बंदिशें थी जो मैंने बचपन से उनसे सीखी थी। जब मैं बनारस में अप्पा जी के पास, श्रीमती गिरजा देवी की जी के पास गई, तो वो जब शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने बोला, बेटा एक बंदिश है, उसके बोल थोड़े पंजाबी के हैं लेकिन अपभ्रंश हो गया है। तो उन्होंने वो बंदिश मुझे सिखानी शुरू की। मैंने कहा, अप्पा जी ये तो मैंने बचपन में सीखी है, तो कैसे बंदिशें ट्रैवल करती हैं? वो पंजाब की बंदिश थी और बनारस में गाई जाती थी। उन्होंने बोला, हमारे गुरुजी बहुत पुराने टाइम में कहीं से सीखे थे। तो क्यों आपा जी के पास बहुत रेयर चीज़ें थी जिसमें ख्याल और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, जिसमें ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, गुल, बैंत, नक्श, रुबाई, कौल, कलवाना, ये सब कितनी रेयर चीज़ें, जो एक एक एक एक गीत धरू, एक एक एक एक चीज़ें थी जो आपा जी के पास थी। और प्रसाद स्वरूप मुझे उनसे मिली हैं। तो मैं वो बंदिश से शुरू करूंगी जो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि कहाँ मैं पंजाब में ये सीख रही थी और फिर मैं इसको गा भी नहीं रही थी। फिर अप्पा जी के पास ये थोड़ा सीखा जाकर, तो फिर अप्पा जी ने बोला, अच्छा अच्छा तो इसके बोल ये हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, कुछ भी शब्द होते थे, अरे पंजाबी है तो इसका सही क्या होगा, तो पूछती थी सबसे। तो इतना गुरु होने के बावजूद भी कई बार बोलती थी, जाओ अपने नाना जी से पंजाबी के पुराने शब्द पूछ के लाओ या पंजाब के लोगों से। तो ये खोजी प्रकृति उनकी थी। तो मैं उसी एक बंदिश से शुरू करूंगी और उसके बोल भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक बार फिर, तबले पर जो मेरे साथ संगत करेंगे वो वैसे तो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, पंजाब घराने के बहुत गुणी कलाकार, डॉक्टर जयशंकर, एक बार स्वागत करें। और भोपाल के ही हमारे माजिद भाई मेरे साथ संगत करेंगे, माजिद खान साहब हारमोनियम पर। भोपाल की ही दो बच्चियां मेरे साथ तानपुरे पे संगत करेंगी, अंतरा, तो मेरे साथ पहले भी बैठी हैं अंतरा, और आप अश्लेषा। और मैं सुनंदा शर्मा, आपका बड़ों का आशीष और छोटों से स्नेह चाहते हुए मैं इस सफ़र को शुरू करती हूँ। इसमें मैंने पहला राग जो चुना है, जो मैंने कहा ना मेरे अचरज का विषय था, राग भीम पलासी की ये बंदिश, जिसके बोल हैं, साडे मन भाम दियाँ दिलबर यार सजन दियाँ रमजां। हमारे दिल को मेरा दिलबर और जो यार है, मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा मुर्शिद, उसकी हर बात मेरे दिल को अच्छी लगती है। त्रिंजन एक फेस्टिवल होता है नॉर्थ में, त्रिंजना दे विच नचन सहेलियाँ इक रोवण इक गाव दियाँ। त्रिंजनों में सहेलियाँ नाच रही हैं, कोई कढ़ाई कर रही है, कोई गा रही है, और कोई नाचते हुए, कोई रोते हुए उसको याद कर रही है। तो सब लोग अपने पिया को याद करते हुए, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। साडे मन भाम दियाँ, हमारे दिल को बहुत भाता है ये, उस दिल भर यार की सारी बातें। और उसी में इसी कड़ी में मैं फिर बनारस घराने की एक बहुत ही पुरानी बंदिश जो मैंने कभी नहीं गाई, बोलन लागी कोयलिया अमुआ की डारी, बहुत ही रेयर कंपोजिशन है, आपको सुन के मालूम पड़ेगा। तो मैं इसी राग में दो बंदिशें पहले आपको सुनाती हूँ, राग भीम पलासी में थोड़ा सा आलाप और ये बंदिशें। थैंक यू।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन सुनंदा शर्मा का, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सितार वादन की अलीफ लैला द्वारा। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं गायन सुनंदा शर्मा का।
1: थोड़ी सी दो तीन लाइन्स में ये बताना चाहूंगी, बचपन हिमाचल में था, पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा। कुछ बंदिशें थी जो मैंने बचपन से उनसे सीखी थी। जब मैं बनारस में अप्पा जी के पास, श्रीमती गिरजा देवी की जी के पास गई, तो वो जब शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने बोला, बेटा एक बंदिश है, उसके बोल थोड़े पंजाबी के हैं लेकिन अपभ्रंश हो गया है। तो उन्होंने वो बंदिश मुझे सिखानी शुरू की। मैंने कहा, अप्पा जी ये तो मैंने बचपन में सीखी है, तो कैसे बंदिशें ट्रैवल करती हैं? वो पंजाब की बंदिश थी और बनारस में गाई जाती थी। उन्होंने बोला, हमारे गुरुजी बहुत पुराने टाइम में कहीं से सीखे थे। तो क्यों आपा जी के पास बहुत रेयर चीज़ें थी जिसमें ख्याल और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, जिसमें ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, गुल, बैंत, नक्श, रुबाई, कौल, कलवाना, ये सब कितनी रेयर चीज़ें, जो एक एक एक एक गीत धरू, एक एक एक एक चीज़ें थी जो आपा जी के पास थी और प्रसाद स्वरूप मुझे उनसे मिली हैं। तो मैं वो बंदिश से शुरू करूंगी जो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि कहाँ मैं पंजाब में ये सीख रही थी और फिर मैं इसको गा भी नहीं रही थी। फिर अप्पा जी के पास ये थोड़ा सीखा जाकर, तो फिर अप्पा जी ने बोला, अच्छा अच्छा तो इसके बोल ये हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, कुछ भी शब्द होते थे, अरे पंजाबी है तो इसका सही क्या होगा, तो पूछती थी सबसे। तो इतना पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा कुछ बंदिशें।

करते हैं, पहले मैं ठुमरी सुनाती हूँ। राग मिश्र खमाज की ये ठुमरी बहुत पुरानी ठुमरी है बनारस की। राग मिश्र खमाज।

गगरिया में घरे धरे आऊं, गगरी में धरे आऊं, चुनरी पहरी आऊं, कर आऊं सोला श्रृंगार, ठाड़े रहो बांके शाम। राधा जी कह रही हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर आके श्रृंगार करके आती हूँ, तब मैं आपके साथ चलूंगी।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन सुनंदा शर्मा का और सितार वादन का आनंद लिया, जिसकी प्रस्तुति दी अलीफ लैला ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है।

सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे, मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है। भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो आ ही जाएगी।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: श्रोताओं प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुर सेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुर सेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
1: मैं आई कम इन सर?
2: यस कम इन, फरमाइए।
1: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
2: नोटिस? मगर किस बात का?
1: कंपेंसेशन का सर।
2: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
1: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
2: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
1: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजीब बिल्कुल है,
2: है?
1: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना, बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है। और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
2: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
1: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था, मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
2: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
1: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
2: क्या?
1: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
2: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
1: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
2: अच्छा,
1: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
2: क्या कह रहे हो?
1: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
2: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
1: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
2: और अगर हम ना बोल दें तो?
1: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर्जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
1: ओह यस, बोलिए सर, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
2: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
1: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर।
3: मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: अरे सर,
1: सर मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
1: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वां बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
1: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत
1: अरे
0: सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी,
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
1: ना ना ना
0: गई?
1: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं, नहीं सर वो।
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुर सेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे, मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम
3: you.
0: लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज हर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: हाँ, चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया, तुलसीदास।
4: तुलसीदास, मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा,
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची? सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी
2: और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
5: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा, गोली मारी आदमी आदमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
2: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
5: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
2: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
5: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
2: सर 50 किलोमीटर का।
5: मगर कैसे?
2: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
2: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
2: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
2: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
2: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
2: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
2: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
2: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
2: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
2: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
2: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
2: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
5: जी सर,
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
5: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
5: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह
5: ठीक है ना सर,
0: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
3: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मचमचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। ये आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए।

तो श्रोताओं, ये था हमारे हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: है भूपटल।
1: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
0: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
2: रही घटा विकल, तम भरा है भूपटल।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि के 10 बजे तक निरंतर जारी रहेगी। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 108 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्राग्नि, छंद है त्रिष्टुप।
1: य इंद्राग्नि चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे तेनायातम सरथम तस्थि वासाथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आपका जो अद्भुत रथ सभी लोकों को देखता है, उस रथ में दोनों एक साथ बैठकर हमारे यहाँ पधारे और अभिशुत सोमरस का पान करे। यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरं तावाम अयं पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नि मनसे युवभ्याम। यह संपूर्ण विश्व जितना विशाल, श्रेष्ठ और गांभीर्य युक्त है, हे इंद्राग्नि, आपके सेवन के लिए निष्पादित सोमरस उतना ही प्रभावशाली होकर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। चक्राथे ही सद्रयं नाम भद्रम सद्री चीना वृतहणा उतस्थः ताविंद्राग्नि सद्रयंचा निषद्या वृषणः सोमस्य वृषणा वृषेथाम। हे इंद्राग्नि, आपकी संयुक्त शक्ति विशेष कल्याणकारी है। हे वृत्रहंताओं, आप संयुक्त रूप में ही वास करते हैं। हे शक्ति संपन्न वीरों, आप दोनों एक साथ बैठकर सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाएं। समिद्धेष्वग्निश्वान जाना यतस्रुचा बरिहिरु तिस्तिराणा तीव्रैः सोमैः परिशक्ते भिरर वागेन्द्राग्नि सौमनसाय यातम। यज्ञ में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने पर जिनके निमित्त आहुतियां प्रदान करने के लिए घृत युक्त चमसों पात्रों को भरकर रखा गया है तथा कुशाओं के आसन बिछाए गए हैं, ऐसे इंद्राग्नि जो तीक्ष्ण सोमरस जल मिलाकर तैयार है, उसके सेवन हेतु आप हमारे यज्ञ में पधारे। यानीन्द्राग्नि चक्रथुर वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्णयानि यावाम प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, शक्ति के परिचायक जिन कर्मों को आपने संपादित किया, जिन रूपों को शक्ति के प्रदर्शन के समय आपने प्रकट किया तथा आपके जो प्राचीन समय से प्रचलित कल्याणकारी मित्र भावना के प्रेरक कर्म हैं, उनका ध्यान रखते हुए सोमरस पान के लिए यहां पधारे। यदब्रवम प्रथमं वाम व्रणानोयम सोमो असुरैर्नो विहव्यः ताम सत्याम श्रद्धामभ्याहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। सर्वप्रथम आप दोनों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही हमने कहा था कि याज्ञिकों ने ये हमारा सोमरस आपके निमित्त ही निष्पन्न किया है, इसलिए हमारी हार्दिक श्रद्धा अनुसार आप दोनों हमारे यज्ञ में आए तथा निष्पन्न सोमरस का सेवन करें। यदिंद्राग्नि मदथः स्वे दुरोणे यद् ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्रदेव और यज्ञाग्ने, यजमान के गृह ज्ञान संपन्न साधक की वाणी अथवा राजगृह में जहां भी आप आनंद युक्त रहते हो, उन स्थानों से आप हमारे यज्ञ में आए, इस अभिषुत सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद् द्रुह्यश्वनुषु पुरुषुस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आप दोनों यदुओं, तुर्वशों, द्रुह्यों, अनुओं और पुरुओं के यज्ञों में विद्यमान हो, तो वहां से भी हे सामर्थ्यवान देवो हमारे यज्ञ में आए और निष्पादित सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि अवमस्याम पृथिव्याम मध्यमस्याम परमस्यामुतस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों ऊपर नीचे या मध्य में जहां भी पृथ्वी के जिस किसी भाग में भी स्थित हो, इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान अवश्य करें। यदिंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम मध्य मस्यामवमस्यामुतस्थः अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव और अग्निदेव, आप ऊपरी स्वर्गलोक, अंतरिक्षलोक, मध्यलोक तथा नीचे के भूभाग में जहां भी हो, हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। यदिंद्राग्नि दिविष्ठो यत् पृथिव्याम यत् पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे बलशाली इंद्राग्नि, आप दोनों द्युलोक, पृथ्वी, पर्वतों, औषधियों अथवा जलों में भी जहां विद्यमान हो, वहां से हमारे यज्ञ में निष्पादित सोमपान के लिए आगमन करें। यदिंद्राग्नि उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे अतः परिवृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सामर्थ्य संपन्न इंद्राग्नि, आप दोनों स्वर्गलोक के बीच में सूर्योदय की वेला में हो अथवा अन्न सेवन के बाद विश्राम का आनंद ले रहे हो, ऐसे में भी आप दोनों हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। एवेन्द्राग्नि पपिवासा सुतस्य विश्वास्मभ्यं संजयतं धनानि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों सोमरस के पान से हर्षित होकर सभी प्रकार की संपदाओं को जीत कर हमें प्रदान करें। हमारी अभीष्ट कामना पूर्ति में मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी और दिव्य लोक के सभी देव सहायक हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 108 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: हम बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम भक्ति संगीत।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

0: शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
0: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। नवंबर 1945 से 1946 तक चले एक ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान देश भर में गूंज उठा था ये नारा। दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला और उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को इसने एकता के सूत्र में बांध दिया। इन्हीं तीन सैन्य अधिकारियों में से एक मेजर जनरल शाहनवाज खान की चर्चा आज इस कार्यक्रम में। मेजर जनरल शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वो एक महान देशभक्त, बहादुर सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबियों में से एक थे। इसके साथ ही वो एक समर्पित राजनेता और सच्चे समाजसेवी भी थे। शाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी सन 1914 को रावलपिंडी के पास स्थित गांव मटौर में हुआ था। उनके पिता का नाम टीका खान था, जो स्वयं एक फौजी थे। पारिवारिक वातावरण से ही उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक सैनिक बने और राष्ट्र की सुरक्षा का काम करें। उन्होंने देहरादून के इंडियन मिलिट्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और सन 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। इस तरह उनके बचपन का एक सपना पूरा हुआ। वो एक अत्यंत पराक्रमी और जाबाज सिपाही थे, जो मिट तो सकता था लेकिन टूट नहीं सकता था। यही कारण है कि सेना में उनकी विशेष पहचान रही और पदोन्नत होते हुए वो कैप्टन के पद तक पहुंचे। भारत भूमि की सेवा ही उनका अटल संकल्प था।

शाहनवाज खान ब्रिटिश भारतीय फौज में शामिल हो चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। शाहनवाज खान को दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती मिली थी। इसी बीच जापानियों ने सिंगापुर पर हमला कर दिया। सिंगापुर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के साथ भारत से लगभग 60,000 भारतीय सैनिकों को सिंगापुर भेजा। इसमें कैप्टन के तौर पर शाहनवाज खान भी शामिल थे। भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना की हार हुई। शाहनवाज खान को हजारों सैनिकों के साथ युद्धबंदी बना लिया गया। सिंगापुर जेल में शाहनवाज खान की भेंट अनेक क्रांतिकारी सैनिकों से हुई और भारत की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों के समर्पण से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये उनकी जिंदगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद से इन बंदी सैनिकों को रिहा करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंदी सैनिकों के सामने ओजस्वी भाषण दिया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की वाणी का प्रभाव बहुत गहरा था। सैनिक अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित करने को तत्पर हो गए। इस तरह शाहनवाज खान सहित सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत माता की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। ये शाहनवाज खान के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। नेताजी के विचारों से जैसे उनके भीतर एक उजाला हो गया। नेताजी ने उन्हें भारत को एक भारतीय की दृष्टि से देखने का बहुमूल्य दृष्टिकोण दिया। फौजी तो वो अब भी थे, लेकिन अब उनका समर्पण आजाद हिंद फौज के लिए था। अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों का लाभ लेकर भारतीय स्वाधीनता के लिए युद्ध का इरादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में भी शामिल किया था। सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का कमांडर नियुक्त किया। नेताजी का सपना था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज के सबसे योग्य और जाबाज सैनिकों की एक विशेष रेजिमेंट तैयार की। इस रेजिमेंट को भारतीय सीमा में घुसकर आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने का दायित्व सौंपा गया। इस रेजिमेंट की कमान नेताजी ने शाहनवाज खान के हाथों सौंपी और ये सैनिक बढ़ चले निर्भय निर्द्वंद्व।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की बहादुरी और उनके समर्पण से अत्यधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें मेजर जनरल की उपाधि प्रदान की थी। नेताजी की योजना के अनुसार शाहनवाज खान ने अपने सैनिकों के साथ पूर्वोत्तर भारत के कोहिमा और इम्फाल पर धावा बोला। इस लड़ाई में प्रमुख कमांडर के रूप में शाहनवाज खान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना का नेतृत्व तो किया ही, अस्थायी रूप से इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा भी किया, जो भारत की आजादी के लिए नेताजी का एक निर्णायक अभियान था। बर्मा से भारत की ओर बढ़ते हुए जापानी सेना के समर्थन से उन्होंने आजाद हिंद फौज का अद्भुत नेतृत्व किया तथा भारत में प्रवेश करने के लिए मंच तैयार किया। दिल्ली चलो का नारा सैनिकों को उत्साह से भरता रहा। हालांकि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा स्थायी नहीं हो सका और मेजर जनरल शाहनवाज खान और उनके दल को अंग्रेजी सेना ने सन 1945 में बंदी बना लिया। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग नारा लगा रहे थे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। अंग्रेजों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन जनता के विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया। उनकी सजा को बर्खास्तगी में तब्दील कर दिया गया तथा आजाद हिंद फौज के इन अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। ये मुकदमा आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई ऊर्जा से भर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना से सीधे युद्ध कर मेजर जनरल शाहनवाज खान ने स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा मेरठ से सांसद चुने गए। वो सन 1952 से 1971 तक लगातार 4 बार निर्वाचित हुए तथा उन्होंने रेलवे, कृषि, श्रम तथा इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। सन 1956 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कमेटी बनाई गई तो शाहनवाज खान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 9 दिसंबर सन 1983 को अंतिम सांस ली। वो एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश को ही अपना मजहब माना और अपनी हर सांस उसे समर्पित कर दी। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे। देशभक्ति से ओतप्रोत आम जनमानस को देशभक्तों की विप्लवी गाथाओं से परिचित कराता
1: जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह
0: 9 फरवरी को विप्लव आहुति,
1: 10 फरवरी महापरमवीर,
0: 11 फरवरी को सिहर उठी थी मौत यहाँ,
1: 12 फरवरी बलिदान,
0: 13 फरवरी को क्रांतिवीर बाबूराव शेडमा के,
1: 14 फरवरी गणसरी,
0: 15 फरवरी को इनकलाबी बेटा भगत सिंह।
1: प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से
0: शहीद भवन सभागार भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
1: मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय का विनम्र आयोजन।
0: प्रवेश नि

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक सर ओ हेनरी की कहानी पोशाक।

0: बड़े नगरों में रहस्य एक के बाद एक इतनी शीघ्रता से घटित होते हैं कि पाठक गण और जॉनी बेल चैम्बर्स के मित्रों ने बिना उसके स्पष्टीकरण दिए अचानक गायब हो जाने पर लगभग एक वर्ष पूर्व ही आश्चर्य करना छोड़ दिया है। हालांकि यह रहस्य अब स्पष्ट हो गया है, किंतु इसका हल एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क के लिहाज से इतना विचित्र और अविश्वसनीय है कि कुछ चुनिंदा लोग ही जो बेल चैम्बर्स के अत्यधिक समीप थे इस पर पूर्ण विश्वास करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि जॉनी बेल चैम्बर्स समाज के सर्वोत्कृष्ट वर्ग के निजी अंतरंग समुदाय से संबंधित था। सलीकेदार लोगों की दिखावेबाजी के बिना जो अपने धन और वैभव के प्रदर्शन द्वारा ध्यान आकर्षण के लिए संघर्ष करते हैं, वो अब भी प्रत्येक बात में इतना अनुशासित था कि समाज के उच्च वर्ग में उसे वांछित योग्यता का उच्च स्थान प्राप्त था। विशेषता उसने परिधानों के विषय में जानकारी के लिए नाम कमाया। इसमें नकल करने वालों को निराशा हाथ लगती थी। उसके पास सदैव उचित, अद्वितीय और असीमित वस्त्र होते थे। वो न्यूयॉर्क और संपूर्ण अमरीका में सबसे बढ़िया परिधान पहनने वालों में गिना जाता था। गोथेम में एक भी दर्जी ऐसा नहीं था जो जॉनी बेल चैम्बर्स के लिए वस्त्र सिलने के विशेषाधिकार को बिना एक भी पैसा लिए एक अमूल्य वरदान की भांति न समझता हो। जब वो उनके सिले हुए कपड़े पहनता तो ये उसके लिए एक अमूल्य विज्ञापन की तरह होता था। उसे पतलूनों का बहुत शौक था। इसमें वो किसी और चीज से नहीं, मात्र त्रुटिहीनता से संतुष्ट होता था। उसके घर में सदैव एक व्यक्ति उसके वस्त्रों के ढेर इस्त्री करने में लगा रहता था। उसके मित्र कहते थे वो बिना वस्त्र बदले अधिक से अधिक मात्र 3 घंटों तक ही रह सकता था। बेल चैम्बर्स एकाएक गायब हो गया। 3 दिनों तक उसके मित्रों को इसमें कोई विशेष खतरा प्रतीत नहीं हुआ और फिर उन्होंने साधारण से पूछताछ प्रारंभ कर दी, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ गया था। फिर उसके मित्रों ने इसके पीछे छिपे किसी उद्देश्य की खोज की, लेकिन वहां भी असफलता ही हाथ लगी। उसका कोई शत्रु नहीं था, उसने किसी से कोई ऋण नहीं लिया था और ना ही किसी औरत के साथ उसके ऐसे संबंध थे। उसके खाते में $1,000 थे। उसमें मानसिक असंतुलन की प्रवृत्ति भी कभी भी दिखाई नहीं दी। वास्तव में वो शांत और संतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति था। गुमशुदा व्यक्ति को खोजने के प्रत्येक साधन का उपयोग कर लिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार से इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। गत वर्षों में इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटी थी जब कोई व्यक्ति एक मोमबत्ती की बुझी हुई लौ के समान गायब हो गया और अपने पीछे एक धुएं की लकीर जितना प्रमाण भी नहीं छोड़ गया। मई के महीने में टॉम ऑयर्स और लैंसनोट गिलियम, जो बेल चैम्बर्स के 2 पुराने मित्र थे, पर्यटन के लिए यूरोप गए थे। जब वो इटली और स्विट्जरलैंड में भ्रमण कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत पर स्थित एक मठ के विषय में सुना, जो पर्यटकों के अन्य आकर्षणों से भिन्न था। मठ एक औसत पर्यटक की पहुंच से बाहर था। ये एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ चट्टानी पर्वतों पर स्थित था। इसके मुख्य आकर्षण, जिनके बारे में प्रचार नहीं किया जाता था, पहला, भिक्षुओं द्वारा अद्वितीय और दैवीय ढंग से स्वागत किया जाना था। तत्पश्चात पीतल के विशाल घंटे को इतनी शुद्धता और उचित ढंग से बजाया जाता कैसा प्रतीत होता जैसे 300 वर्ष पूर्व जब यह पहली बार बजा था तब से मानो ऐसा ही बज रहा हो। तीसरी और अंतिम बात यह कि वो ये दावा करते थे कि इसकी 4 दीवारी में आज तक किसी अंग्रेज के पांव नहीं पड़े थे। आयर्स और गिलियम ने यह निश्चय किया कि वे इन 3 सूचनाओं की खोज करेंगे। उन्हें 2 गाइडों की सहायता से संत गांड्रो के मठ तक पहुंचने में 2 दिन लगे। ये बर्फ से जमी हुई पथरीली चट्टान पर स्थित था, जिसके चारों ओर जगह जगह बर्फ के समूह एकत्रित थे। उनकी बड़े ही सत्कार के साथ उन भंतों द्वारा अगवानी की गई, जिनका कर्तव्य था कि वो यदा कदा आने वाले अतिथियों की देखभाल करें। उन्होंने बहुमूल्य सत्कार का पेय ग्रहण किया, जिसे पीकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दुर्लभ रूप से शक्तिशाली और पुनर्जीवित करने वाला पेय था। उन्होंने सदैव बजते रहने वाले महान घंटे की आवाज सुनी और यह अनुभव किया कि धूसर पत्थर की उन दीवारों में वो एक अंग्रेज के स्थान पर, जिसके व्याकुल पांव पृथ्वी के प्रत्येक कोने को रौंद चुके थे, एक पथ प्रदर्शक यात्री थे। वो दोपहर के 3 बजे वहां पहुंचे। दो युवा गोथामी बंधु क्रिस्टोफर के साथ मठ के विशाल आधे मार्ग में भिक्षुओं की कदम ताल देखने के लिए खड़े थे। बंधु क्रिस्टोफर उन दोनों के साथ निशब्द चल रहे थे। जैसे ही जुलूस धीरे से आगे बढ़ा, आयर्स ने अचानक गिलियम की बांह पकड़ ली। देखो वो जो अब ठीक तुम्हारे सामने, वो इस ओर जो कमर पर हाथ धरे खड़ा है, यदि वो जॉनी बेल चैम्बर्स नहीं है तो उसका यह मतलब है कि मैं उसे जानता ही नहीं। गिलियम ने उस ओर देखा और फैशन के उस अचानक गायब हो गए दर्पण को तुरंत पहचान लिया। ओ ये हमारा पुराना मित्र बेल यहां क्या कर रहा है? उसने विस्मय से कहा, टॉमी ये बेल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बेल कभी धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि वो गिरजाघर में उचित प्रकार से न खड़े होने पर मिलने वाले दंड के विषय में भी अनाप शनाप बकता रहता था। ये निस्संदेह बैल ही है, आर्यस ने दृढ़ता से कहा, या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। परंतु तनिक जॉनी बेल चैम्बर्स के विषय में सोचो, जो फैशन जगत का राजसी उच्चाधिकारी था और उच्च वर्ग की प्रायः दी जाने वाली पार्टियों की शान था, और अब यहां शीत गृह में राख जैसे कपड़े पहने पूजा कर रहा है। मेरा मस्तिष्क ये स्वीकार नहीं करता। हमें उस हंसमुख लड़के से पूछना चाहिए जो ये क्रियाकलाप कर रहा है। बंधु क्रिस्टोफर से ये जानकारी देने की प्रार्थना की गई। तब तक भिक्षु को मठ में प्रवेश कर चुके थे। वो नहीं बता सका कि वो किसकी बात कर रहे थे। बेल चैम्बर्स? ओह, संत गांड्रो के बंधुओं ने जब प्रतिज्ञा ली थी तो अपने सांसारिक नाम त्याग दिए थे। क्या आप सज्जन लोग किसी बंधु से बात करना चाहते हैं? यदि आप मठ में आए और जिससे मिलना चाहते हैं उसके विषय में बताएं तो सम्माननीय अधिकारी निस्संदेह आपको इसकी अनुमति दे देंगे। अवायस और गिलियम भोजन कक्ष में पहुंचे और जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था उसके लिए बंधु क्रिस्टोफर को संकेत कर दिया। हाँ, ये जॉनी चैम्बर्स ही था। उन्होंने देखा कि अब उसका चेहरा सादा था और वो अपने बंधुओं के साथ बैठा था और कभी ऊपर नहीं देख रहा था। वो एक भद्दे भूरे कटोरे से शोरबा पी रहा था। दोनों यात्रियों को उस बंधु से बात करने की अनुमति मिल गई थी और वो एक स्वागत कक्ष में उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब वो अपनी खड़ाऊं पहने धीरे धीरे चलता हुआ आया तो आयर्स और गिलियम दोनों ने उसे उलझन और आश्चर्य के साथ देखा। ये जॉनी बेल चैम्बर्स ही था, परंतु उसका रूप बदल गया था। उसके चिकने चेहरे पर एक असीम शांति और पूर्ण प्रसन्नता के आनंद की उपलब्धि के भाव थे। वो गर्व से सीधा खड़ा था। उसकी आंखें शांति और दयालुता के प्रकाश से चमक रही थी। वो उतना ही साफ सुथरा था जितना न्यूयॉर्क के दिनों में रहा करता था, लेकिन वो कितने भिन्न वस्त्र पहने था। अब उसने मात्र एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था, खुरदुरे भूरे रंग का एक लंबा चोगा जो एक डोरी से कमर पर बंधा था और पांव तक सीधी ढीली चुन्नटों के रूप में लटक रहा था। उसने अपने पुराने शिष्ट ढंग से अपने आगंतुकों से हाथ मिलाए। यदि इस भेंट में उसे कुछ उलझन हो भी रही थी तो वह जॉनी बेल चैम्बर्स के भावों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो रही थी। कमरे में कुर्सियां नहीं थी, इसलिए वो खड़े खड़े ही बातें कर रहे थे। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई प्रिय मित्र, आर्यस ने थोड़ी फूहड़ता से कहा।
1: हम यहां तुम्हारे आने की आशा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वाह, क्या बात है! ये समाज का एक प्रभावशाली पाखंड है, ये घूम घूम कर चक्कर खाना और वो हाँ ध्यान में लीन हो जाना, और हाँ प्रार्थना और भजन, इन सब में बड़ी शांति मिलती होगी।
0: ये सब छोड़ो जॉमी, बेल चैम्बर्स ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। डरो मत, मैं ये इन सब के साथ इसलिए करता हूं कि ऐसा नियम है। मैं यहां बंधु एम्ब्रोज हूं, क्या तुम जानते हो? मुझे तुम लोगों से बात करने के लिए 10 मिनट दिए गए हैं। तुमने ये जो कोट पहना है कुछ नई शैली का लगता है, नहीं गिलियम? क्या ब्रॉडवे में अब इस प्रकार के वस्त्र पहने जा रहे हैं? अरे ये तो हमारा वही पुराना जॉनी है, गिलियम ने आनंद पूर्वक कहा। तुम शैतान! मेरा तात्पर्य है कि क्यों? ओह, तुमने ये सब क्यों किया प्रिय मित्र?
1: अपने ये वस्त्र उतार फेंको,
0: आर्यस ने लगभग क्रंदन करते हुए प्रार्थना की,
1: और हमारे साथ वापस चलो। तुम्हारे अपने पुराने मित्र तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। तुम इसके लिए नहीं बने हो बेल। अपना त्याग पत्र दे दो, रिहाई ले लो, या जो कुछ तुम्हें इस बर्फ खाने से मुक्त होने के लिए करना है करो। जॉनी, तुम्हें यहां सर्दी लग जाएगी और हे ईश्वर, तुमने तो जुराबें तक नहीं पहनी है।
0: बेल चैंबर्स ने अपनी खड़ाओं की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम लोग नहीं समझ सकते, उसने सांत्वना देते हुए कहा। तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो, परंतु अपने पुराने जीवन में मैं पुनः नहीं लौट सकूंगा। मैं यहां अपने संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्य पर पहुंच गया हूं। मैं यहां पूर्ण रूपेण आनंदित और संतुष्ट हूं। अब मैं अपना शेष जीवन यहीं बसर करूंगा। मैंने जो पोशाक धारण कर रखी है, इसे देख रहे हो? बेल चैंबर्स ने ध्यान से सीधे लटकते वस्त्र को स्पर्श करते हुए कहा। अंततः मुझे कुछ ऐसा मिल ही गया जो घुटनों पर उभरा हुआ नहीं होता। मुझे प्राप्ति हो गई है। उसी क्षण विशाल पीतल के घंटे की गहरी ध्वनि मठ में गूंज उठी। ये तत्क्षण भक्ति के लिए बुलावा रहा होगा, क्योंकि बंधु एम्ब्रोज ने सिर झुकाया, मुड़ा और बिना एक भी शब्द कहे वो कक्ष से चला गया। वो जैसे ही पत्थर के द्वार से गुजरा, धीमे से लहराते उसके हाथ ने जैसे उसके पुराने मित्रों से अलविदा कहा। उन दोनों ने भी उससे पुनः मिले बिना ही मठ छोड़ दिया। और ये वो कहानी है जो टॉमी आयर्स और लैंसलोट गिलियम यूरोप की अपनी नवीनतम यात्रा से अपने साथ लेकर वापस आए। सुनो कहानी के अपने अगले अंक में फिर किसी कथाकार, फिर किसी साहित्यकार की एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये कहानी थी सर ओ हेनरी की पोशाक। आवाज दी थी संदीप शर्मा ने। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं वर्षा सिंह।
1: श्रोताओं, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकार समय से आगे चलकर भी दिलों में ठहर जाता है, इसी तरह का कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। आज कला कल्लोलिनी में हम बात करेंगे उस संगीत साधक की जिसके हाथों में समय की धड़कन थिरकती थी, जिसके संतूर से पर्वत बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और आकाश राग में ढल जाता था। आज का विषय है संतूर सम्राट शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोक से उठाकर शास्त्रीय आकाश तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार।
2: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला को नहीं चुनते, कला उन्हें चुनती है। उनका जीवन किसी अभ्यास की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होता है। वे मंच पर नहीं चढ़ते, वे मंच बन जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ऐसे ही कलाकार थे जिनके लिए संगीत न पेशा था न प्रदर्शन, बल्कि एक आजीवन तपस्या।
1: भारत के मानचित्र में एक भूखंड

0: अन पहाड़ों से संवाद करते हैं। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके लिए समय ने पहले ही अपनी भूमिका तय कर दी थी। एक बालक जो आगे चलकर स्वरों का यात्री बना और जिसकी साधना ने एक लोकवाद्य को शास्त्र का सिंहासन दिलाया। उस बालक का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: वो जन्म से ही किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थे। भले ही उनका जन्म जम्मू की धरती पर हुआ, पर उनकी चेतना कश्मीर की शांत घाटियों में अनविरत विचरण करती रही। उनके भीतर हिमालय का धैर्य था, झेलम की निरंतरता थी और घाटियों का वो मौन था जो बोलने से पहले अनुभव करता है। यही कारण था कि जब संतूर के 100 तार उनकी उंगलियों में स्पंदित हुए तो वह केवल संगीत नहीं था, कश्मीर की आत्मा थी जो स्वर बनकर विश्व से संवाद कर रही थी।
0: जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही कथा कहने लगे, तब समझिए संगीत बोल रहा है। ये कथा ना किसी राजा की है, ना किसी युद्ध की। ये कथा है एक साधक की, जिसने 100 तारों में अपनी आत्मा बांध दी। ये कथा है उस वाद्य की, जिसे कभी लोक सीमाओं में बांध दिया गया था और एक मनुष्य ने उसे शास्त्र का आकाश दे दिया। उस साधक का नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, उनके पिता थे पंडित उमा दत्त शर्मा। बनारस की पवित्र संगीत धारा में उन्होंने अपने गुरु पंडित रामदास जी से शिक्षा पाई थी। ध्रुपद और खयाल उनकी साधना के 2 स्तंभ थे और तबला तथा पखावज उनके हाथों में केवल वाद्य नहीं बल्कि समय को नापने वाले साधन बन जाते थे। उनकी गायकी में बनारस घराने की गंभीरता थी, वो ठहराव, वो गहराई जो स्वर को सजावट नहीं अर्थ देती है। ऐसा कहा जाता है जब वे रियाज में बैठते तो स्वर पहले कमरे में उतरते और फिर धीरे धीरे मन में। उस घर का वातावरण साधारण नहीं था। वहां सुबह सूरज की पहली किरण से पहले रियाज शुरू हो जाता और रात तब समाप्त होती जब स्वर थक कर मौन में विश्राम करते। वो घर सोता नहीं था, वो सुनता था। दीवारें ताल पहचानती थीं और आंगन रागों का साक्षी था। उसी वातावरण में शिव कुमार शर्मा बड़े हुए, जहां संगीत सिखाया नहीं जाता था, जिया जाता था।
0: जी हाँ, माता का हृदय भी संगीत से भरा हुआ था, कोमल, संवेदनशील और स्वप्नदर्शी। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं और उनके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ आकांक्षा पलती रहती थी। उनकी आंखों में एक सपना था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई एक दिन संतूर जैसे लोकवाद्य पर भी उसी गरिमा के साथ गूंजे। शायद वही सपना था जो आगे चलकर शिव कुमार शर्मा की साधना में बदल गया। पिता ने अनुशासन दिया, गुरु ने दिशा दी और माँ ने उस यात्रा को अर्थ, और यही तीनों मिलकर एक ऐसे संगीतज्ञ को गढ़ रहे थे जिसकी कथा आगे चलकर संतूर की तरंग में लिखी जानी थी।
1: शिव कुमार शर्मा ने बचपन में कभी संगीत को अलग विषय की तरह नहीं देखा, वो तो उनके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव कुमार सुरों से खेलते। जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनते, वे आलाप सुनते। उनके लिए संगीत सीखा नहीं जाता था, वो देखा, सुना और जिया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया। कोई दबाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उमा दत्त शर्मा जानते थे कि संगीत को थोपने से नहीं, बोने से फल मिलता है।
0: स्कूल की पढ़ाई भी चली, किताबें भी आई, लेकिन शिव कुमार का मन कक्षा के 4 दीवारों में नहीं टिक पाता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें समझ आते थे, पर हवा में तैरते हुए सुर उन्हें ज्यादा सच लगते थे। शिक्षक पढ़ाते और खिड़की से आती हवा किसी अनजाने राग का संकेत दे जाती। पढ़ाई जरूरी थी, पर आत्मा का रास्ता कहीं और था, और आत्मा का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं गुजरता।
1: जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र तक शिव कुमार जम्मू के स्थानीय रेडियो स्टेशन पर गायन और तबला प्रस्तुत करने लगे थे। रेडियो की तरंगों पर उनका स्वर जाना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा छोटी नहीं होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशोर अवस्था में पिता ने उन्हें संतूर से परिचित कराया। वही संतूर जो कश्मीर की सूफी परंपरा में गूंजता तो था, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर अभी तक अजनबी था। लगभग 100 तारों वाला ये वाद्य सुंदर तो था लेकिन जिद्दी भी था। स्थिर स्वर होने के कारण लोग मानते थे कि ये रागों की बारीकियों के लिए उपयुक्त नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खुद पंडित शिव कुमार शर्मा का कहना है, असल में संतूर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसे संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 100 तार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया।
0: पिता की इच्छा और उनकी कामना शिव कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार ने संतूर को अपनी साधना का केंद्र बना लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उंगलियां दुखती थीं, तार उलझते थे और हर राग एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार निराशा हुई, लेकिन पिता का विश्वास, माँ का सपना और भीतर की पुकार, तीनों मिलकर उन्हें हर बार रियाज की चौकी पर वापस बैठा देते।
1: शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया और अपने चिंतन तथा प्रयोगों से इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की थी, जिससे शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णता सक्षम वाद्य बन गया। शिव कुमार शर्मा जी को ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि की शिक्षा भी मिली थी। श्रोताओं, बचपन की गलियों से निकलकर शिव कुमार अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। माता पिता अब केवल जीवन देने वाले नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे, जिनकी आंखों में आशीर्वाद था और जिनके मौन में प्रार्थना बसती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। स्वरों की उड़ान किसी और, बड़े आकाश की मांग करने लगी थी। भीतर कहीं एहसास गहराने लगा था कि अब केवल सीखा हुआ दोहराने का समय नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने का समय आ गया है। इसी परिवर्तन की पुकार में नई राह खोजने की आस लेकर शिव कुमार ने अपने संतूर को साक्षी बनाया और बंबई की ओर कदम बढ़ा दिए। ये केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, ये समय के साथ चलने का साहस था, जहां भविष्य इंतजार में नहीं परीक्षा में मिला करता है और जहां हर कलाकार को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है।
0: 1955 में जब शिव कुमार शर्मा पहली बार मुंबई पहुंचे तो ये यात्रा उतनी उजली नहीं थी जितनी बाद में इतिहास में दिखाई देती है। उस समय बंबई केवल अवसरों का शहर नहीं था, वो नए कलाकारों के लिए एक कठोर कसौटी थी, जहां हर दिन कोई ना कोई सपना टूटता था और कोई जिद जन्म लेती थी। शिव कुमार अपने संतूर के साथ इस शहर में आए, लेकिन शहर ने उन्हें तुरंत अपनाया नहीं। कुछ मंच मिले, कुछ लोगों ने सुना, पर स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आशा लेकर वो आए थे। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन पहचान नहीं थी। धीरे धीरे निराशा ने भी दस्तक दी और कुछ समय बाद मन और हालात दोनों थक गए। वे लौट आए जम्मू, खाली हाथ नहीं, लेकिन भारी मन के साथ।
1: घर लौटने पर पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने बेटे के चेहरे पर वो चुप्पी देखी जो हार की नहीं उलझन की होती है। पिता ने व्यावहारिक स्वर में कहा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, रेडियो में नौकरी कर लो, संगीत भी रहेगा और जीवन भी संभल जाएगा। ये सलाह अनुभव से उपजी थी, डर से नहीं, लेकिन शिव कुमार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा, संगीत अगर करूंगा तो अपने दम पर, मैं फिर बंबई जाऊंगा और मेहनत करूंगा। उस क्षण पिता समझ गए कि यह जिद नहीं है, स्वभाव है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, केवल आशीर्वाद दिया जाता है।
0: दूसरी बार बंबई जाना पहले से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन भीतर कहीं अधिक स्पष्टता थी। अब वे कलाकार नहीं थे, साधक थे। इस दूसरी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से, भारतीय सिनेमा के उस स्तंभ से जिसकी दृष्टि संगीत को केवल सजावट नहीं आत्मा मानती थी। वी शांताराम ने शिव कुमार के संतूर में कुछ अलग सुना। उन्होंने उन्हें अपनी प्रसिद्ध झनक झनक बाजे पायलिया फिल्म से जुड़े संगीतकार वसंत देसाई के पास भेजा। वसंत देसाई ने उनसे कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक छोटा सा संगीत टुकड़ा बना कर दिखाइए।
1: और यही वो छोटा सा अवसर, वही क्षण शिव कुमार शर्मा के बंबई के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बन गया। संतूर, जो अब तक शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह तलाश रहा था, पहली बार सिनेमा की दुनिया में धीरे से प्रवेश कर रहा था। ये शुरुआत थी शोर से नहीं, सौम्यता से। यहीं से वो यात्रा चली जो आगे चलकर शिव हरि जैसी ऐतिहासिक जुगलबंदी तक पहुंची और सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के अमर संगीत में ढल गई।
0: संघर्ष की राग रात्रि बीत चुकी थी। साधना ने जब स्थिर सुर को थामा, तब जीवन के तानपुरे पर मंगल बेला की पहली तान फूटी। 1966 में शिव कुमार शर्मा के जीवन में स्थिरता का एक मधुर अध्याय जुड़ा। उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक कलाकार और उसकी साधना के बीच बनी गहरी समझ का संबंध था। कलाकार का पहला प्रेम उसका संगीत होता है, और मनोरमा जी ने इस सत्य को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाया जहां समय रियाज का होता है और प्रतीक्षा प्रेम की भाषा बोलती है। इस दाम्पत्य में शब्द कम थे, पर भरोसा गहरा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। पुत्र राहुल और रोहित का आगमन हुआ। उनके पुत्रों रोहित और राहुल ने पिता की साधना को बहुत पास से देखा, पर मंच और संतूर की पुकार राहुल शर्मा के भीतर सबसे गहरी उतर गई। पिता ने बेटे पर संगीत थोपा नहीं, बस उसे सुरों के पास बैठने दिया, और वहीं बैठना, वही सुनना एक दिन संतूर बन गया। राहुल में शिव कुमार शर्मा ने उसी संगीत लौ की झलक देखी जो कभी उनके भीतर जली थी।
1: आगे चलकर शिव कुमार शर्मा ने अपने पुत्र राहुल शर्मा को अपना शिष्य बनाया और संतूर वादन में पारंगत किया, और संतूर की साधना पिता से पुत्र तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। जिस दिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने पहली बार राहुल के साथ मंच साझा किया, वो क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक लम्हा था। श्रोताओं को शायद एक जुगलबंदी सुनाई दी, पर पिता के हृदय में वो पल था जब गुरु और पिता दोनों एक साथ खड़े थे, पर आंखें नम थीं।
0: जब समय आगे बढ़ चुका था, संतूर को पहचान मिल चुकी थी, तब जीवन ने पंडित शिव कुमार शर्मा को वो सुख दिया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, अपने ही सुरों को अगली पीढ़ी में जीवित देखना। पिता और पुत्र की ये जोड़ी वर्ष 1996 से साथ साथ संतूर वादन में जुगलबंदी करते आ रहे हैं। रोहित मंच पर नियमित रूप से संतूर वादन में नहीं आए, पर परिवार की नींव, सहारा और मौन शक्ति बनकर साथ रहे।
1: श्रोताओं, संगीत की दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर परिवार के लिए समय बहुत कम। यात्राएं, रियाज, मंच, इन सब के बीच परिवार के लिए कुछ पल चुराने पड़ते थे। फिर भी जब वे घर में होते तो पूरी तरह घर के होते। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बातें, पत्नी का मौन सहयोग, यही उनका विश्राम था। उनका परिवार उनके संगीत की वो तान था जो मंच पर नहीं बजती, पर भीतर गूंजती रहती है।
0: दोस्तों, अब हम उनके बंबई यानी कि फिल्मी दुनिया के सफर पर वापस लौटते हैं। आइए चलते हैं वापस बंबई। वी शांताराम जी के साथ काम करने के बाद असल में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत सफर आगे बढ़ता है। शिव और हरि मिलते हैं, इतिहास रचते हैं। मुंबई में जीवन कभी सरल नहीं रहा। ये शहर सपनों को बुलाता भी है और उन्हें कठोरता से परखता भी है। इसी भीड़ में, इसी शोर के बीच एक दिन शिव कुमार शर्मा की भेंट हुई पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दो साधकों का मिलन था। शब्द कम थे, मौन अधिक। संतूर और बांसुरी जब पहली बार आमने सामने आए तो किसी ने मंच के किनारे फुसफुसा कर कहा, ये संगीत नहीं, संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं, सांसें बोलती हैं। यहीं से जन्म हुआ 1967 में उस ऐतिहासिक यात्रा का, जिसे दुनिया ने कॉल ऑफ द वैली के नाम से जाना।
1: शिव हरि की जोड़ी और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की संगत से एल्बम कॉल ऑफ वैली बनाया, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। कश्मीर की घाटियों की स्मृति, पहाड़ों की नीरवता और साधना की सुगंध सब एक ही एल्बम में उतर आए। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मील का पत्थर बन गया।
0: समय के साथ ये आत्मिक जुगलबंदी मंचों से निकलकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंची। जब यश चोपड़ा जैसे संवेदनशील निर्देशक ने शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया के संगीत पर भरोसा किया, तब फिल्म संगीत की भाषा ही बदलने लगी। सिलसिला में देखा एक ख्वाब, ये कहां आ गए हम, चांदनी में चांदनी ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की, लम्हे में मोहे छेड़ो ना, यादें याद आती हैं। इन गीतों में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो स्वयं कथा बन गया। प्रेम, विरह, स्मृति और मौन सब कुछ सुरों में बहने लगा। 1980 और 1990 का दशक आते आते शिवहरि केवल संगीतकारों की जोड़ी नहीं रहे, वे एक एहसास बन चुके थे जिसे सुना नहीं जिया जाता था।
1: जी हाँ, कॉल ऑफ द वैली और इसके बाद फिल्मी सफर पर तो हमने खूब बातें की, लेकिन शिव कुमार शर्मा की संगीत यात्रा केवल मंचों और सम्मानों तक सीमित नहीं रही। उसका सबसे स्थायी रूप उनके एल्बम्स में दर्ज हुआ, जहां समय थमकर सुरों में खो जाता है। हर एल्बम उनके जीवन की किसी न किसी साधनात्मक अवस्था का दस्तावेज है, उस आत्मविश्वास का प्रमाण जिसमें संतूर अकेले मंच पर खड़ा हो सका।
0: आगे के वर्षों में उनके एल्बम और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। 1982 में जाकिर हुसैन के साथ वैन टाइम स्टूड स्टिल जैसे प्रयोगों ने ताल और सुर के बीच गहरे संवाद को जन्म दिया। 1987 में राग मधुवंती और राग मिश्र तिलंग जाकिर हुसैन जी के साथ तथा 1988 में सम्मोहक सिंतूर तथा 1988 में सम्मोहक संतूर, इन कृतियों में संतूर केवल वाद्य नहीं एक गायक सा प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के और म्यूजिक एल्बम को साझा कर रहे हैं।
1: When Time Stood Still, Live in Bombay, 1982, The Glory of Strings, संतूर, 1991, राग भोपाली वॉल्यूम 1, 1993, राग केदार वॉल्यूम 2, 1993, A Homage to the Rain Gods, 1993, 100 Strings of संतूर, 1994, Hypnotic संतूर 1994, The Pioneer of संतूर 1994, राग बिलास खानी तोड़ी 1994, World Network Series Volume 1, India, राग पूरिया कल्याण with जाकिर हुसैन 1995, संतूर राग बागेश्री 1998, संप्रदाय 1999, रसधारा with हरि प्रसाद चौरसिया 1999, The Valley Recalls Volume 2, हरि प्रसाद चौरसिया जी के साथ सन 2000, आनंद ब्लिस विद जाकिर हुसैन 2002, वाइब्रेंट म्यूजिक फॉर रेकी 2003, सिंपैटिको राग चारुकेशी 2004, दी इनर पाथ कीरवानी 2004, एसेंशियल इवनिंग चैंट्स 2007, अ मॉर्निंग रागा गुजरी तोड़ी 2010, शिव कुमार शर्मा मैस्ट्रोस चॉइस सीरीज 2 2011 और संगीत सरताज 2011।
0: 1993 और 94 के एल्बम उनके संगीत के आध्यात्मिक और प्रकृति संवेदी पक्ष को उजागर करते हैं। उनका संगीत ऋतुओं, भावों और अनुभूतियों से गहराई से जुड़ा था। ध्वनि परिदृश्य, पहाड़ों का संगीत, संतूर की 100 लड़ियां, राग बिलास खानी तोड़ी और एक सुबह का राग गुजरी तोड़ी, इन रचनाओं में पहाड़, प्रातःकाल और मौन स्वयं बोलने लगते हैं।
1: 1996 में हरि प्रसाद चौरसिया के साथ आया घाटी की यादें और द वैली रिकॉल्स उस जुगलबंदी की परिपक्व स्मृति थे जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। 1999 की मैस्ट्रो की पसंद श्रृंखला 2, संप्रदाय और रसधारा में उनकी साधना और अधिक संतुलित, अधिक गहन दिखाई देती है। 2001 में बॉम्बे में शनिवार की रात जैसे प्रयोगात्मक एल्बम में जॉन मैकगिलन और जाकिर हुसैन, तो 2002 में आनंद ब्लिस और समय का प्रवाह ने संगीत को ध्यान और उपचार से जोड़ दिया।
0: 2003 से 2007 तक के एल्बम रेकी के लिए जीवंत संगीत, सिंपैटिको आंतरिक पथ और हरि प्रसाद चौरसिया के साथ आवश्यक संध्या मंत्र इस बात के साक्ष्य है कि शिव कुमार शर्मा के लिए संगीत जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना ही बना रहा। उनके एल्बम किसी कालखंड की सूची नहीं बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर रचना सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वयं शिव कुमार शर्मा का संतूर।
1: श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा को देश विदेश में उनके अद्वितीय संगीत योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता मिलना इस बात का प्रमाण था कि उनका संतूर केवल भारत ही नहीं विश्व की आत्मा को भी छू रहा था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और फिर पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी साधना, नवाचार और परंपरा के प्रति समर्पण की औपचारिक स्वीकृति थे। फिल्म संगीत में भी उनकी जोड़ी शिवहरी ने इतिहास रचा। कॉल ऑफ द वैली और सिलसिला के संगीत को प्लैटिनम डिस्क, फासले को गोल्ड डिस्क, चांदनी को प्लैटिनम डिस्क मिली। लम्हे और डर के लिए उत्कृष्ट संगीत और रिकॉर्ड बिक्री हेतु उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। 1967 में आया मेस्ट्रोस चॉइस सीरीज 1 उनके शास्त्रीय वैभव का सशक्त प्रमाण बना, जहां संतूर, समय और साधना एक ही स्वर में गूंजते हैं।
0: शिव कुमार शर्मा ने संतूर को केवल तकनीकी रूप से नहीं भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नया आयाम दिया। 1960 के दशक से वे संतूर की ध्वनि को ध्यान और अंतर्मुखता से जोड़ने लगे थे। उनकी वादन शैली में एक स्थिरता, एक ठहराव था जिसमें सुनने वाला स्वयं को भूलकर स्वयं के भीतर उतर जाता था। यही कारण था कि उनके संतूर को लोग केवल सुनते नहीं थे, अनुभव करते थे। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि उनका संगीत मन को शांत करता है, भीतर एक अजीब सी उजास भर देता है, जैसे कोई मौन ध्यान साकार हो उठा। उनकी प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुकी थी। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उनके शिष्यों और श्रोताओं का विस्तार था। विश्व के विभिन्न देशों से युवा कलाकार उनके पास संतूर सीखने आते थे, केवल तकनीक के लिए नहीं बल्कि उस दृष्टि के लिए जिससे संगीत साधना बन जाता है। उनके लिए संतूर 100 तारों का वाद्य नहीं, 100 भावनाओं की साधना था।
1: श्रोताओं, कश्मीर की जिन वादियों में कभी संतूर की पहली झनकार गूंजी थी, वहीं से निकली वो आत्मा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे शाम की हवा खुद को अंधेरे में सौंप देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दुनिया कोविड के कठिन समय से गुजर रही थी, पंडित शिव कुमार शर्मा भी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण वे डायलिसिस पर थे, पर मन अब भी संगीत से बंधा हुआ था। शरीर थक रहा था पर साधना नहीं। 10 मई 2022 की सुबह एक हृदयाघात के साथ उनकी जीवन तान शांत हो गई। चौरासी वर्ष की आयु में मुंबई के उसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कभी सपनों की गठरी लेकर भी आए थे। अंतिम दिनों में पत्नी मनोरमा और पुत्र राहुल उनके साथ छाया की तरह रहे। संतूर अब भी परिवार की धड़कन था।
0: उनके जाने की खबर के साथ ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अमजद अली खान ने इसे एक युग का अंत कहा। कलाकारों, श्रोताओं और साधकों को लगा जैसे किसी ने भारतीय संगीत की आत्मा का एक कोना मौन कर दिया। पूर्ण राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, गरिमा, सादगी और कृतज्ञता के बीच।
1: शिव कुमार शर्मा के हाथों में संतूर केवल वाद्य नहीं रहा, वो स्मृति बना, साधना बना और समय की ध्वनि बन गया। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ मिलकर उसने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा का नया दर्पण दिया। वो केवल एक महान कलाकार नहीं थे, वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की वो तान थे जो धीमे धीमे बजती है लेकिन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। सच्चे अर्थों में वे भारत की संगीत आत्मा की एक अनमोल धरोहर थे।
0: पंडित शिव कुमार शर्मा का जीवन सपना संतूर को लोक की सीमाओं से उठाकर शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पूर्ण हुआ। उन्होंने कभी ऊंचाइयों की घोषणा नहीं की, केवल साधना की, और वही साधना आज भी जीवित है। संतूर की हर तार में, हर झनकार में उनका समय, उनका तप और उनका मौन बोलता है।
1: और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ऐसा लगता है कश्मीर की वादियां अब भी बहुत धीमे स्वर में कह रही हैं, ये राग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो अनंत में प्रवेश है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्ला कल्लोलिनी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा,
0: और मैं वर्षा सिंह।
1: मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन था दीपक नेमा का। अपने कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में फिर किसी ऐसे ही कला साधक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा शरीर अपने आप को सक्रिय रखने में अनेक गतिविधियां करता रहता है। शैशव अवस्था से बाल अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चा स्वयं से ही अनेक खेलों से जुड़ जाता है, जिसमें खो खो, दौड़ भाग, छुपन छुपाई जैसे खेल हमें शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखते थे। वहीं राजा, मंत्री, चोर, सिपाही या पहेली बूझना, वर्ग पहेली सुलझाना, लूडो जैसे गेम हमारे दिमाग को तेज रखते थे। वास्तव में खेलों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि स्वस्थ और सफल जीवन की नींव है। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को नीरस होने से बचाते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष 7 मई का दिन हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है आज के दिन का, इसी विषय पर गहनता से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री एस के प्रसाद, जो मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं एस के प्रसाद, मुख्य प्रशिक्षक एथलेटिक्स अकादमी भोपाल।
1: सर, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं?
2: विश्व एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को बच्चों और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें खेलों विशेषकर एथलेटिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: सर, एथलीट शब्द होता है एक और एक होता है एथलेटिक्स, तो यहाँ दोनों शब्दों को हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें आप परिभाषित करेंगे।
2: मैं एथलीट और एथलेटिक्स दोनों ही शब्द शारीरिक खेल और क्षमता से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक एक करके सूक्ष्म अंतर है।
1: जी,
2: एथलीट उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक शक्ति, गति, सहन शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों या प्रतियोगिता में भाग लेता है।
1: जी,
2: जैसे एथलीट, बॉक्सर, स्विमर, कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति खेल में हिस्सा ले रहा है वो एक एथलीट है। एथलेटिक्स उन खेलों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना शामिल है।
1: जी, जी।
2: इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड।
1: जी जी।
2: ट्रैक में जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स हैं, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस, और फील्ड में थ्रोज हैं, जंप्स हैं। थ्रोज में भी शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, हैमर, जंप्स में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट इत्यादि वगैरह वगैरह ऐसा है।
1: सर, हमारा ध्यान अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों पर तो जाता है, तो इन खेलों से कैसे अलग होता है एथलेटिक्स का खेल, जो जिसमें आपने अभी इतने सारे हमें नाम बताए, तो कैसे इनसे हम अलग समझें इस चीज को?
2: मैम, एथलेटिक्स जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित है।
1: जी जी।
2: जबकि अन्य खेल टीम वर्क या आमने सामने मुकाबले पर। संक्षेप में, एथलेटिक मानव शरीर का मूल शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण है, जबकि अन्य खेल रणनीतिक खेल है।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छे सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को बताया है कि जो अन्य खेल है वो सामूहिक खेल है, समूह में खेले जाते हैं, और एथलेटिक्स जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन का एक तरीका है। सर, अलग अलग खेल है जैसे कुश्ती, स्प्रिंग, हॉकी, क्रिकेट, इन्हें आपस में आप कैसे समझाएंगे कि किस तरह से ये खेल अलग अलग है और इनका क्या महत्व है?
2: मैम, ये सभी खेल शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, नियम, आवश्यक शारीरिक क्षमताएं एकदम अलग होती हैं। कुश्ती एक कॉम्बैट या द्वंद खेल है, जिसमें एक दूसरे के शारीरिक संपर्क बनते हैं और एक दूसरे को पटकना चाहते हैं।
1: जी जी।
2: स्प्रिंट यह ट्रैक एंड फील्ड का एक खेल है, जिसमें इंडिविजुअल खुद ज्यादा डिस्टेंस को कम समय में पूरा करने की कोशिश करता है। हॉकी ये आउटडोर या इंडोर खेल है जो स्टिक और गेंद से खेला जाता है।
1: जी जी।
2: क्रिकेट ये बल्ले और गेंद से खेला जाता है। 11 खिलाड़ियों की दो टीमें पिच पर खेलती हैं। यह रणनीतिक खेल है जो हॉकी की तुलना में अधिक समय तक चलता है। संक्षेप में कहें तो कुश्ती शरीर की ताकत, स्प्रिंट गति, हॉकी टीमवर्क और गति, क्रिकेट रणनीति और तकनीक का मिश्रण है जो समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।
1: सर, हम अपने बचपन में जाएं और पीछे मुड़कर अतीत के झरोखों में देखें तो स्कूलों में अक्सर शनिवार के दिन गेम्स पीरियड होता था और उसमें बच्चों को अलग अलग तरह की खेल गतिविधियों से जोड़ा जाता था, जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है, तो ये भविष्य में बच्चे के लिए कैसे काम आ सकते हैं?
2: मैम, ये बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क, अनुशासन जैसे कौशल विकसित करती है जो भविष्य में स्वास्थ्य जीवन शैली, तनाव प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
1: जी।
2: ये गतिविधियों बच्चों को जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।
1: अच्छा, कौन कौन से खेलों को हम एथलेटिक्स में रखेंगे?
2: एथलेटिक्स में मुख्य रूप से दौड़, कूद, फेंकना, पैदल चाल से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं जिन्हें ट्रैक एंड फील्ड के रूप में भी जाना जाता है। स्प्रिंट, इसमें 100, 200, 400 हर्डल्स आते हैं। मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस 5000 मीटर, 10000 मीटर, मैराथन, रिले 4x200, 4x400 और आजकल एक नया इवेंट जुड़ गया मिक्स रिले 4x400, 4x400। फील्ड इवेंट में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वोल्ट। कंबाइंड इवेंट में महिलाओं के लिए हेप्टाथलन और पुरुषों के लिए डेकाथलन होते हैं। थ्रोज इवेंट में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो, इस तरह से इतने इवेंट इसमें कराए जाते हैं।
1: सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत के जो एथलीट्स हैं उनकी क्या भूमिका है इन खेलों में?
2: मैम, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की भूमिका तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अभी आई है।
1: जी जी।
2: जिसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने किया है। 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2023 में विश्व एथलेटिक्स में सफलता के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
1: जी जी।
2: जबकि एशियन गेम्स में भारत का हमेशा से दबदबा रहा है।
1: ये तो बहुत गौरव की बात है हम सभी के लिए। अच्छा सर, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की क्या भूमिका है अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या पूरे भारत में किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं?
2: मध्य प्रदेश अभी देश के टॉप राज्यों में से एक है।
1: जी।
2: और हम आपके माध्यम से अपने सरकार को, अपने संचालनालय डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और जो हमारी टीम है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बनाई है कि हमारे पास आज हमारे जो बच्चे हैं, पहले नेशनल मेडल नहीं आता था।
1: जी जी।
2: अब हम बच्चों में सोच इतना बदला है कि जो अब 5 नेशनल रिकॉर्ड हमारे नाम से है।
1: क्या बात है।
2: हमारे एकेडमी के बच्चों के नाम से 5 नेशनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश अभी स्टैंड कर रहा है।
1: जी जी।
2: पिछले इसी मंथ में पोल वॉल्ट में कुलदीप कुमार ने अपने ही एकेडमी के बच्चे का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। अंडर 16 वायु वर्ग में महिलाओं में बुशरा खान ने 2000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड है।
1: जी।
2: अंडर 20 गर्ल्स में 3000 में स्टीपल चेज में एकता डे नेशनल रिकॉर्ड है। अभी 5000 मीटर रेस वॉक में अभी इसी मंथ में रंजना यादव ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया।
1: जी।
2: इस तरह से हमारे कई नेशनल रिकॉर्ड अपने मध्य प्रदेश के नाम से हैं और अभी कई खेलों में, अभी हॉकी में अभी उपविजेता बनी है।
1: जी।
2: विवेक सागर प्रसाद हॉकी में ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडल जीतकर आए थे।
1: जी जी।
2: तो अभी हमारा खेलों में बहुत टॉप में चल रहा है।
1: जी जी।
2: और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि हम भारत के शीर्ष राज्यों में से सबसे आगे रहेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल। और हम भी ऐसी कामना करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं हमारे खिलाड़ियों को कि वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं, अपना तिरंगे का मान बढ़ाएं। अच्छा सर, अब बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा है वो एथलीट बनना चाहता है तो उसे किस उम्र से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि वो इन खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है?
2: एथलीट बनने के लिए बच्चों को 7-8 वर्ष की आयु से विभिन्न खेल के माध्यम से बेसिक मोटर क्वालिटी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें उसी टाइम में शुरू करना चाहिए।
1: जी जी।
2: लेकिन उस पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है।
1: जी जी।
2: थोड़ा सा भी अगर हम उनको ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे तो उनको ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा।
1: जी जी।
2: 8 से 12 वर्ष को मोटर लर्निंग का स्वर्ण युग माना जाता है जहाँ कौशल विकास तेजी से होता है।
1: जी।
2: प्रोफेशनल या विशिष्ट खेल प्रशिक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु उपयुक्त है, लेकिन इसमें मोटर क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और विशेषकर हमें खाने पीने में, ट्रेनिंग में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती इनके फ्यूचर को रोक सकता है।
1: जी जी।
2: इन खेलों गतिविधियों में स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब, जिले, स्कूल की टीम जैसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि वे जीतने के बजाय खेल का आनंद लें और शारीरिक शिक्षा के कक्षाओं में भाग लेकर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सहभागिता जरूरी होती है। जीत हार तो बाद की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज का हिस्सा बने।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बहुत सारी चीजें भी आप अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं।
2: जी हाँ
1: बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरे अन्य खेलों में बच्चों को करियर फिर भी समझ में आता है, जैसे हम जनरल बात करें क्रिकेट में समझ में आता है कि भाई लोग विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, लेकिन एक एथलीट का करियर कैसा हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताइए।
2: मैम, एक एथलीट का करियर शारीरिक क्षमता पर आधारित होता है
1: जी,
2: जो आमतौर पर 30-40 वर्ष की आयु तक चलता है। करियर के बाद भी वो पूर्व खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, रेफरी, खेल पत्रकार, स्पोर्ट्स मैनेजर, पोषण विशेषज्ञ या कमेंटेटर के रूप में सुनहरे भविष्य को की संभावना तलाश कर सकते हैं।
1: जी जी।
2: शिक्षा के साथ साथ खेल को जारी रखना सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा सर, भारत में एथलेटिक्स का लेवल पिछले 5-10 सालों में कैसा बदला है, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से नीरज चोपड़ा जी का नाम हमने सुना और उनके खेल के बारे में जाना और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो नीरज चोपड़ा हाईलाइट हुए।
2: इसके बाद नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद ना हमारे खिलाड़ियों में सोच का स्तर बदल गया।
1: जी जी बिल्कुल।
2: पहले जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे तो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ये सोच था, नीरज के गोल्ड जीतने के बाद अब हमारे खिलाड़ी जीतने के लिए सोचते हैं कि हम कौन सा मेडल जीतेंगे। और नीरज के बाद देखिए गुलबीर सिंह, पारुल चौधरी
1: जी,
2: कार्तिक, अविनाश सावले, कई ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत के
1: जी जी
2: नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया है और अभी आने वाले एशियन गेम्स में हम लगता है कि टॉप 2 में रहेंगे।
1: जी जी क्या बात है। तो पिछले 5-10 सालों में कैसा बदलाव आप महसूस करते हैं?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है।
1: जी जी।
2: और ये आगे जाएंगे मैम, आगे जाएंगे।
1: सर, स्कूली लेवल पर बच्चों को एथलेटिक्स में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
2: स्कूली स्तर पर बच्चों को एथलेटिक्स, दौड़ कूद फेंक में लाने के लिए खेल को मजेदार, समावेशी और बुनियादी बनाना सबसे जरूरी है। इसके लिए अभी हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किड एथलेटिक्स का एक स्कीम चालू किया है
1: जी।
2: उसके माध्यम से उसके कार्यक्रम में उपयोग करें जो 4-14 वर्ष के बच्चों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं
1: जी,
2: उनके
1: जी।
2: बच्चों के लिए ये टीम आधारित गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा को मनोरंजक बना के उनको सिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और बच्चों के साथ तो एक अलग ही लेवल पर उनको सिखाना होता है क्योंकि हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो काफी कठिन लगती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक मनोरंजक स्तर पर बच्चों को हमें जोड़ना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। अच्छा सर, खिलाड़ी के लिए खानपान बेहद ज़रूरी होता है और एक अच्छा आहार बहुत ज़रूरी होता है, तो डाइट की बात अगर हम करें तो मेंटल हेल्थ एक एथलीट के प्रदर्शन में कितना रोल निभाती है और शरीर को कितना फिट होना चाहिए?
2: डाइट और पोषण का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। एक एथलीट प्रदर्शन में यह 80-90% तक भूमिका निभा सकता है।
1: जी जी।
2: उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक अस्थिरता का होना बहुत जरूरी है जो संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है।
1: जी।
2: शरीर के फिटनेस खेल के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये एक एथलीट को लीन होना चाहिए, मतलब कम चर्बी अधिक मांसपेशी वाला होना चाहिए।
1: जी जी।
2: एक एथलीट के लिए बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत एक दूसरे से जुड़ा है। सही डाइट न केवल मांसपेशियों को ऊर्जा देती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में उसको मदद मिलती है।
1: सर, खानपान का बड़ा योगदान होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या भोजन शामिल होना ही चाहिए और एक संपूर्ण संतुलित भोजन क्या होना चाहिए?
2: देखिए मैम, खिलाड़ी को जब मेहनत करते हैं तो हमें हमारे डाइट बैलेंस होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: तो हम जानना चाहेंगे बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट में जितने कंटेंट होते हैं वो कंटेंट होना चाहिए। तो अगला प्रश्न आएगा कंटेंट क्या क्या होने चाहिए।
1: जी जी।
2: तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
1: जी,
2: फैट, वसा, मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं।
1: जी जी।
2: अब अगला प्रश्न श्रोता जानना चाहेंगे कि कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 1.75 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए।
1: जी जी।
2: फैट 1 ग्राम 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 6 to 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। अब श्रोता अपना खाने में खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा खाना सही है अथवा इसमें कमी है।
1: जी जी।
2: दूसरा, अगर हम इसको नेचुरोपैथी के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: जी जी।
2: जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों को मिलकर बना है।
1: जी।
2: पृथ्वी तत्व, जल तत्व,
1: जी,
2: अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व।
1: जी जी।
2: इसके डाइट भी सब अलग अलग है।
1: जी।
2: जैसे पृथ्वी तत्व में अनाज दालें, जल तत्व में सब्जी, अग्नि तत्व में फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फल फूल आगे।
1: जी जी।
2: और वायु तत्व में जितने पत्तियां आती है ना वो आते हैं।
1: जी।
2: और आकाश तत्व है उपवास, खाली स्थान।
1: अच्छा।
2: तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें जनरली जो नेचुरोपैथी में सिखाया गया है कि इंसान को 24 घंटे के अंदर में 14 घंटा उपवास करना चाहिए।
1: जी जी।
2: तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। ये हमें स्पोर्ट्समैन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन जनरल व्यक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। और जब पहला ब्रेकफास्ट करते हैं उसका है फास्ट को ब्रेक करना।
1: जी जी।
2: तो पहला हम पत्तियों का जूस से चालू करें तो ये बहुत शरीर के लिए लाभदायक होगा। उसके बाद आप जल तत्व ले लें, सब्जियों में कच्चा आहार जैसे हम सलाद ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, इसको काट के थोड़ा ले लें, थोड़ा देर के बाद फल लें। ये लेने से नेगेटिव चीज हमारे शरीर में नहीं आएंगे और डिटॉक्स होंगे, जितने भी विजातीय तत्व हैं वो बॉडी से निकलेंगे।
1: जी जी।
2: और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब हम एथलीट को देखते हैं तो मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए मैं बोलता हूँ, उसमें बीटरूट जूस है
1: जी,
2: उसमें नाइट्रेट है, नाइट्रेट लोडिंग है
1: जी,
2: वो हमारे रेड ब्लड सेल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है।
1: जी जी।
2: उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, तो जो सांस लेने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली जब हम यहाँ थक रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके थकेंगे, तो ये हमारा प्रदर्शन में सुधार होगा। इस प्रकार हम अगर ऐसे करें तो हमें प्रदर्शन में और अच्छा सुधार कर सकते हैं।
1: सर, किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए बच्चे की खुद की तैयारी कितनी जरूरी होती है, जैसे एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है या डेली रूटीन, किस तरह से उसे अपनी तैयारी रखना चाहिए या बदलाव करने चाहिए, आप किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं?
2: किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए खुद की तैयारी, शारीरिक एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और मानसिक दोनों बेहद जरूरी है, जिसे 100% महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
1: जी।
2: यह केवल खेलने के बारे में ही नहीं बल्कि प्रदर्शन, सुरक्षा और दीर्घकालिक विकास के बारे में भी है। तैयारी सिर्फ खेल के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज की प्रतिभा है। अच्छी तैयारी आपको एक साधारण खिलाड़ी से उत्कृष्ट खिलाड़ी बना सकती है और लंबे समय तक खेलों में बनाए रखती है।
1: सर, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं बच्चों को?
2: प्लान होता है उसका
1: कि
2: हम इसको किस स्तर का, किस कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। हमारे साथ पूरा टीम है, उसका जब प्लान कर लेते हैं तो इसका कितना रिकवरी चाहिए, हमारे रिकवरी एक्सपर्ट हैं, इस रिकवरी के साथ इसको कैसा डाइट चाहिए, हमारे साथ डाइटिशियन है, वो पूरा प्लान करती हैं, कहाँ पे इसको क्या जरूरत है, प्लान के हिसाब से करते हैं और हमारे लड़के करीब करीब अपने टारगेट को अचीव करते हैं।
1: जी जी। अच्छा सर, जैसे उम्र की बात करें तो किस उम्र से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी में?
2: अकेडमी में मैम 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हम लोग, और जो बच्चे अच्छा करते हैं
1: जी जी।
2: उनको हम लोग डायरेक्ट भी एकेडमी में लेते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ और पूरा पारदर्शिता है कि किसी कोई नहीं कह सकता है, किसी और गेम में हो सकता है लेकिन एथलेटिक्स में इट्स नॉट पॉसिबल। जो अच्छा है वो अच्छा है।
1: जी जी। यानी उम्र भी महत्व रखती है।
2: बिल्कुल।
1: आपकी यहाँ पर जब बच्चा जुड़ता है खेलों से तो सर, युवाओं को फिटनेस और खेल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, याद रखिए, सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और लगन से हासिल होती है। असफलताएं से घबराएं नहीं बल्कि उससे प्रेरित होकर और दुगने उत्साह से आगे बढ़ें। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। याद रखिए, अवसर नहीं होते, आप उन्हें बनाते हैं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, अवसर होते नहीं, आप उन्हें बनाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री एस के प्रसाद, आप मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को और विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवा वर्ग को इतनी अच्छी जानकारी दी आज के दिन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से हमारे भोपाल शहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे खेलों को पूरे विश्व में बहुत आगे लेकर जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर। श्रोताओं इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। इसी के साथ अब कार्यक्रम के समापन की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 8 से 10 मई तक प्रणाम उदंत मार्तंड महोत्सव का आयोजन किया गया।

0: आइए चलते हैं एक बार फिर से इस महोत्सव में। इस महोत्सव में वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए।
1: तो फिर समझिए कि आगे आने वाले टाइम में चीजें कैसे बदलेंगी और आप कहां रुकेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस होना जरूरी है, और जिसने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पैदा कर लिया अपने अंदर, वो एआई टूल को डिक्टेट करेगा, नहीं तो वो डिक्टेट होगा। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हर उस चीज को समझना, उसके प्लस उसके माइनस। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं, उससे उसके साथ साथ चलना आपकी मजबूरी है, लेकिन मेहनत ये करनी है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप चल के उसको अपना असिस्टेंट बना के रखें, ना कि उसको अपना मास्टर बनाएं। करीबन 22 साल हो गए मुझे, मैंने शुरुआत टीवी से किया था, एक साल के बाद मैं डिजिटल में आ गया, 2003 से मैं डिजिटल में ही हूं। तो डिजिटल का ग्रोथ और मेरा ग्रोथ दोनों एक साथ चला है पैरेलल। तो वो प्रेशर को लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, और सिर्फ रूटीन काम करके आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। ग्रोथ करने के लिए आपको रूटीन काम के अलावा भी काम करना पड़ेगा अपने और समाज के लिए, तभी आप ग्रो करेंगे, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एक लास्ट बात कह के मैं बात खत्म करूंगा, वो ये कि जो मैं अपनी टीम में हमेशा बोलता हूं कि 5 साल

ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसी भी देश की संस्कृति उसके निवासियों के रक्त में बहने वाली वो जीवनधारा होती है जिससे विश्व मानचित्र में उस देश की पहचान होती है। प्राचीन काल से चले आ रहे जीवन मूल्य, संस्कार, परंपराएं उस देश के कण कण में समाहित होकर उसका मिजाज तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, उस पर लंबे समय तक राज करना हो, तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति पर चोट करनी चाहिए। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत आए और उसे गुलाम बनाना चाहा, तो भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। भारत पर शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाए। भारत की आजादी की लड़ाई में एक युद्ध अगर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, तो दूसरा युद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी समानांतर चलता रहा। इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा काशी, ज्ञान मंडल वाराणसी जैसे केंद्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के जाने अनजाने पक्षों और ज्ञान की धारा को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के महान उद्देश्य के साथ ही धर्मपाल जी आजीवन शोध करते रहे। शिवप्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल की मेधा पुष्पित पल्लवित हुई। भारत की पराधीनता को उन्होंने जितना अधिक महसूस किया, उतना ही अधिक भारतीय संस्कृति की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन उनके चिंतन का केंद्र थे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व। यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने पाली और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन कर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत और हिंदी के अनेक ग्रंथों का सांस्कृतिक अध्ययन किया तथा उनकी व्याख्या की। हमारे पौराणिक ग्रंथों और महाभारत के साथ साथ पाणिनि, कालिदास और वाणभट्ट आदि की रचनाएं, विद्यापति और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे रचनाकारों के ग्रंथरत्न उनके अवगाहन का विषय रहे। अपनी रचनाओं से उन्होंने भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाषा और साहित्य के सहारे भारतीय संस्कृति का अनुसंधान तथा पुनर्मूल्यांकन किया।

डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। माता पिता लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया पाणिनिकालीन भारतवर्ष, जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद यहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वो जानते थे कि बहुत सा प्राचीन भारतीय साहित्य और लिखित साक्ष्य आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जो कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उनका पढ़ा जाना आवश्यक है, लोगों तक उनकी पहुंच बनाना आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर अग्रवाल ने इन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनके सही अर्थों की विवेचना करते हुए आधुनिक हिंदी में लिखकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। इस तरह अपने ज्ञान और चिंतन से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बनाया और अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की, जिन्हें आज हिंदी साहित्य धरोहर की तरह संजोता है। उनके निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति आदि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु पर पौराणिक निबंध भी लिखे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वाणभट्ट के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत की संजीवनी व्याख्या भी की। इस तरह अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने समझाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी उद्देश्य से वो पूरे जीवन भारत माता के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करते रहे।

अपनी अनमोल कृतियों की बदौलत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य जगत में एक मनीषी, एक प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित हुए। ग्रंथ आधारित विवेचनात्मक अध्ययन की श्रृंखला में उन्होंने मेघदूत एक अध्ययन, कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता, भारत सावित्री, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की। इतिहास दर्शन और भारतीय धर्म मीमांसा जैसे निबंध संग्रहों के साथ ही उन्होंने अनेक किताबों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद एक सरसता है, लेकिन विषय के अनुरूप उनकी शैली गंभीर है। उनके लेखन में विचार, भाव, उद्धरण और व्याख्या का समावेश है। यही कारण है कि उनकी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली की स्थापना में भी डॉक्टर अग्रवाल का प्रमुख योगदान है। साहित्य साधना के साथ साथ उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वो मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय पुरातत्व विभाग तथा राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अग्रवाल जिस भी रूप में सक्रिय रहे, भारतीय संस्कृति और भारत गौरव उनके चिंतन में सदा प्राथमिकता में रहा। यही कारण है कि उनके लेखन में भारत की सनातन संस्कृति का गौरवशाली रूप व्यक्त हुआ है। वो जीवन पर्यंत लिखते रहे तथा कई ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन भी किया। 27 जुलाई सन 1967 को इस साहित्य पुरोधा ने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के एक अन्वेषी साहित्यकार के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। एक ऐसा साहित्य साधक जिसने सदा भारतीय संस्कृति की जय की कामना की, जिसने सदा भारत के विजय सूर्य के उदय की कामना की। नमन ऐसे महान देशभक्त और साहित्य मनीषी को।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की।

भारत में कहानियों का शायद ही कोई ऐसा पाठक हो जिसने मंटो का नाम न सुना हो। उर्दू के तो वो सबसे बड़े अफसाना निगार हैं ही, विश्व साहित्य में भी उन्हें चेखव के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कहानीकार माना जाता है। उनका जन्म 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव समराला में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई, लेकिन कुछ कारणों से पढ़ाई इंटर के आगे न हो सकी। उसके बाद रोजी रोटी के लिए वे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने सपनों की नगरी बंबई का रुख किया। यहां कई फिल्मों की कहानियां लिखी उन्होंने। देश के बंटवारे के बाद मंटो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। बस यहीं से मानो उनके दुर्दिनों की शुरुआत हो गई। आर्थिक परेशानियों ने उन्हें इस कदर घेरा कि बेतहाशा शराब पीना शुरू किया उन्होंने। पैसे की कमी, घरेलू समस्याएं और जिगर को गलाती शराब, मंटो ऐसे गिरे कि फिर उठ न सके। वो मनहूस तारीख थी 18 जनवरी सन 1955, जब मात्र 43 साल की उम्र में दुनिया से ये महान अफसाना निगार रुखसत हो गया। ये इत्तेफाक ही है कि जब लाहौर में उनका जनाजा उठ रहा था, तब उनकी लिखी हुई फिल्म मिर्जा गालिब दिल्ली में हाउसफुल जा रही थी। श्रोताओं, मंटो ने समाज की गंदगी और घिनौनेपन को

0: उनका भुरकस निकल गया, लेकिन उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। श्रोताओं, रोटी की चिंता सभी को सताती है, कलाकार को भी। कलाकार को ही क्यों, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बादशाह और यहां तक कि संत महात्मा और सन्यासियों को भी रोटी तो चाहिए। इसके बिना न तो ज्ञान टिकेगा और न ही ध्यान लगेगा। अपने प्रसिद्ध निबंध गेहूं बनाम गुलाब में राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि केवल गुलाब से ही काम नहीं चलने वाला, गेहूं भी चाहिए। मंटो जी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं, बिना रोटी के वे लिख नहीं सकते। मंटो ने कहा था,
1: मैं क्यों लिखता हूं, ये एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूं, लेकिन इस नजरे से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर लिखने में मुझे कोई नकदी नहीं खर्च करनी पड़ती। गहराई में जाने पर तो पता चलता है कि रुपए के बलबूते पर ही मैं लिखता हूं। अगर मुझे खाना पीना न मिले तो जाहिर है कि मेरे अंग इस हालत में न रहेंगे कि कलम पकड़ सके। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रतबा देते हैं, इसके झंडे सातवें आसमान में मिला देते हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं, हर श्रेष्ठ और महान चीज एक सूखी रोटी।

0: मंटो चाहते हैं कि औरतें मर्दों के जुल्म सिर झुकाकर स्वीकार न करें। आदर्श पत्नियों का तमगा उन्हें स्वीकार्य नहीं। वे तो कहते हैं कि औरतों को अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहिए, सारे हथकंडे अपनाने चाहिए। सुनिए उनके ही शब्दों में।
1: मेरे पड़ोस में कोई औरत अगर हर रोज अपने खाविंद से मार खाती है और फिर उसके जूते साफ करती है, तो मेरे दिल में उसके लिए जरा भर भी हमदर्दी नहीं पैदा होती। लेकिन मेरे पड़ोस में कोई औरत अपने खाविंद से लड़कर और खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चली जाती है और मैं खाविंद को 2 घंटे सख्त परेशानी की हालत में देखता हूँ, तो मुझे दोनों से एक अजीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है।
0: श्रोताओं, जैसे कि हमने चर्चा की, मंटो का वास्ता सामाजिक सच्चाइयों के सियाह रूप से काफी पड़ा है। उन्होंने उन पात्रों को बेहद करीब से देखा है जो सभ्य समाज की नजरों में निंदनीय हैं, घटिया हैं, तिरस्कृत हैं। उनके दुख दर्द को, उनकी चुनौतियों को, उनकी इच्छाओं और सपनों को और उनकी चिंताओं को, आशंकाओं को उन्होंने बखूबी महसूस किया है। शायद यही कारण है कि ऐसे पात्रों के प्रति उनके मन में एक स्वाभाविक सी सहानुभूति है और उनका चित्रण करने में ही वे अधिक तल्लीनता महसूस करते हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए।
1: चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसाने की हीरोइन हो नहीं सकती। नहीं, मेरी हीरोइन कोई वैश्या हो सकती है जो सोते में ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है।
0: श्रोताओं, तथा कथित नैतिकतावादियों के लिए ये विचार भले ही नाक भौं सिकोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि समाज सबको मिला के बनता है? हमें कोई अधिकार नहीं कि किसी को निंदनीय और घृणित कहकर गाली दें और समाज से उसे बहिष्कृत कर दें। मौर्य और गुप्त काल में ही हमारे समाज में उस वर्ग को मान्यता और सम्मान मिलता रहा है जिसकी वकालत मंटो करते हैं। विश्वास न हो तो चाणक्य का अर्थशास्त्र और शूद्रक का मृच्छकटिकम पढ़ लीजिए। श्रोताओं, मंटो का जीवन परिचय देते वक्त हमने बात की थी कि किस तरह पाकिस्तान जाना उनके लिए मुश्किलों की एक अंतहीन शुरुआत थी। उर्दू साहित्य में इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने के बावजूद वे उस देश में एक अच्छी जिंदगी न पा सके जिस देश को अपना समझकर वे अपनी जन्मभूमि छोड़ गए थे। वहां उन पर क्या गुजरी, ये उन्हीं के मुख से सुनते हैं।
1: मैं जानता हूं कि मेरी शख्सियत बड़ी है और उर्दू अदब में मेरा नाम है। अगर ये खुशफहमी न होती तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए, पर मेरे लिए ये एक तलख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपनी सही जगह ढूंढ नहीं पाया हूं। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है और मैं कभी पागलखाने तो कभी अस्पताल में रहता हूं।

0: सादत हसन मंटो ने अपार साहित्य लिखा है। उनकी पहली कहानी का नाम है तमाशा। इसका हीरो 6-7 साल का एक बच्चा है जिसने जलियांवाला बाग कांड को अपनी आंखों से देखा है। ये बच्चा कोई और नहीं, स्वयं मंटो हैं। आप हिसाब लगाकर देख लीजिए, मंटो का जन्म कब हुआ था? 11 मई सन 1912 को। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 को। यानी मंटो की उम्र उस समय 6 साल को पार करके 7वें साल में चल रही थी। आइए सुनते हैं मंटो की पहली कहानी तमाशा, जिसके रेडियो रूपांतर के लिए हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। लेकिन ऐसा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहानी की आत्मा ज्यों की त्यों रहे। दो तीन रोज से हवाई जहाज सियाह उबाकों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे कि वे किसी शिकार की तलाश में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब भयावह समा पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, आज किसी नामालूम खौफ की वजह से बिल्कुल सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। खालिद घर की खामोश और स्तब्ध फिजा में सहमा हुआ सा अपने वालिद से बातें कर रहा था।
1: अब्बा, अब मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते?
2: अरे बेटा, स्कूल जाके क्या करेगा, आज स्कूल की छुट्टी है।
1: पर मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं।
2: अरे वो बताना भूल गए होंगे बेटा, तू जाके खेल।
1: नहीं अब्बा, आज तो मैं आपसे कहानी सुनूंगा।
0: ये बातें हो ही रही थी कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सर पर से गुजर गए। खालिद बेतहाशा डर गया। वो हैरान था कि ये जहाज धूप में सारा दिन चक्कर क्यों काटते रहते हैं। अपने अब्बा से वो बोला,
1: अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त डर लगता है। आप इनके चलाने वालों से कह दे कि हमारे घर पे से ये ना गुजरा करे।
2: पागल हो गया क्या खालिद तू?
1: अब्बा, आप नहीं जानते, किसी दिन ये जहाज हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, अगर इन्होंने ऐसा किया ना, तो मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर लाके दी थी।
0: खालिद के अब्बा ने अपने लड़के की गैर मामूली हिम्मत पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल है, मैं उससे पूछूंगा कि वो घर पर ऐसी बातें क्यों करता है। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाने का अभ्यास करने लगा, ताकि जब हवाई जहाज वाले गोले फेंकें तो उसका निशाना चूक न जाए। इस दौरान जबकि एक नन्हा बच्चा अपनी बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत दे रहा था कि वो आगे से घर में इस किस्म की बात ना करे कि जिससे खालिद को दहशत हो। मामा और बीवी को इस किस्म की ताकीद करके अभी वो बड़े दरवाजे के बाहर जा ही रहा था कि खालिद एक भयानक खबर लाया। शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के वक्त एक आम जलसा करने वाले हैं। खालिद का अब्बा ये खबर सुनकर बहुत खौफजदा हो गया। खौफनाक हादसों के आसार अब उसे साफ नजर आने लगे। हादसा कैसा होगा, ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन पूरा शहर किसी नामालूम खौफ से लिपटा हुआ था। बाहर जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े बदल भी ना पाया था कि जहाजों का शोर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक सी आवाज में दर्द की शिद्दत से कराह रहे हैं। खालिद जहाजों की शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ाया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि जब वे गोला फेंकें तो अपनी हवाई बंदूक से वो उन्हें नीचे गिरा सके। उस वक्त इस 6 साला बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय के ऐसे भाव थे जो वीर सिपाही को भी शर्मिंदा कर रहे थे। ऐसा लगता था जो चीज इसे इतने अरसे से खौफजदा कर रही थी, उसे आज वो मिटा ही डालेगा। खालिद के देखते ही देखते एक जहाज से कुछ चीजें गिरी जो कागज की पतंगों की तरह हवा में उड़ने लगी। इनमें से कुछ खालिद की छत पर भी गिरी। खालिद भाग कर ऊपर गया और कागज उठाकर अपने वालिद के पास ले आया।
1: अब्बा जी, मामा तो सचमुच झूठ बोल रहे थे।
2: क्यों?
1: जहाज वालों ने तो गोलों की बजाय ये कागज फेंके हैं।
2: कागज फेंके? दिखाना बेटा क्या लिखा है इन कागज में।
0: खालिद के बाप ने वो कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे साफ तौर पर नजर आने लगी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को भी जलसा करने की इजाजत नहीं देता, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ जलसा किया गया तो अंजाम के जिम्मेदार स्वयं जनता होगी। अपने वालिद को हैरान देखकर खालिद ने पूछा,

0: अब्बा, इसमें ये तो नहीं लिखा है कि वे हमारे घर पर गोले फेंकेंगे।
1: खालिद बेटा, इस वक्त तुम जाओ, अपनी बंदूक से खेलो, जाओ।
0: मगर अब्बा, इसमें लिखा क्या है?
1: बेटा, इसमें लिखा है आज शाम को एक तमाशा होगा।
0: फिर तो हम चलेंगे ना तमाशे में।
1: क्या कहा?
0: इस तमाशे में आप मुझे नहीं ले चलेंगे?
1: अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा। अच्छा, ले चलेंगे, तुम जाकर के अपनी बंदूक से खेलो।
0: कहाँ खेलूं? बाजार आप जाने नहीं देते, मामा भी नहीं खेलते मेरे साथ, मेरा दोस्त भी आजकल नहीं आता, हम मैं किससे खेलूं? मगर शाम को तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना।

0: जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। देखता क्या है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि दुकानें बंद क्यों रहती हैं। उसने अपने नन्हे से दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। बहुत सोच विचार के बाद उसे लगा कि लोगों ने तमाशा देखने की खातिर दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसे ख्याल आया कि ये तो निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा, जिसकी खातिर तमाम बाजार बंद हैं। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चले। वक्त गुजरता गया, वो खूनी घड़ी करीब आती गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ सहन में चुप से बैठे हुए एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़तड़ की आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जुबान से मुश्किल से बस इतना ही निकल सका, गोली। खालिद की माँ डर की इंतहा से एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे गोली उसकी छाती में उतर रही है।
1: अब्बा, अब्बा चलो ना, तमाशा शुरू हो गया है।
2: कौन सा तमाशा बेटा?
1: अरे वही अब्बा, जिसका इश्तिहार सुबह से ही बट रहा है। अब तो खेल भी शुरू हो गया होगा, पटाखों की आवाज तभी तो आ रही है।
2: बेटा, अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। अब जाओ, मामा के साथ खेलो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो।
0: ये सुनकर खालिद बाबरची खाने की तरफ रवाना हो गया, मगर वहां मामा को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर बाजार की ओर देखने लगा। बाजार आमदोरफ्त बंद हो जाने की वजह से साए साए कर रहा था। दूर फासलों से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ क्षणों बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाजें भी शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते हुए सुनकर बहुत हैरान हुआ। तभी चौक में एक लड़का दिखाई दिया जो चीखते चिल्लाते भागा आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा जख्म था जिससे खून का फव्वारा छूट रहा था। ये दृश्य देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ, भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा,
1: अब्बा, अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसके पैर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। अब्बा,
2: क्या कहा?
0: खालिद का बाप ये सुनते ही खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान औंधे मुंह पड़ा हुआ है। बादशाह के खौफ के कारण किसी ने इतनी हिम्मत भी न की कि इस लड़के को सड़क से उठाकर सामने वाली दुकान के पट्टे पर लेटा दे।
1: अब्बा, अब्बा, इस लड़के को किसी ने मारा है?
3: हाँ बेटा, किसी ने तो मारा है इसे।
1: कितना बड़ा जख्म है इसका, कितनी तकलीफ हुई होगी इसे। मुझे तो उस दिन जरा सा चाकू चुभ गया था तो तकलीफ के मारे मैं रात भर सो नहीं पाया था। कितना दर्द हो रहा होगा ना उसे।
4: अरे क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो?
1: देखो ना अम्मी, उसे किसी ने मारा है।
4: तो शरारत की होगी उसने।
1: मगर स्कूल में तो छड़ी से मारते हैं, खून कहाँ निकालते हैं?
4: वो छड़ी जोर से लग गई होगी बेटा।
1: उसकी वालिद स्कूल में जाकर शिकायत क्यों नहीं करते?
4: ओहो बेटा, बात ये है कि इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है।
1: अल्लाह मियाँ से भी बड़ा क्या अम्मी?
4: नहीं, उनसे छोटा है।
1: तो उसे अल्लाह मियाँ से शिकायत करनी चाहिए।
4: ओफो, अब बहुत देर हो गई खालिद, चलो अब सो जाते हैं।
1: अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ तू उस मास्टर को खूब खूब कड़ी सजा दे और उसकी छड़ी भी छीन ले।

श्रोताओं, ये थी मंटो की पहली कहानी तमाशा, जो जलियांवाला बाग कांड की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा ढाए गए जुल्म का एक बच्चे के मन पर पड़े प्रभाव का चित्रण है। हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। याद दिला दें कि मंटो की आरंभिक शिक्षा भी इसी शहर में हुई थी, यानी कहानी की घटनाओं के वे चक्षुदर्शी साक्षी हैं। इसमें जिस बादशाह का जिक्र आया है वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन है, जो सात समंदर पार इंग्लैंड में रहता था, जिसकी हुकूमत उस समय हिंदुस्तान पर चलती थी, लेकिन अल्लाह मियां से बड़ा वो नहीं। यही इस कहानी का मूल स्वर है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: डेट्रॉइट से विदा लेकर स्वामी जी पहले नॉर्दम्प्टन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्दम्प्टन डेली हेरॉल्ड नामक एक अखबार में 13 अप्रैल को संवाद प्रकाशित हुआ।
1: समाज की एक प्रतिष्ठित महिला ने विवेकानंद के लिए घरेलू सभा की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने सभी मेहमानों को सूचित कर रखा था कि दर्शन, विज्ञान अथवा धर्म के अपने सर्वाधिक दुरूह प्रश्न हिंदू सन्यासी के समक्ष रखें। वे आए, पूछा, उत्तर पाया और ये कहते हुए लौटे, इस सत्य का आधा भी पहले कभी नहीं कहा गया था।
2: 14 अप्रैल को स्वामी जी ने नॉर्दम्प्टन नगर की जनता के लिए तथा अगले दिन वहां के स्मिथ कॉलेज में व्याख्यान दिए। स्वामी जी की नॉर्दम्प्टन में उपस्थिति के संबंध में स्मिथ कॉलेज की तत्कालीन छात्रा श्रीमती मार्था ब्राउन फिंके की सन 1936 में लिखित स्मृति कथा में ये विवरण मिलता है।
3: 1875 ईस्वी में सोफिया स्मिथ ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के हेतु स्मिथ कॉलेज की स्थापना की। 1893 में जब मैंने एक 18 वर्ष की अपरिपक्व बालिका के रूप में इस कॉलेज में प्रवेश लिया, उस समय मैं कोई अनुशासन नहीं मानती थी, परंतु मनोजगत तथा आत्मिक जगत में सत्य लाभ के लिए अतीव उत्सुक थी। कॉलेज के छात्रावास में सबके लिए पर्याप्त स्थान न हो पाने के कारण मैं और भी 3 छात्राओं के साथ परिसर के बाहर स्थित एक वर्गाकार बादामी रंग के मकान में निवास करती थी। अप्रैल की बुलेटिन में छपा कि स्वामी विवेकानंद वहां 2 शाम व्याख्यान देंगे। हम लोग केवल इतना ही जानती थी कि वे एक हिंदू सन्यासी हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हाल ही के धर्मसभा में हुई उनकी ख्याति हमारे पास नहीं पहुंची थी। ये भी सुना कि वे हमारे ही मकान में ठहरेंगे, हमारे ही साथ भोजन करेंगे और हम उनसे जो चाहे प्रश्न कर सकेंगे। हमारी गृह स्वामिनी की उदारता का परिचय इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा, छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा, ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली न थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्प्टन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे।
2: मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है,
3: उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए हिंदू के टिक पाने की आशा भला कौन कर सकता था, परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भलीभांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा थॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्ति वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बैलूट मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थी। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाचार थे। आखिरकार उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली।
0: मार्था ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा था और उसे अपने संस्मरण में शामिल किया था। स्वामी जी के प्रति वे सचमुच आकर्षित हुई थी। उन्हें और भी बातें याद थीं। उन्होंने लिखा था,
3: अगले दिन प्रातःकाल स्नानागार में पानी गिरने की जोर की आवाज के साथ साथ एक अज्ञात भाषा में उच्चरित गंभीर सुर कानों में पड़े। हम सभी दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। जलपान के समय उस मंत्र पाठ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, जल को पहले मैं मस्तक से और फिर सीने में स्पर्श करता हूँ और प्रति बार मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए। परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी।
2: मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था कि जलपान के बाद स्वामी जी ने थोड़ा टहलने की इच्छा व्यक्त की। तब हम उनके दोनों ओर दो दो करके चार छात्राएं उस गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सड़कों पर चलने लगी। चलते चलते हमने संकोच पूर्वक कोई विषय छेड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी धवल दंत पंक्तियों से मुस्कान बिखेरते हुए तुरंत उत्तर दिया। मुझे केवल एक बात याद है, ईसाई मतवाद के प्रसंग में उन्होंने कहा कि सर्वदा ईसा मसीह के रक्त का उल्लेख उन्हें बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। इससे मुझे चिंतन का विषय मिल गया। रक्त से भरा हुआ एक पात्र है जो इमैनुअल की शिराओं से निकाला गया है। इस स्रोत से मैं सदा ही घृणा करती थी, परंतु उनका दुस्साहस देखिए कि वे चर्च द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत की समालोचना कर रहे थे। इस स्वतंत्रता प्रिय आत्मा के द्वारा जागृति आने के बाद निश्चित रूप से मेरे मुक्त चिंतन की शुरुआत हुई।
0: मार्था ने दीर्घ काल तक स्वामी जी को याद रखा था और उन्हीं के आकर्षण से भारत भ्रमण करने भी आई थी। स्वामी जी द्वारा प्रचारित जीव रूपी ब्रह्म तत्व ने उन्हें जीवन के दुखों के बीच भी शांति प्रदान की थी।
2: नॉर्दम्पटन के सिटी हॉल में 14 अप्रैल की शाम को स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उसमें स्वामी जी ने बताया कि भाषा, वर्ण एवं रीति रिवाजों में पार्थक्य के बावजूद जगत की प्रमुख जातियां मूलतः एक है। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड ने दूसरे दिन छापा,
1: जबकि हम अपनी जाति की आयु सैकड़े में गिनते हैं, तब वे अपनी आयु की गणना हजारों वर्षों में करते हैं। उसी भारत के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोत्तम विभूति के आलोक पुंज को देखने की जिसे परवाह हो, उस प्रत्येक बुद्धिमान एवं विचारशील अमेरिकन को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद को देखने और सुनने का अवसर हाथ से ना जाने दें। वे प्रत्येक अमेरिकी के लिए अध्ययन के एक सुयोग्य पात्र हैं।

0: नॉर्दम्पटन से स्वामी जी मैसाचुसेट्स प्रांत के लीन नगर में जाकर श्रीमती फ्रांसिस डब्ल्यू ब्रीड के घर पर अतिथि हुए। लीन नगर चमड़े के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था और श्री ब्रीड का अपना निजी कारखाना था। वे बड़े धनी थे। स्वामी जी ने वहां दो व्याख्यान दिए, एक नॉर्थ शोर क्लब में और दूसरा ऑक्सफोर्ड हॉल में हुआ था। बोस्टन में भी श्री ब्रीड का मकान था। स्वामी जी वहां भी कुछ दिन ठहरे। लीन से बोस्टन की दूरी मात्र 10 मील है।
1: कुमारी इजाबेल मैककिंडली को लिखित स्वामी जी के एक पत्र से इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है।
2: बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। प्राध्यापक राइट के साथ भी मुलाकात हुई। मैं पुनः बोस्टन जा रहा हूँ। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान होगा और वहां मैं प्राध्यापक राइट का मेहमान रहूंगा। बोस्टन के समाचार पत्र मेरे स्वागत में काफी कुछ लिख रहे हैं। इन सब वाहियात कामों से मैं थक गया हूं। मई के अंत में शिकागो जाऊंगा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद मैं फिर पूर्व की ओर लौटूंगा। पिछली रात मैंने वॉल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया। श्रीमती स्मिथ ने $2 की दर से टिकट बेचे। यद्यपि हॉल छोटा था पर श्रोताओं से भर गया था। लीन में मुझे $100 प्राप्त हुए, परंतु उन्हें भेज नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नया गाउन तथा अन्य ऊट पटांग चीजें लेनी है। बोस्टन में मुझे धन मिलने की आशा नहीं है, तो भी मुझे अमेरिका के लोगों के माथे को छूने तथा उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो करना ही होगा।
0: स्वामी जी 24 अप्रैल से 6 मई तक न्यूयॉर्क में रहे और वहां अनेक व्याख्यान दिए। इजाबेल को उन्होंने 2 मई को पत्र लिखा। उसमें उनकी गतिविधियों का, कार्य प्रणाली का तथा मानसिक अवस्था के बारे में कुछ बातों का पता चलता है।
2: उस दिन वॉल्डोर्फ के व्याख्यान से मुझे $70 प्राप्त हुए। कल के भाषण से कुछ और भी मिलने की आशा है। 7 से 19 तारीख तक बोस्टन में कार्यक्रम है, पर वहां से काफी कम पैसे मिलने की उम्मीद है। कल मैंने $13 का एक पाइप खरीदा है। कृपया फादर पोप श्री हेल के सामने इसका जिक्र न करना। कोर्ट के लिए $30 लगेंगे। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सिर्फ उस लेक्चर बाजी को छोड़कर। हार्वर्ड में 3-3 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। यहां पर भी वे लोग कुछ कर रहे हैं, अतः शिकागो जाते समय एक बार पुनः न्यूयॉर्क आऊंगा और कुछ कड़ी बातें सुनाकर डॉलर हथियाने के बाद शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ मंगाना हो जो शिकागो में ना मिलता हो तो शीघ्र लिखना। इस समय मेरे पास ढेर सारे डॉलर हैं। तुम जो भी चाहोगी क्षण भर में भेज दूंगा। ऐसा ना सोचना कि इसमें कुछ अशोभनीय होगा। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं यदि भाई हूं तो भाई हूं। मैं दुनिया में यदि किसी चीज से नफरत करता हूं तो पाखंड से।
0: न्यूयॉर्क में उनका दूसरा व्याख्यान हुआ श्रीमती मैरी फिलिप्स के घर पर। वे पहले व्याख्यान में उपस्थित थीं तथा बाद में स्वामी जी की घनिष्ठ भक्त बन गई थीं। स्वामी जी उनके घर भी ठहरे थे। न्यूयॉर्क में अनेक गणमान्य लोगों से उनका परिचय हुआ, जैसे डॉक्टर गर्नसी तथा उनकी पत्नी लियो लैंडर्सवर्ग, जो लेखक और पत्रकार थे और बाद में स्वामी जी से दीक्षा तथा सन्यास लेकर कृपानंद के नाम से परिचित हुए। सुप्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी से भी पहचान हुई। एक अन्य मित्र थे लीमैन एबॉट, जो विख्यात पादरी, ब्रुकलिन चर्च के प्रमुख व सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली आउटलुक पत्रिका के प्रधान संपादक थे। स्वामी जी के न्यूयॉर्क निवास का विवरण श्रीमती कॉन्स्टेंस, जो विवाह के पूर्व मिस गिबन्स थीं, की एक स्मृति कथा में प्राप्त होता है। उन्होंने 28 अप्रैल को डॉक्टर गर्नसी के घर पर स्वामी जी को देखा था। उन्होंने लिखा है,
3: मैं जब उनसे मिली उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वे प्राचीन ग्रीक देव मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत हुए, पर हाँ, उनका रंग सांवला था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें मध्यरात्रि के नक्षत्र खचित आकाश की याद दिलाती थी। उनका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से परिपूर्ण था। उस समय वे प्रसिद्ध डॉक्टर गर्नसी के घर पर अतिथि थे। डॉक्टर गर्नसी एक उदार साहित्य सेवी तथा सच्चे अतिथि परायण व्यक्ति थे। उनका विशाल और सुंदर मकान 5वें एवेन्यू के 44 नंबर स्ट्रीट पर था। डॉक्टर गर्नसी ने एक दिन अपराह्न में डिनर का आयोजन किया था। ऐसा निश्चित हुआ था उनमें प्रत्येक अतिथि एक धर्म के प्रवक्ता होंगे और उस समय इंगरसोल के नगर से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर स्वयं ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं कैथोलिक थी, इस कारण मुझे उस स्मरणीय रात्रि भोज में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। डॉक्टर गर्नसी हमारे चिकित्सक थे, इसीलिए कैथोलिक मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस भोज में डॉक्टर पाघस तथा अमेरिका की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिनी मैडन फिस्के भी आई थी। मुझे स्मरण है कि कुल मिलाकर 14 अतिथि वहां उपस्थित थे। आपस में अवश्य एक मौन समझौता हुआ था कि सभी एक दूसरे के तथा स्वामी जी के तथा कथित गैर ईसाई मतवाद के प्रति भद्र आचरण करेंगे। परंतु खेद की बात है कि जो जो भोज अग्रसर हुआ त्यों त्यों सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। स्वामी जी के साथ नहीं बल्कि बाइबिल पर ही आधारित विभिन्न संप्रदायों के बीच मेरी कुर्सी स्वामी जी के बगल में ही थी। हम दोनों मजे के साथ चुपचाप इस हास्यास्पद सांप्रदायिक असहिष्णुता को देखते रहे। स्वामी जी बीच बीच में संक्षिप्त व्याख्यान के सहारे ऊपरी तौर पर अपने देश तथा वहां के लोगों के रीति रिवाज समझाने का प्रयास करते, पर उनका असल उद्देश्य होता दर्शन तथा धर्म के किसी विषय में अपने मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। इस भोज के समय ही हमारी मित्रता का सूत्रपात हुआ। बाद में बैठक खाने में उन्होंने मुझसे कहा, मिस गिबन्स, आपके तथा मेरे दार्शनिक मत एक ही हैं। हमारी धार्मिक आस्था की मूल बातें भी समान हैं। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से स्वामी जी की बातें कही और माँ ने कहा,
4: क्या ही भयंकर सभा थी वो, जिसमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेसबिटेरियन सभी थे, और वो भी था साथ में नारंगी रंग के कपड़े पहने कृष्ण वर्ण विधर्मी।
3: परंतु माँ ने क्रमशः विवेकानंद को पसंद करना तथा उनके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना सीख लिया था। यहाँ तक कि बाद में वे एक वेदांत केंद्र की सदस्य भी बनी थी। स्वामी जी के लिए मेरी माँ थी बड़ी मजेदार, और इतने वर्षों बाद आज भी मेरे नेत्रों के सामने तैरने लगता है वो दृश्य जिसमें अपने बारे में माँ की टिप्पणियां सुनकर वे हंसते हंसते बेहाल हो जाते थे।
1: सन 1894 ईस्वी के वसंत काल का मौसम। एक रात कुमारी गिबन्स ने स्वामी जी को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में फाउस्ट नाटक देखने का आमंत्रण दिया। स्वामी जी ने पहले कभी ओपेरा नाटक नहीं देखा था। गिबन्स की मां ने आपत्ति की,
5: आप तो काले हैं, आपको हमारे साथ देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे?
2: मैं तो अपनी बहन के पास बैठूंगा, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी।
0: माँ चुप हो गई। ओपेरा गृह में उस दिन स्वामी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मिस गिबन्स ने लिखा है,
3: आसपास जितने भी लोग बैठे थे वे मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उस रात शायद उन लोगों ने ओपेरा सुना तक नहीं। मैंने उन्हें फाउस्ट की कहानी समझाना चाही तो माँ कह उठी,
6: हे भगवान, तेरी जैसी युवा लड़की को ऐसी भयानक कहानी एक पुरुष को नहीं सुनानी चाहिए।
2: अगर ये अच्छा नहीं तो आपने इन्हें आने क्यों दिया?
5: वाह, क्यों ना आती, ओपेरा देखने जाना एक सामाजिक प्रथा है। कथा वस्तु खराब है पर उस पर चर्चा करना ठीक नहीं।
3: ओपेरा के वक्त स्वामी जी ने पूछा,
2: अच्छा बहन, वो व्यक्ति जो गाना गाकर उस सुंदर स्त्री के सामने प्रेम जता रहा है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है?
3: हाँ स्वामी जी।
2: परंतु उस व्यक्ति ने तो महिला के प्रति अन्याय किया है और उसे दुखी बना दिया है।
3: हाँ स्वामी जी।
2: ओह, अब समझा, वो उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो तो उस लाल धारी वाले वस्त्र पहने पूंछ वाले शैतान के प्रेम में डूबा है ना?
3: इसी बीच हमारे समाज की एक लोकप्रिय युवती इंटरवल के समय हमारे पास आई और माँ से बोली, ये नारंगी वस्त्र पहने सुंदर व्यक्ति कौन है? वो बोली,
6: हमारे मेहमान हैं।
3: क्यों? मेरी माँ उनसे परिचय कराने के लिए उतावली हो रही हैं। और स्वामी जी फिर हंस पड़े।
0: स्वामी जी के संबंध में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरण हमें प्राप्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की स्मृति सर्वदा शाश्वत थी, अविस्मरणीय थी। महिला मूर्तिकार मैरलीना हॉफमैन ने अपने हेड्स एंड टेल्स ग्रंथ में लिखा है,
6: भारत मेरी बालिकाल की एक अति स्पष्ट स्मृति को जगा देता है। वो उद्दीपनामय संध्या मैंने अपने पिता के कृषिदार के यहाँ व्यतीत की थी। वे 38वीं स्ट्रीट पर स्थित एक साधारण से बोर्डिंग हाउस में निवास करते थे। इन प्राचीन पंथी नगरवासियों के साथ सहसा एक नए व्यक्ति का परिचय कराया गया। वे थे प्राच्य दार्शनिक तथा आचार्य स्वामी विवेकानंद। भोजन कक्ष में उनके प्रवेश करते ही सभी नीरव हो गए। उनका सांवला कांसे कासा रंग और उनकी विशाल तहदार पगड़ी एवं अजीब वेशभूषा सहज ही दृष्टिगोचर हो रहा था। उनकी काली आँखें शायद ही कभी आसपास के लोगों को देखने के लिए ऊपर उठती थीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में शांति एवं शक्ति की एक ऐसी छाप थी जिसने मुझ पर अमिट छाप डाली। वे मुझे भी सच्चे ब्रह्मवेत्ताओं की तरह रहस्यमय तथा आध्यात्मिक प्रतीत हुए। परंतु इसके साथ ही झलक रहा था उनका सभी मानव भाइयों के प्रति सहज कोमल सहानुभूति का भाव। काफ़ी दिनों के बाद 1931 ईस्वी में हम लोग कलकत्ते के बेलूर मठ में उनका संगमरमर का स्मृति मंदिर देखने गए थे। जब मैं उनकी वेदी पर चढ़ाने के लिए जूही की एक माला लेकर गई तो मुझे स्मरण हो आया कि जीवन में जब मैंने एक ही बार इन साधु पुरुष का दर्शन किया था, उस समय बिना कुछ बोले ही उन्होंने भारत का सच्चा अर्थ जितना मुझे समझा दिया था, उतनी जानकारी मुझे भारत के बारे में भारतवासियों से सुने हुए अनेक भाषणों से भी प्राप्त नहीं हुई।
1: न्यूयॉर्क के ही समान बोस्टन में भी स्वामी जी के अनेक मित्र बने। उनमें सबसे प्रमुख थी श्रीमती ओली बुल, जिन्होंने इसके बाद से सर्वदा अनेक प्रकार से स्वामी जी की सहायता की। अपने कैम्ब्रिज के मकान में वे पहली बार स्वामी जी से मिली थी। श्रीमती ओली बुल के बारे में अगली कड़ियों में अनेकों जिक्र आएंगे, क्योंकि स्वामी जी के अमेरिका प्रवास के दिनों में उनका अवदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी के सफरनामे में अगला नगर होगा न्यूयॉर्क। 28 जून प्रातः काल वे न्यूयॉर्क पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आई श्रोताओं, अब आज की सभा की समाप्ति से पूर्व हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। जीवन सौरभ कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं भगवान बुद्ध के सुविचार। कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का 19वां भाग सुबह 7 बजे। 7:10 का समय होगा कार्यक्रम अक्षय निधि का, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 109 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:20 पर। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग, जिसका समय होता है सुबह 8 बजे प्रतिदिन, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा बालकृष्ण हरी चाफेकर की शहादत पर। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर और संध्या 6:30 पर। कल का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण और कानून। योग संवाद कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे श्री राम की वैराग्य दशा, इसका 70वां भाग। प्रसारण समय होगा 9 बजे सुबह और शाम 7 बजे। विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम सुबह 9:30 से, और दिन में 10 बजे आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम और साथ ही साथ रेडियो रिपोर्ट। आजाद हिंद कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा निर्मला देश पांडे पर। प्रसारण समय होगा 10:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत, डॉक्टर जेपी अग्रवाल मनोचिकित्सक से पूर्वाखले की चर्चा। प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम, इसका 43वां भाग कल प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ आपसे हम पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।